0: अभी आप सुन रहे थे स्वर रंजनी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः की 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हिंदी समाचारों के उपरांत 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। श्रोताओं, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले कि केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन प्रातःकालीन सभा के इस कार्यक्रम जो कि भक्ति संगीत पर आधारित है। इस कार्यक्रम में आप सबको सबसे पहले हम सुनवाएंगे कृष्ण भजन जगजीत सिंह जी के स्वर में, और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह जी के स्वर में ये भजन, और अब आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी जी के स्वर में अगला भजन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में ये भजन, और अब आप सुनेंगे पंडित विश्वनाथ जी के स्वर में अगला भजन, सूरदास जी की रचना।

अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्वनाथ जी के स्वर में सूरदास जी की रचना, और अब आप सुनेंगे माधुरी खरे जी के स्वर में अगला भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे शब्द भाई सूरज किरण और भाई गुरदयाल सिंह की आवाज़ में। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और अब समय हुआ है चिंतन का। चिंतन में आज आप सुनेंगे योग और आधुनिक जीवन पर प्रसंग।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु वार्ता योग और आधुनिक जीवन। वार्ताकार हैं डॉक्टर शुभम किरार सूर्यवंशी।
2: आधुनिक जीवन शैली में व्यक्ति और समाज की विचारधारा और कार्यशैली जो हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड है उससे अलग है। यह आधुनिक जीवन शैली से हमारी ऊर्जा और समय की बचत तो होती है, परंतु विभिन्न तरह की व्यक्तिगत, सामाजिक व पर्यावरणीय परेशानियों से भी हमें नियमित रूप से जूझना पड़ता है। वहीं पर जब हम योग के विषय में बात करते हैं तो जो शब्द है वह संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिल जाना या एकात्म हो जाना। अब प्रश्न यह उठता है कि किसके एकजुट हो जाने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। योग में इसका अर्थ है मानवीय चेतना या ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकात्म हो जाना। इसे कभी कभी हमारे शरीर व मन के एकात्म हो जाने, मिल जाने के रूप में भी समझा जाता है। आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि अभ्यास जिससे सभी लोग परिचित हैं, परंतु इसके अलावा कुछ अन्य अभ्यास भी हैं, जैसे मुद्रा, बंध, षटकर्म आदि। इन विभिन्न अभ्यासों को अपने जीवन शैली में अपनाने से आधुनिक जीवन शैली में विभिन्न प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियां, जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सामाजिकता का अभाव, अकेलापन, परिवारों में बिखराव, जो कि आज की जीवन शैली में सामान्य से होते जा रहे हैं। इन सभी का निराकरण योग के माध्यम से संभव है। योगाभ्यास में अभ्यास के दौरान शारीरिक और मानसिक सजगता सबसे प्रमुख होती है, जिससे शारीरिक और मानसिक जागरूकता और नियंत्रण बढ़ता है, और जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे उस परिस्थिति का निराकरण करना हमारे लिए आसान होता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक योग आदि के अभ्यास से सामाजिकता और सामाजिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलता है। योग हमें भावनाशील बनाता है और व्यक्ति की आध्यात्मिक विचारधारा पर भी गहरा प्रभाव डालता है।

0: हमारे मन में नकारात्मक विचारों को खत्म करके सकारात्मक विचारों की ओर आगे बढ़ाना, प्रकृति तथा पर्यावरण के साथ एक रूपता तथा एकात्मता को बढ़ाना योग के स्वाभाविक प्रभाव है। अधिकतर यह देखने में आता है कि बहुत से लोग योग के विषय में जानते तो हैं तथा इसके लाभों को भी समझते हैं, परंतु उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि योग का अभ्यास प्रारंभ कैसे करें। इसमें यह बात समझनी आवश्यक है कि योग सभी के लिए सरल सुलभ है और कोई भी व्यक्ति योग का अभ्यास कर सकता है तथा छोटे से स्वरूप में भी इसको शुरू किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप योग का अभ्यास सामान्य ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम के अभ्यास से प्रारंभ कर सकते हैं, जिसमें 5 से 6 बार लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें और पूरी सजगता सहजता के साथ में इस अभ्यास को करें। इसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास भी किया जा सकता है, जिसमें छोटे छोटे शारीरिक अभ्यास हैं जिनसे हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रभाव पड़ता है तथा शरीर आगे के अभ्यास के लिए तैयार हो जाता है। अगर नियमित रूप से इन अभ्यासों का प्रतिदिन थोड़ी देर भी अभ्यास किया जाए तो इनका प्रभाव हमें कुछ ही दिनों में देखने के लिए मिलता है। आज के समय में जहां समय की कमी है, वहां यह योग का अभ्यास हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में मदद करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन में लघु वार्ता योग और आधुनिक जीवन पर, और अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ में बालकांड का 72वां भाग।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गौएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों, एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल

रिलायंस से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 20 सेकंड। समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम संगीतिका का। संगीतिका में आज आप सुनेंगे राजेंद्र कचरू के गाए भजन।

अभी आप सुन रहे थे संगीतिका। संगीतिका में आज आपने सुने राजेंद्र कचरू के गाए भजन। श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब श्रोताओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने सब मन पसंद कार्यक्रम, जी हाँ, आपका अपना कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग। और आ चुकी है आपकी दोस्त सुषमा लेकर बहुत ही प्यारे प्यारे गीत और ढेर सारी बातें। तो भाई, सुबह सुबह की बात है, अगर गर्मियों में कहें तो इस वक्त अधिकतर हमारे साथी उठ चुके होंगे, क्योंकि अब तो लगता है कि सुबह जल्दी उठ के ही सारे काम निपटा लिए जाए, क्योंकि आज वैसे संडे है तो हो सकता है कि बहुत सारे साथी थोड़ा आलस में होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि चलो कोई नहीं, आज तो दिन मिल रहा है, एक आराम से उठते हैं। अलसा रहे होंगे, सुस्ता रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूंगी भाई, समय से उठ जाएंगे तो गर्मी से होने वाली परेशानियों से बच जाएंगे। चाहे घर के ही काम करने हो तो भी अगर समय से उठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और थोड़ा सा आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे अगर आप सुबह उठ जाएंगे। तो एनर्जेटिक मीन्स कैसे भाई, ऊर्जावान दिखना और बनना दोनों है। बहुत सारे काम है, रविवार है, घर की सफाई से लेकर मेहमान नवाजी सब कुछ करना है। तो आलस को बाय बाय कहने और दिन को सुपर हिट बनाने के लिए आप रेडी हो जाएं और शुरुआत करें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जो कि है, लीजिए आप सबके लिए हमारी तरफ से पेश। और ये भी हम कहेंगे कि आप जब सुबह सुबह आपकी सुबह होती है तो सबसे पहले आप घर में किसे देखना पसंद करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को या सबसे पहले आप भगवान को देखना पसंद करते हैं? वैसे कहा जाता है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी भगवान का, कहा क्या, हम उन्हें दर्जा देते हैं भगवान के समान का ही। तो अपने सुबह की शुरुआत बड़ों के चरण स्पर्श कर उन्हें नमन करके की जाए तो भाई सारी जिंदगी सुधर जाती है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा मेल आईडी है ipradiodaily@gmail.com। तो आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत सुस्वागत, नमस्कार एक बार फिर से, और जो साथी नए जुड़े हैं उनका भी एक बार फिर से स्वागत।

आवाज दें और घर एक मंदिर, तो भी हर घर एक मंदिर ही होता है, क्योंकि देखिए हम वहां पर रहते हैं, जागते हैं, वो ये ऐसा घर जिसमें हम बहुत सारे सपने देखते हैं और उस घर को हम मंदिर बनाने के लिए पूरा योगदान देते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे हम सुबह प्रणाम करते हैं, लेकिन घर को मंदिर बनाने के लिए हमें अपना कर्म करना बहुत जरूरी है। हमारा काम हमारी प्रार्थना होती है और हर सुबह हम इस मंदिर को सजाने और संवारने के लिए दिन भर जुट जाते हैं मेहनत करने में। तो कर्म करने से पीछे ना हटें और इस घर को खूबसूरत बनाने में कोई कमी ना छूटें। जब भी आप अपने घर कर्म पथ पर चलें, इस घर को मंदिर बनाने के लिए आगे बढ़ें, तो जरूर ये ध्यान रखें कि घर का एक कतरा कतरा आपने कितनी मेहनत से बनाया है। और वैसे आलस भरे सुबह को अगर आप छोड़ देंगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि देखिए आजकल ऐसे भी गर्मी है और इस अपने प्यारे से मंदिर रूपा घर को सजाने संवारने के लिए सिर्फ एक ही दिन तो बचता है, जो खास तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, इतना उनका पैक्ड शेड्यूल होता है। सुबह निकले, एक एक मिनट एक एक सेकंड पूरा कैलकुलेटेड होके वो काम करते हैं, तो उनके लिए तो भाई आज का ही दिन है जो सुकून भरे पल वो अपने घर में इस मंदिर में ले सकें और इसे सजाने संवारने में भी आज जितनी मेहनत कर सकते उतनी कर सके। तो अपने काम को बहुत ही खूबसूरती के साथ करें, इस खूबसूरत सुबह को और ही अच्छे से बनाएं। और अगर आप घर को ईमानदारी से चलाने की कोशिश करते हैं, अपने काम को ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे, तो कहते ना कि हर घर एक मंदिर बनता है और हर सुबह एक उत्सव होती है। और अगला जो बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों, ये भी आप सबके लिए मेरी तरफ से डेडिकेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि आज सुबह के गीत आपको जरूर पसंद आएंगे। येशुदास जो है, येशुदास जी की आवाज में ही अगला बहुत ही खूबसूरत गीत है हकीकत फिल्म से, और उम्मीद करती माफ करी हैसियत फिल्म से गीत आप सुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत है। सुबह सुबह घर एक मंदिर की बात चली है, तो ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा, आप कल्पना करिए, चिड़ियों की चहकती आवाज, ठंडी हवा की ताजगी सी आवाज, इतना अच्छा म्यूजिक सुबह सुबह अगर ऐसा सुनने को मिले, चाय की चुस्कियों के साथ, या फिर आप जो भी योग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये गीत बहुत ही खूबसूरत है। और आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

बहुत ही खूबसूरत गीत, और ये बिल्कुल सही है कि जब हम सुबह सुबह इस तरह से देखते हैं पंछी अपने बस कर्म में लग जाते हैं, चल पड़ते हैं अपनी दिनचर्या को निभाने के लिए, अपनी अपने लिए दाना चुगने के लिए, अपने बच्चों के लिए दाना अरेंज करने के लिए, और आसपास भी देखते हैं कि हर कोई अपने अपने काम में जुट जाता है। और वही मौसम की बात करें तो मौसम भी अपनी तरफ से ही जैसे जैसे खिलवाड़ हमारे साथ कर रहा है, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी नरम तो कभी खुश, कभी फुहार कभी बस। दिल्ली में तो ऐसा ही मौसम है। आप बताएं आपके यहाँ पे किस तरह का मौसम है? फिलहाल आज दिल्ली में थोड़ी सी हवाओं में ठंडक है, सुबह का मौसम तो ऐसा है ही, कल भी थोड़ी आंधी आई, हल्की सी बौछार हुई, तो मौसम में थोड़ा सा फर्क हुआ, जो झुलझुलाती हुई गर्मी थी, लेकिन हाँ गर्मी अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर सुबह सुबह कहते ना इस खूबसूरत मौसम में दोस्तों का साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा।

दिल्ली जैसे शहरों में तो हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पे निकल जाएं, बाइकिंग के लिए निकल जाएं, या फिर सुबह सुबह किसी पार्क में जाके जिमिंग कर लें, योगा कर लें, एक्सरसाइज कर लें, दौड़ लगा लें या कुछ और गेम खेल लें। और हाँ, हम अपने आसपास जो देखते हैं तो भाई सुबह सुबह 5 बजे से ही मैं देखती हूँ कि जब मैं स्टूडियो की तरफ निकल रही होती हूँ सुबह 4:30 4 बजे, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे, यंग युवा, काफी सारे लोग क्रिकेट के जो शौकीन है वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, दूसरी गेम्स भी जाकर खेल रहे होते हैं। तो सभी कोशिश करते हैं कि धूप निकलने से पहले ही सुबह सुबह जल्दी जल्दी से अपनी प्रैक्टिस कर ली जाए और इससे सुबह सुबह के मौसम का मजा लिया जाए। और दोस्त साथ में हो तो भी दिन तो सुहाना बन ही जाता है, और खूबसूरत मौसम में साथ अगर दोस्त हो तो खाने पीने का भी बहुत मजा आता है। और उम्मीद करती हूँ कि क्योंकि घड़ी जो है वो इशारा करे कि भाई 8 बजने वाले हैं, तो अब घर में आपके भी गर्मा गर्म चाय के साथ कुछ ना कुछ बन चुका होगा टेस्टी सा। हमें भी याद करते हुए आप कुछ खाइएगा या हमें भी भेज दीजिएगा संदेशों के जरिए। तो दोस्तों, एक और अगला बहुत ही खूबसूरत गीत है आप सबके लिए, मैंने प्यार किया फिल्म से, और उम्मीद करती हूँ ये गीत आपको बहुत पसंद आएगा। और दोस्ती की बात हो रही है तो इतनी बात जरूर कहूंगी, दोस्त ही हैं जो हर हालात में हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। वो दोस्त ही क्या जिसके जो चेहरे पर अपने दोस्त के मुस्कान ना ला पाए। तो दोस्ती का जो रिश्ता है वो सबसे बढ़कर और सबसे अच्छा, सबसे हसीन, सबसे खुशनुमा है। तो इस रिश्ते को हमेशा बना कर रखें।

तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि दोस्ती का जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और देखिए मेरे साथ अब स्टूडियो में आ भी चुके हैं मेरे दोस्त, जो कि अगले कुछ घंटे तक आपके साथ रहेंगे। फिलहाल मैं यही कहूंगी कि समय तो कम है और आज है रविवार, तो जब भी आपको मौका मिले अपने दोस्तों के लिए कुछ समय जरूर निकालें और अपनी जिंदगी में कुछ हसीन पल जरूर शामिल करें, क्योंकि बस कुछ यादें ही होती हैं, कुछ ऐसे पल जिन्हें हम ताउम्र याद रखते हैं। बाकी चीजें, भाग दौड़, सब चीजें समय समय पर धुंधली पड़ जाती है, काम तो आती है लेकिन हाँ, दोस्ती का जो रिश्ता है उसके साथ जो एक एक पल हमने बिताया होता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, और फुर्सत के पलों में वो हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर ले आता है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर वक्त बिताएं और खुश रहें, मस्त रहें, सुनते रहें हमारा ये प्यारा सा स्टेशन, जो कि 24 घंटे 7 दिन आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, और छोड़े जा रही हूँ आपको इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ सुरेश वाड़ेकर की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरे गुड मॉर्निंग कार्यक्रम, और अब सुनेंगे आप समाचार।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
4: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों

0: ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल।

0: के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर आरसीबी का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल

0: Defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग लियांग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वजीर दिफा ने कहा कि बहरे अरब में भारतीय बहरिया को पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिया अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त हमले किए।
2: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: बहरिया के सरबरा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग लियांग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बोधगया पहुंचे और महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कल शाम जनाब लियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने देरीना दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राब्तों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों की ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात पर नजरसानी की है। इस कदम का मकसद मगरबी एशिया के बहरान की वजह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खातिरख्वाह घरेलू दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। مزید تفصیل ہمارے

0: नामा निगार से।
1: वजारत मालियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की बरामद पर 1.5 रुपया फी लीटर और डीजल की बरामद पर 13.5 रुपये फी लीटर की ड्यूटी आयद होगी। हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदाती ड्यूटी 9.5 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत मालियात ने वाजे किया कि खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सड़क बुनियादी ढांचा सेस पर मुश्तमिल बरामदाती लेवीज, जिन्हें इस साल 27 मार्च को मुतारिफ कराया गया था, का खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की औसत बैन अल-अक़वामी कीमतों की बुनियाद पर हर 15 दिन बाद जायजा लिया जाता है। ताहम हुकूमत ने वाज़े किया कि घरेलू खपत के पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नजर सानी शुदा ड्यूटीज का कल से इतलाक होगा, जो अगले 15 दिन तक नाफिज रहेंगी। नई दिल्ली से विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आरजी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज़े खातिर रखते हुए यह फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है, तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, एमएसएमई इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को इतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबिकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज़ होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के तई बेदारी पैदा करना है। यह दिन तंबाकू के इस्तेमाल के खात्मे के लिए आलमी इदारे सेहत WHO की आलमी पहल है। इस साल के तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन का उन्वान है निकोटीन और तंबाकू की लत से निमटना। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन मनाए जाने के हिस्से के तौर पर मरकजी सेहत सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने जुमे के रोज नई दिल्ली में तंबाकू से पाक तालीमी इदारों टॉफी ऐप का पायलट वर्जन लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद मुल्क के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुखालिफ जाब्तों की निगरानी और निफाज को मुस्तहकम करना है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा श्रीवास्तव ने कहा कि मुल्क भर के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष इदारों और दीगर सेहत देखभाल मराकज में 2000 से ज्यादा तंबाकू नोशी मुखालिफ मराकज कायम किए गए हैं। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम नस्ब किए जाने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसे जदीद मौसमियाती निजाम कोहरे और खराब मौसमी हालात के दौरान परवाजों की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। जनाब नायडू ने मजीद कहा कि इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर के मजीद हवाई अड्डों तक तोसी दी जाएगी, जिससे मुसाफिरों के सफरी तजर्बे को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा और सेफ्टी में इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने के सानेहे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। मरने वालों में 7 अफराद का ताल्लुक पुणे शहर से और 14 अफराद का ताल्लुक पेचरी, चिंचोड़ और उर्वली कंचन इलाकों से है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी गई है। इस मामले में बड़ी इंतजामी कार्रवाई करते हुए 22 अहलकारों को अपने फराइज की अंजामदही में मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने पर मौतल कर दिया गया है। मौतल किए गए अहलकारों में 9 पुलिस अहलकार और रियासती आबकारी महकमे के 13 अफसरान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की वजीर सकीना इट्टू ने जम्मू डिवीजन के समर जोन के तहत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 1 जून से 15 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। मोहतरमा इट्टू ने कहा कि जारी मौसम गर्मा के तनाजुर में यह फैसला लिया गया है ताकि तलबा तदरीसी अमले और कॉलेज अमले की बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मेल हासिल किया गया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि एक मरबूत मुश्तरका तरीकेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निजाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा है कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रेयासिस ने जम

0: जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला की वबा फूट पड़ने के बाद सफरी पाबंदियां आयद करने या अपनी सरहदें बंद कर देने वाले ममालिक से इन इकदामात पर दोबारा गौर करने की अपील की है। जनाब गैब्रियासिस का कहना है कि इस तरह के इकदामात बीमारी से निमटने की कोशिशों में रुकावट बन सकते हैं। मशरकी कांगो के बुनिया में इजहार ख्याल करते हुए जनाब गैब्रियासिस ने कहा कि बुनिया के उनके दौरे का मकसद मुतासर बरादरियों के साथ सीधे तौर पर मसरूफ अमल होना है और सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में बीमारी से निमटने की कोशिशों को मुस्तहकम करने में मदद करना है। जमहूरिया कांगो के सेहत हुकाम ने 900 से ज्यादा मुश्तबा इबोला मामलों में 200 से ज्यादा मुश्तबा अमवात रिपोर्ट की हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा ने राजधानी कंपाला में नए इन्फेक्शन समेत मजमुई तौर पर 9 मामलों की तस्दीक की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी कल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मशरकी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ मकाम पर आज छींटे पड़ने के साथ झालाबारी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ मकाम पर कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी चलने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियाती एजेंसी ने अगले 2 दिन के दौरान राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने की भी पेशगोई की है। केरलम में शदीद बारिश के इम्कान के तहत 6 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं शदीद बारिश और 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। अलबत्ता केरलम में बाजाब्ता तौर पर मानसून की आमद का ऐलान नहीं किया गया है। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 सीजन के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच खेला जाएगा। RCB ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और 3 दिन के वक्फे के बाद फाइनल में दाखिल हो रही है। टूर्नामेंट की मजबूत तरीन उनकी बल्लेबाजी रही है, जिसमें विराट कोहली की कारकर्दगी नुमाया रही है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड नई गेंद के साथ टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। दूसरी जानिब शुभमन गिल की क्यादत में गुजरात टाइटंस ने लीग मरहले में टॉप 2 में जगह हासिल की और क्वालिफायर 1 में शिकस्त के बाद वापसी करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम एक बार फिर अपने अहम बल्लेबाजों गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर इन्हिसार करेगी, जबकि ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सीजन के दूसरे हिस्से में अहम विकेट्स लेकर गेंदबाजी को और मजबूत किया है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। खातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल्कवामी क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहेब उल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से शिकस्त देकर UEFA चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने ज़राअत और किसानों की फलाह और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को सुर्खी के साथ पेश किया है कि मुल्क भर में खेत बचाओ मुहिम 1 जून से चलाई जाएगी, जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने BJP के कौमी सदर नितिन नवीन के इस बयान को पहले सफ़े पर जगह दी है कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 मुल्क के हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान भारत की मीशत मजबूत मगर एहतियात जरूरी। वजारत खजाना के इस बयान के साथ रोजनामा इनकलाब ने लिखा है कि वजारत खजाना ने मुख्तलिफ माशी इशारों की बुनियाद पर भारत की मीशत के करीबी मुस्तकबिल को मजबूत करार दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यूमिन ओंगलियांग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु

0: पर्वतारोह पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा
1: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। आज के इस अंक में आप सुन सकेंगे हिंदी साहित्य का आधुनिक स्वरूप विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कथाकार और संपादक श्री बलराम, वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर राजवंती जाखड़ और वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर प्रज्ञा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर राकेश।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और विचारों के इस खुले मंच पर मैं हूं आपकी इस साहित्यिक यात्रा का सहयात्री प्रोफेसर राकेश कुमार। श्रोताओं, साहित्य केवल कागज पर उकेरे गए शब्द या कोरी कल्पनाओं की उड़ान नहीं होता, वह अपने समय के समाज की धड़कन, उसकी बेचैनी, उसके अंतर्विरोधों और उसके सपनों का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज होता है। साहित्य दरअसल वह आईना है जिसमें एक युग अपनी शक्ल देखता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सीधे हमारी भाषाई और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है और वह विषय है हिंदी साहित्य का आधुनिक स्वरूप। जब हम साहित्य के संदर्भ में आधुनिकता की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे पश्चिमीकरण, मशीनीकरण या केवल नई तकनीक के इस्तेमाल से जोड़ लेते हैं, लेकिन साहित्य में आधुनिकता की परिभाषा इससे कहीं अधिक गहरी है। आधुनिकता दरअसल एक दृष्टिकोण है, एक वैज्ञानिक, तार्किक और मानवीय दृष्टि। इसका उद्देश्य सिर्फ सवाल उठाना नहीं है, ना ही परंपराओं के अंधानुकरण से इसका सीधा जुड़ाव है, बल्कि यह विवेक को महत्व देने और नियति की जगह इस दुनिया के आम मनुष्य को केंद्र में रखकर सोचने की प्रक्रिया है। हिंदी साहित्य में इसी तार्किक, विवेकशील और जनोन्मुखी दृष्टि की पहली सबसे मुखर गूंज हमें भारतेंदु युग में सुनाई देती है। नाटकों, निबंधों और पत्र पत्रिकाओं के जरिए राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार की जो नींव उस दौर में रखी गई थी वही हमारी साहित्यिक आधुनिकता का प्रस्थान बिंदु बने। इसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कहानी आंदोलनों ने साहित्य का नायक ही बदल दिया। अब नायक कोई राजा या देवता नहीं था, अब नायक था खेत में खटता किसान और मध्यवर्गीय कुंठाओं से जूझता एक आम इंसान। लेकिन श्रोताओं, आज जब हम 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं तो बात केवल आधुनिकता की नहीं रह जाती, बल्कि हम उत्तर आधुनिकता के एक बेहद जटिल दौर से भी गुजर रहे हैं। उत्तर आधुनिकता ने संपूर्ण सत्य के दावों को खारिज कर दिया है। बाजारवाद, उपभोक्ता संस्कृति और इंटरनेट की आभासी दुनिया के इस दौर में मनुष्य के पहचान और उसके अस्तित्व के संकट के रूप में अनेक संकट सामने आ रहे हैं। आज सत्य एकांगी नहीं है, आज हाशिए के विमर्श, विशेषकर स्त्री विमर्श और दलित विमर्श पूरी ताकत के साथ मुख्य धारा बन चुके हैं। तो श्रोताओं, इसी लंबी, जटिल और वैचारिक रूप से समृद्ध यात्रा, आज के रचनाकर्म के नए जो ट्रेंड्स हैं और भविष्य के स्वरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार, समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक बलराम जी, जिन्होंने अपने सुदीर्घ रचनाकर्म से हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध किया है। हमारे साथ हैं हमारे समय की प्रखर और चर्चित उपन्यासकार, कहानीकार व नाट्य आलोचक प्रज्ञा जी, और एक गहरा अकादमिक और शोधपरक दृष्टिकोण जोड़ने के लिए हमारे साथ हैं इग्नू में आचार्य अध्येता डॉक्टर राजवंती जी। बलराम जी, प्रज्ञा जी, राजवंती जी, मैं प्रोफेसर राकेश कुमार आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले प्रज्ञा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारतेंदु युग से शुरू हुई आधुनिकता की इस यात्रा को आप आज के युग में कहाँ खड़ा हुआ पाती हैं? आप स्वयं समर्थ उपन्यासकार हैं, हिंदी उपन्यासों में आधुनिकता के किस स्वरूप को आप देखते हैं?
3: देखिए राकेश जी, अगर भारतेंदु युग से बात शुरू करें तो लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु से लेकर, और अगर बहुत लंबे समय तक हम आगे तक आते हैं तो गीतांजलि श्री के रेत समाधि, और उसके बाद भी काफी पानी बह चुका है उपन्यास की पूरी धारा में, कथा की पूरी धारा में। उपन्यास आधुनिकता की शुरुआत से ही बहुत लोकप्रिय विधा रही है पाठकों के लिए, और उपन्यास की शुरुआत में जो आधुनिक विचार दृष्टि रही है उसके केंद्र में व्यक्ति है, उसके केंद्र में यथार्थ है, हमारा जो सामाजिक आर्थिक यथार्थ है उसके केंद्र में रहा है। इसीलिए ये विधा पाठक को बहुत ज्यादा अपनी लगती है, और आज भी हम देखते हैं कि विभिन्न विचार सरणियों को उपन्यास उकेरता है, कल्पना के माध्यम से यथार्थ सामने आता है, नए क्षितिज खुलते हैं। और आज के 21वीं सदी के अगर मैं समय को देखूं और एक

0: मेजर जो लैंडमार्क अगर हम देखते हैं पूरे इस आधुनिक साहित्य का, अगर हम देखें कि उदारीकरण भूमंडलीकरण के दौर से लेकर और आज तक के इस समय को देखते हैं तो लगभग 40 वर्ष का समय हो गया है। और इस पूरे समय को अगर मैं कहूं कि सदी के आर पार के यथार्थ के तौर पर अगर हम लें तो भूमंडलीकरण के बाद बड़े बुनियादी परिवर्तन जो समाज में आए हैं हिंदी उपन्यास ने उसे उकेरा है। जिन ट्रेंड्स की बात आप कर रहे हैं उनको मैं बहुत अलग अलग रूपों में देखती हूँ। अगर हम आर्थिक सामाजिक दबावों को ही देखते हैं तो आप इस पूरे हमारे देश दुनिया में जिस तरह के बड़े आर्थिक घोटाले और आर्थिक संकट हैं, तो दूसरी तरफ जो हाशिए की आपने बात की उसमें मैं किसानी चेतना की भी बात करूंगी, तो वहाँ किस तरह से उनका उत्पीड़न बढ़ता गया है और उसे उपन्यास ने लक्षित किया है। 21वीं सदी के किसानी चेतना पर बहुत मजबूत उपन्यास सामने आते हैं। अगर हम देखते हैं पंकज सुबीर का अकाल में उत्सव, तो आप पाएंगे कि एक जगह प्रेमचंद गोदान लिख रहे हैं लेकिन प्रेमचंद के समय में वो कॉरपोरेट कल्चर और उस तरह का जो पूरा भूमि का अधिग्रहण उस तरह की चीजें नहीं थी जिस तरह से पंकज सुबीर अपने अकाल में उत्सव को लेकर आते हैं। किसान आत्महत्याओं का पूरा दंश लेकर आते हैं। इसके साथ साथ संजीव का फांस हमें दिखाई देता है। उसी रूप में मैं मधु काकरिया का ढलती सांझ का सूरज देखती हूँ, जहाँ पर आप देखते हैं कि एक बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई जो किसानी चेतना उसका एक वैकल्पिक स्वरूप भी दिखाया गया। और भी ऐसे कई उपन्यासों को हम देख सकते हैं। एक जो मुख्य बात मुझे लगती है 21वीं सदी में मात्र उपन्यास नहीं, मैं पूरे लेखन के संदर्भ में अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि स्त्री लेखिकाओं का एक मजबूत हस्तक्षेप हमें 21वीं सदी में दिखाई देता है। वो चाहे कथा है चाहे वो कविता है, पूरे साहित्य में एक बेहद मजबूत धमक के साथ हमें स्त्री लेखन के नए क्षेत्र खुलते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ अगर हम उपन्यासों के और ट्रेंड्स पर बात करें तो अस्मिता बोध के विविध स्तर हमें कई उपन्यासों में दिखाई दिए हैं। आर्थिक पक्ष की ही अगर हम और बात करते हैं तो विभिन्न जो भ्रष्टाचार हैं और उसमें किस तरह से सत्ता प्रतिष्ठान हैं और उनके बरक्स एक वैकल्पिक स्थितियां खड़ी करने वाले उपन्यासों में अगर मैं लूं तो संतोष चौबे का सपनों की दुनिया में ब्लैक होल एक अच्छा उपन्यास हम उसमें देख सकते हैं। कैसे वो एक समूची निराशा के बाद एक आशा की तरफ उपन्यास जाता है। और इसी रूप में अगर अन्य और उपन्यासों को लिया जाए तो शंकर जी का कुरवाड़ी फाइल है उसको देखा जाता है। हरीश राय का दूब उपन्यास या माटी राग उपन्यास भी यही कहानी इस रूप में कहते हैं। पर्यावरण की चिंता किस तरह से उपन्यासों में आई है, अनेकानेक विमर्श किस तरह से उपन्यासों में खड़े हो रहे हैं। 21वीं सदी का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जो मुझे दिखाई देता है कि इतिहास को मैं मानती हूँ राकेश जी कि इतिहास कथा साहित्य में भी होता है लेकिन उसका तरीका वो इतिहास के अनुशासन की तरह शुष्क और तथ्यात्मक नहीं है। वो एक रचनात्मक तरीके से साहित्य कैसे उपन्यास में आता है उसकी आप वानगी बहुत सारे उपन्यासों में देख सकते हैं कि कैसे शोध की दृष्टि से, और संजीव के तो सारे ही उपन्यास आप देखते हैं वो शोध के तौर पर हैं, चाहे वो सूत्रधार है उनका जो भिखारी ठाकुर पर आधारित है उपन्यास या अन्य कई उपन्यास है। एक ट्रेंड ये भी है। और एक दूसरा अगर हम ट्रेंड अगर उसकी बात करते हैं तो शोध के साथ साथ जो कस्बाई चेतना के उपन्यास है, हरिभटनागर का दो गज जमीन है या नीलेश रघुवंशी का अगर हम देखते हैं तो एक कस्बे के नोट्स हैं, तो इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं हिंदी उपन्यासों में। मिथकीय पौराणिक और ऐतिहासिक जो पात्रों के आधार पर उपन्यास लिखे जा रहे हैं। हाल फिलहाल में जहां आरा बहुत चर्चित हो रहा है इस समय राजीव शुक्ल जी का, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने प्रज्ञा जी के स्त्री जो है वो कथा के केंद्र में आई है। और आधुनिकता की पहचान ये भी है कि जो हाशिए पे पड़े हुए विषय थे या फिर जो वर्ग थे वो केंद्र में आने शुरू हुए। तो मैं इसी बात से सूत्र लेते हुए राजवंती जी की ओर रुख कर रहा हूँ और उनसे मेरा सवाल यह है कि साहित्य में लंबे समय तक स्त्रियों को केवल एक विषय या पात्र के रूप में देखा गया, महिला आत्मकथाओं ने इस परिदृश्य को कैसे बदला, स्त्री को रचनाकार व अपने जीवन की नियंता के रूप में कैसे स्थापित किया, तो इस बारे में आप बताइए।
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है राकेश जी। जब हम महिलाओं की बात करते हैं और उनके केंद्र में होने की बात करते हैं तो एक चीज निकल के सामने आती है, प्राचीन काल मध्य काल से होते हुए आधुनिक काल तक। प्राचीन काल महिलाओं का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। उसमें अगर वेदों की बात करते हैं तो 27 महिलाओं ने ऋग्वेद में अपनी ऋचाएं दी हैं। उसके बाद बहुत सी ऐसी संत महिलाएं हुई हैं, बहिणाबाई से लेकर लोरलबाई, तोरलबाई, मीराबाई से आते आते अभी वर्तमान में भी बहुत सी ऐसी

0: भी साहित्य रचा गया पुरुष ने महिलाओं पर लिखा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा, बहुत सी चीजें लिखी गई, लेकिन पुरुष ने अपनी संवेदना के आधार पे एक महिला के चरित्र को गढ़ा। उसमें हर रूप महिला का था, माँ का, पत्नी का, बहन का, प्रेमिका का, एक त्यागमय रूप जो है एक पुरुष ने दिखाया है। जैसे अभी आपने प्रेमचंद जी का नाम लिया, प्रभा खेतान से लेकर अगर अभी हम मनु भंडारी, रमणिका गुप्ता, मैत्री पुष्पा, पद्मा सचदेव और चंद्रकिरण सोनरेक्षा, और अगर उधर देखेंगे तो कौशल्या बैशंत्री और सुशीला टागभोरे, तो ये जो आत्मकथाएं हैं इन्होंने क्या किया, एक बदलाव ये समाज में लेके आई। और उस बदलाव में इन्होंने सिर्फ नहीं अपने आप को रखा बल्कि पूरे समाज को रखा। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी मूल्यों को महिलाओं ने रखा। मूल रूप से कहा जाता है कि स्त्री आत्मकथाओं देह पर आधारित, बहुत से सवाल उठे जब स्त्री ने अपने निजी संबंधों को जब समाज के सामने रखा तो एक आक्रोश व्यक्त हुआ, ये हमारा निजी मसला होता है, स्त्री को ये संवेदनात्मक मुद्दा होता है। लेकिन जब घरेलू हिंसा और संवेदनात्मक हिंसा यानी कि भावनात्मक हिंसा का सामना जो स्त्री कर रही है, यह होता है कि हम दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति स्वयं झेलता है उसकी एक अपनी अभिव्यक्ति होती है। और जब महिला आत्मकथाओं ने अपने अभिव्यक्ति को समाज के सामने रखा तो स्वाभाविक रूप से वह सत्य था, भले ही हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और इसी सत्यता को महिला आत्मकथाकारों ने रखा, उसने स्पष्ट किया कि मैं देह नहीं हूं, मैं एक चेतना हूं, मेरा एक अपना वजूद है, मेरी अपनी भावनाएं हैं, मुझे मानव समझा जाए। और जैसे पुरानी परंपराओं के नाम पर जो बंदिशें थी उनका महिला आत्मकथाकारों ने खुलकर विरोध किया। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान ने जिस रिश्ते में भी रही लेकिन उसने इतनी बोल्डनेस के आधार पे अपने रिश्ते को स्वीकृति भले उसे नहीं मिली, लेकिन जो जीवन उसने जिया उसने लिखा, उसने छुपाया नहीं। इसी प्रकार से पद्मा सचदेव ने, भले उसने प्रेम विवाह किया और उस व्यक्ति से, वो कहती है वो कि 17 साल की उम्र में मैं एकदम बावली हो गई थी, मैं प्रेम में पागल हो गई थी, आसक्ति मुझे हो गई थी, मैंने भोगा उस दुख को, लेकिन मैंने अपना नया जीवन शुरू किया और किस प्रकार से मैंने अपने जीवन को ढाला। और आप देखेंगे कि पद्मा सचदेव को बाद में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसी प्रकार से मनु भंडारी का जो आत्मकथा है, एक कहानी यह भी, उनकी आत्मकथा में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी प्रकार का उसे हम रोना धोना नहीं कह सकते हैं। एक पढ़ी लिखी महिला थी जिन्होंने देश की बच्चियों को शिक्षित किया और समाज के सामने एक मिसाल कायम की कि शिक्षिका होते हुए भी किस प्रकार से उन्होंने जो भी दंश झेला स्पष्ट उन्होंने लिखा है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री ने कोई कितने भी सवाल उठाए लेकिन कृष्णा अग्निहोत्री ने जो जिया वो सच लिखा। रमणिका गुप्ता जी ने जो जीवन जिया हादसे में उन्होंने स्पष्ट लिखा, उन्होंने किसी प्रकार की परवाह नहीं की। लोगों ने कहा कि घर टूट रहे हैं लेकिन जिस दृष्टि से उनको देखा गया उन्होंने उसको अभिव्यक्त किया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, दिनेश नंदिनी डालमिया ने भी अपने जीवन को मुझे माफ करना में लिखा कि मैं अपने परिवार को एक सुरक्षित शय देने के लिए मैंने डालमिया जी से शादी की। उम्र में मेरा काफी अंतर था, वो मेरी कविताएं पढ़ते थे और मुझे नहीं पता वो मुझे प्रेम करते थे या नहीं, लेकिन उन्होंने इस चीज को बखूबी स्वीकार किया। तो महिला आत्मकथाकारों ने अपनी कमियों को भी स्वीकार किया है, साथ साथ में उन्होंने अपने वजूद को भी गढ़ा है, इससे समाज प्रेरित ही हो रहा है। ये मेरा मानना है।
1: नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की राजवंती जी, क्योंकि स्त्री एक मात्र देह नहीं है बल्कि वो चेतना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और स्त्री से जुड़े हुए सारे जो प्रश्न होते हैं वो सिर्फ निजी नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
0: जी जी राकेश जी।
1: मैं अब रुख करना चाहूंगा वरिष्ठ साहित्यकार बलराम जी की ओर। बलराम जी न सिर्फ हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं बल्कि वर्तमान में पूरे भारतवर्ष की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन सब का काम भी आप देखते हैं, उनसे आने वाले साहित्य पर भी आपकी गहरी नजर रहती है। तो मैं आपसे बलराम जी ये जानना चाहूंगा कि जो स्वीकृत भारतीय भाषाएं हैं उनमें आधुनिकता का क्या स्वरूप है साहित्य का।
2: राकेश जी, अभी हमने प्रज्ञा जी से हिंदी के उपन्यासों पर बात की और उन्होंने स्त्रियों के उपन्यासों पर भी बात की और पुरुषों के, खासतौर से संजीव के किसानों पर केंद्रित उपन्यास उस पर बात की, और राजवंती जी ने अलग तरीके से स्त्री लेखन, तो ऐसा लग रहा है कि हम स्त्री लेखन को केंद्र में ले आए हैं। ये सच भी है
1: जी,
2: आज की तारीख में साहित्य के केंद्र में स्त्री लेखन ही है और होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में दलित लेखन भी है
1: जी।
2: स्त्री को बोलने की आजादी थी देश में, लेकिन लिखने की और सार्वजनिक रूप से अपना दुख, अपनी तकलीफ कहने की आजादी नहीं थी, और स्त्रियों ने अपने लेखन से उसे अभिव्यक्त किया है। लेकिन कहानी अगर यहीं तक रुक जाती कि वो अपना दुख लिख के, अपनी सच्चाई लिख के रह जाएंगी, तो बात शायद स्त्री के लेखक बनने की, उसे साहित्यकार की मान्यता मिलने की थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो

0: स्त्रियों ने इस विशेष बात को नकारा कि हम पुरुषों की तरह से पूरे समाज की पीड़ा तकलीफ को लिखेंगे, स्त्रियों की बात भी उसमें शामिल होगी। पहले जैसे पुरुष लिखते थे तो स्त्रियों की बात भी लिखते थे, मगर वो कितनी सच होती थी, या तो देवी बना दिया या राक्षसी बना दिया। स्त्री को स्त्री के रूप में देखने का एक नजरिया जो चाहिए होता था, वो स्त्री लेखन के साहित्य में आने की वजह से हम देख पा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है, पहले तो दलितों ने आत्मकथाएं 30-40 वर्ष पहले मराठी में दलितों ने अपनी तकलीफ अपनी यातना लिखना शुरू किया, और उसके बाद हिंदी में और भारतीय भाषाओं में स्त्रियों ने अपनी सच्चाई अपने जीवन की बातें सही सही लिखना शुरू किया। परेशानी भी पुरुषों को हुई, लेकिन अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि स्त्रियों को उनके दुख तकलीफ के साथ इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। और इसके लिए आप देखिए, अभी अभी साहित्य अकेडमी ने संस्मरण की किताब को पुरस्कार दिया। साहित्य अकेडमी में आप देखिए, या तो कविता को पुरस्कार मिलता था या उपन्यास को मिलता था। इक्के दुक्के आलोचक नामवर सिंह और रामविलास जी जैसे बड़े बड़े लोग थे आलोचना में, बाकी केंद्र में कविता थी, शुरू से थी और अभी भी कविता ही केंद्र में है। लेकिन कविता के साथ आज उपन्यास, भारत नहीं दुनिया के लेवल पे उपन्यास ने अपने आप को काव्य और महाकाव्य के सामने खड़ा कर दिया है, और कविता शायद उस तरह से अब नहीं है
1: जी,
0: अब केंद्र में उपन्यास है। संस्मरण को साहित्य अकेडमी ने पुरस्कार दिया, वो भी स्त्री के संस्मरण को। तो ये स्त्री लेखन ने अपना दबाव, अपना प्रभाव, अपनी महत्ता बताई है कि हम हैं। उस पर विवाद भी हुए, अब हम समय कम है तो हम लौटते हैं, स्त्री लेखन दलित लेखन की बात नहीं करते
1: जी।
0: स्त्रियों को भी वही होना है जो वास्तव में लेखक को होना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
0: स्त्री भी लेखक होना चाहती है, स्त्री लेखक नहीं होना चाहती
1: जी।
0: दलित लेखक दलित दलित दलित चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ, मैंने दो अंक निकाले दलितों पर, मैंने विरोध किया कि आप दलितों के द्वारा दलितों के लिए और वही पढ़ेंगे वही लिखेंगे, गलत है
1: जी।
0: आप साहित्य की
1: सत्ता में
0: आप भागीदारी चाहते हैं, जैसे राजनीति समाज में, तो लेखक को अगर लेखक होना है तो अंग्रेजी का एक लेखक पंकज, अंग्रेजी का उपन्यास है दी एंड ऑफ सफरिंग्स
1: जी जी जी,
0: उस उपन्यास को आप पढ़िए
1: जी।
0: तो चाहे तो आत्मकथा कह लें, चाहे तो उपन्यास कह लें, चाहे तो धार्मिक किताब कह लें, चाहे फिलोसफी की किताब कह दें, चाहे यात्रा वृत्तांत
1: जी,
0: वो एक रचना ऐसी है,
1: बड़ा परिवर्तन आया है जी, बड़ा परिवर्तन आया है सर। ये आपने जो बात कही कि जो विधाओं का जो एक मिश्रण हो रहा है
0: जी।
1: तो और विशेष तौर पे आप जब चर्चा कर रहे थे तो कथेतर की मुझे समझ आ रही थी कि कथेतर एक केंद्र में आ रहा है। तो मैं प्रज्ञा जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी भी एक कथेतर किताब आई है, यात्रा संस्मरण और संस्मरणों की किताब आपकी आई है, कुछ मंजिलें कुछ रास्ते। तो आपसे सवाल ये मेरा है कि पिछले कुछ समय से हिंदी साहित्य में नॉन फिक्शन यानी कथेतर साहित्य का एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हुआ है, तो सवाल ये कि क्या अब साहित्य को छोड़ के लोग सिर्फ आप क्या यथार्थ को पढ़ना चाहते हैं?
2: राकेश जी, अभी डॉक्टर राजवंती ने और आदरणीय बलराम जी दोनों ने ही कथेतर पर बात की है, संस्मरणों के हवाले से, आत्मकथा के हवाले से, जीवनी के हवाले से, और अभी आप कथेतर की बात कर रहे हैं जिसे एक समय में अकाल्पनिक गद्य वृत्त भी कहा गया और आप बीती के रूप में जिस तरह से आया है। मैं ये कहूंगी कि कथेतर के क्षेत्र में आज बहुत सारे कथाकार हैं और 21वीं सदी इस रूप में मायने रखेगी कि लगभग सभी वरिष्ठ हों चाहे और हो, सारे ही कथाकार कथेतर के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली सदी में कथेतर की रचनाएं हमें नहीं मिलती हैं, पिछली सदी में भी हमें कथेतर पर कई रचनाएं मिलती हैं। नासरा जी ने मर्जीना के देश में लिखा जो बहुत चर्चित रहा, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि एक लोकप्रिय विधा के रूप में यह आ रही है। लेकिन फिर भी कथा और कथेतर का अगर हम संबंध जोड़ते हैं तो यथार्थ को मैं वो सेतु मानती हूँ जो कथा में भी है और जो कथेतर में भी है। एक जगह व्यापक वस्तुगत यथार्थ है और एक जगह निजी यथार्थ किस तरह से वस्तु परकता की ओर जा रहा है। मैं एक चीज और मानती हूँ कि कथेतर में एक लेखक क्यों आ रहा है, एक कथाकार क्यों आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि एक ही विधा में काम करते करते एक ऐसा बिंदु आता है कि जहाँ कोई रचनाकार एक मानसिक थकान भी महसूस करता है, तो विविध विधाओं में आवाजाही का क्रम, और हम ये साहित्य की शुरुआत से देख रहे हैं। आपने भारतेंदु का नाम लिया था, चाहे भारतेंदु को देख लीजिए, चाहे आप प्रेमचंद को देख लीजिए, चाहे आप अन्य लेखकों को देख लीजिए, वो विविध विधाओं में आवाजाही करते हुए अपनी उस मानसिक थकान को उतारते हैं और फिर अपनी मुख्य विधा में फिर से लौटते हैं। अभी

0: शिवना का आपने नाम लिया। शिवना का एक कथेतर का पूरा सत्र का संचालन मैं कर रही थी जिसमें तीन लेखिकाएं मेरे साथ थी, मनीषा कुलश्रेष्ठ थी, शिखा वार्ष्णेय थी और वंदना अवस्थी दुबे थी। और ये तीनों लोग संस्मरण लिखते हैं और यात्रा संस्मरण लिखते हैं। शिखा वार्ष्णेय की किताब तो लंदन की जो उनकी डायरी है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वहाँ की अलग अलग जगहों के बारे में बताती हैं। वंदना अवस्थी दुबे चर्चित हैं, वो रेल संस्मरण लिखती हैं। पर मेरा एक सवाल ये वहाँ भी था और मैं आज यहाँ भी उठा रही हूँ कि एक जो हम महादेवी या उस तरह के हम पुराने संस्मरणों को देखते थे तो जीवन से एक लंबा जुड़ाव संस्मरण का जो पात्र था उसका रहता था, लेकिन आज के जब हम कुछ संस्मरण जैसे ये रेल संस्मरण है और आप खुद देखते हैं आज का जो पूरा समाज बदल गया है, रेल यात्राएं वैसी रेल यात्राएं नहीं होती कि हम एक दूसरे से बड़े अनौपचारिक हो जाएं। आज का वो समय नहीं रहा कि हम खाना के डिब्बे शेयर कर रहे हैं या हम अपनी व्यक्तिगत बातचीत शेयर कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ तात्कालिक ऑब्जर्वेशंस को ही संस्मरण कहना, इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है। इसलिए वो संस्मरण मेरे लिए ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी कथेतर गद्य की किताबें हाल फिलहाल में जो मैंने पढ़ी भी हैं, जो पिछले साल बड़ी मकबूल हुई, मधु काकरिया की मेरी ढाका डायरी, एक इतिहास है अपने आप में, मकम्मल इतिहास है। और उस ढाका डायरी में ढाका में जो भारतीय रह रहे हैं उनकी अपने जो है किस तरह की तकलीफें हैं, जो स्त्रियां हैं चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है उनकी किस तरह की तकलीफें हैं, वहां की पूरी राजनीति किस तरह से है, तो उसको वो बहुत अच्छी तरह उठाती है। इसी तरह से सूरज पालीवाल जी जो बड़े आलोचक हैं, मेरे नक्शे के मुताबिक शिक्षा के दरीचे खोलती हुई किताब है कि गांव का एक बच्चा कैसे पहुंचता है और कैसे शिक्षा के बड़े आयामों से जुड़ता है। इसी तौर पर तुलसीराम जी का मुर्दैया या मणिकर्णिका की आप बात कर सकते हैं। ये कथेतर की किताबें किस तरह से सामने आ रही हैं। अभी जो है मंडलोई जी की जो आत्मकथा आई, जब से आंख खोली है, बहुत सारी लगातार चर्चित चीजें आ रही हैं। और कल्पना कहानी का अगर औजार है तो यथार्थ और जिया भोगा जो अनुभव है वो कथेतर का अपना उसका एक मिजाज है, वो उसको लेकर सामने आता है। और मैं कहूंगी कि वर्तमान समय में कथेतर गद्य की लोकप्रियता है, जैसे शमशेर जिस तरह से कहते थे बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, तो कथेतर की पंचलाइन मुझे लगती है यही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बस इस पूरी चर्चा में एक अंतिम प्रश्न, क्या आधुनिक बदलाव आए हैं, वो आधुनिक तकनीक में भी बदलाव आए हैं, अब किताबें जो है नया पाठक किंडल और ऑडियो बुक्स में भी जा रहा है, तो आपसे बहुत संक्षेप में दो एक पंक्ति में आप मुझे बताइए कि आप क्या भविष्य देखते हैं, ये आधुनिक तकनीक में जो बदलाव आ रहा है इससे साहित्य प्रभावित होगा, तो आप सर बताइए संक्षेप में।
2: प्रभाव तो पड़ता है, तकनीक बदलती है तो उसका दबाव तो पड़ता है। और आप दोनों ने बहुत सारे लोगों की चर्चा भी कथेतर के था लेकिन केंद्र में नहीं था या चर्चा में नहीं था, संगीतता नहीं था। आज कथेतर गद्य में भी संस्मरण आ गया है, स्थापित हो गया है।
1: जी चर्चा बहुत शानदार विचार उत्तेजक रही है और इस परिचर्चा का समाहार यही है कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के तमाम बदलावों और बाजारवाद के शोर और माध्यमों के इस डिजिटल रूपांतरण के बावजूद साहित्य की मूल आत्मा वही रहेगी, मनुष्यता की खोज, संवेदना का विस्तार और हाशिए के वर्गों की आवाज को बुलंद करना।
3: हिंदी साहित्य का आधुनिक स्वरूप, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे वरिष्ठ कथाकार और संपादक श्री बलराम, वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर जयवंती जाखड़, वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर प्रज्ञा। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर राकेश। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां, प्रस्तुत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम प्रकाश प्रजापति।
4: 24 मई 2026 को सुर साहित्य परिषद के तत्वाधान में एक भव्य साहित्यिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन साहित्यिक प्रेमियों, नावांकुर रचनाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध हुआ। कार्यक्रम द्वारका नई दिल्ली में हुआ। कार्यक्रम की संयोजिका सुर साहित्य परिषद की कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा पांडे रहीं। इस साहित्यिक कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार प्रोफेसर हरीश नवल तथा वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती सुधा नवल विशेष रूप से उपस्थित रहीं। दोनों साहित्यकारों ने अपने विचारों एवं अनुभवों के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित रचनाकारों को साहित्य की विविध विधाओं और रचनात्मक लेखन की बारीकियों से परिचय कराया। प्रोफेसर हरीश नवल ने कविता का उद्भव, कालखंड के अनुसार कविता के बदलते प्रारूप और समाज में कविता के महत्व पर अपने महत्वपूर्ण विचार सभी रचनाकारों के साथ साझा किए। इसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित रचनाकारों के प्रश्न भी एक एक कर शामिल किए गए और दोनों ही वरिष्ठ साहित्यकारों ने सबके संतुष्टि परक उत्तर भी प्रदान किए। कार्यक्रम में सुर साहित्य

0: परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जैन, उपाध्यक्ष उर्वी उदल, सचिव ज्ञानेन्द्र प्रयागी, सदस्य अदिति अस्थाना, कवित्री एकता सिंह उपस्थित रही। सुर साहित्य परिषद के संस्थापक अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि परिषद का उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के प्रति नई पीढ़ी में रुचि विकसित करना तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना है। वहीं 26 मई को ऑडिटोरियम दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में साहित्य उत्सव जश्न अदब द्वारा न्यायमूर्ति दिल्ली उच्च न्यायालय श्री गिरीश काठपालिया की नज्मों व गजलों का संग्रह लकीरों के गुंजन पुस्तक का लोकार्पण समारोह किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय मुख्य न्यायमूर्ति दिल्ली उच्च न्यायालय रहे। अध्यक्षता पद्म श्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर रहे। विशिष्ट अतिथि समाज सेवी श्री पवन कुमार रहे। सानिध्य प्रख्यात कवि एवं शायर कुंवर रणजीत सिंह चौहान रहे। मंच का संचालन प्रख्यात कवि श्री दिनेश रघुवंशी ने किया। वहीं दिल्ली विधानसभा सचिवालय के अधीन विधायकी अध्ययन ब्यूरो के तत्वाधान में त्रैमासिक पत्रिका विधान चेतना का शुभारंभ किया गया। इसके प्रवेशांक फरवरी अप्रैल 2026 का लोकार्पण 28 मई 2026 को दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक सदन में श्री विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित भव्य समारोह में श्री ओम बिरला तथा श्री किरेन रिजिजू के कर कमलों से सम्पन्न हुआ। विधान चेतना का उद्देश्य संसदीय प्रक्रियाओं, विधायकी कार्य, संवैधानिक मुद्दों एवं शासन प्रशासन से संबंधित मौलिक शोध विश्लेषण लेख को प्रोत्साहित एवं प्रकाशित करना, दिल्ली विधानसभा तथा उसके सचिवालय की विभिन्न गतिविधियों, विश्वसनीय एवं नियमित जानकारी जनता, विधायकों, शोधकर्ताओं एवं इच्छुक पाठकों तक पहुंचाना तथा देश के संसदीय इतिहास से जुड़े दुर्लभ, रोचक एवं प्रेरणादायी तथ्यों, घटनाओं एवं व्यक्तित्वों को प्रकाश में लाकर युवा पीढ़ी एवं आम पाठकों में संसदीय परंपरा के प्रति गौरव एवं प्रेरणा का संचार करना है। इस अवसर पर देश भर के रचनाकारों, लेखक, शोधकर्ता, पत्रकार, शिक्षाविद मौजूद रहे। वहीं 28 मई 2026 को निर्माण विहार दिल्ली में नव सरोकार फाउंडेशन के तत्वाधान में पद्म श्री पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी की 21वीं पुण्यतिथि पर नव सरोकार फाउंडेशन के संस्थापक श्री प्रवीण व्यास के सानिध्य में भव्य कविता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन श्रीमती सीमा कौशिक मुक्त ने किया। इस अवसर पर सर्व श्री राजेश भास्कर, डॉक्टर महेंद्र शर्मा मधुकर, विवेक कविश्वर, अशोक मधु, अजय अक्ष, संजीव निगमानाम, भगत सिंह वर्मा, तुलिका सेठ, दीपा शर्मा उजाला, सीमा शर्मा मंजरी, राजेंद्र राज निगम, इंदु निगम, सीमा रंगा इंदिरा, दीपिका वल्दिया समेत अनेक लोगों ने काव्य पाठ किया तथा सभी कवि कवित्रियों ने एक से एक बढ़कर कविता की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर श्रोतागण ताली बजाने पर मजबूर हो गए। वहीं 28 मई को साहित्य सृजन कुटुंब द्वारा आयोजित शब्दावली मैत्री काव्य गोष्ठी का आयोजन श्रीमती संतोष संप्रदी के तत्वाधान में वेदांता रेस्टोरेंट मुनिरका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आमंत्रित कवि सर्व श्री प्रदीप भट्ट, सुषमा भंडारी, कुसुमलता पुंडोरा, वाजिद मेरठी, कृष्ण शर्मा दामिनी, एनसी खंडेलवाल, गुस्ताख हिंदुस्तानी, रविन्द्र भूषण, प्रेम सागर प्रेम, रजनी बाला सहज, सुनीता पुनिया, पूजा भारद्वाज, दिनेश तिवारी, शालू शर्मा, रचना निर्मल, राजेश दिल, संजय कुमार गिरी, अमृता अमृत समेत अनेक कवि कवित्रियों ने काव्य पाठ किया। वहीं 29 मई को उमंग संगोष्ठी का चौथा तल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र व्यम और वैश्विक हिंदी परिवार के संयुक्त तत्वाधान में सुप्रसिद्ध कवि लेखक समीक्षक श्री नरेश आंडिल्य के 3 गद्य संग्रह पर चर्चा हुई। लेख संग्रह, शब्द संकल्प, समीक्षा संग्रह, पन्ने जो नजरों से गुजरे, शोध ग्रंथ, नाटकों में गीत, सार्थकता और प्रभाव पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सचिदानंद जोशी ने की। सानिध्य वरिष्ठ साहित्यकार श्री बाल स्वरूप राहिर का रहा। मुख्य वक्ता कवि लेखक समीक्षक डॉक्टर अनिल जोशी रहे। वक्तागणों में वरिष्ठ साहित्यकार श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, कवित्री एवं कथाकार श्रीमती अलका सिंह, प्रसिद्ध नाट्य अभिनेता प्रोफेसर प्रमोद शास्त्री रहे। प्रस्तावना एवं बीज वक्तव्य श्री अनिल वर्मा मीत का रहा। आलेख पाठ प्रसिद्ध साहित्यकार श्री शशिकांत का रहा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल ने किया।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम प्रकाश प्रजापति। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: अभी आप सुन रहे थे साहित्यिकी, ये आकाशवाणी है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे अतिथि।
3: नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह डोगरा। आप पत्रकार हैं, लेखक हैं और समाज के विभिन्न हिस्से जो हैं उनमें लगातार सक्रिय

0: ऐसे बहुत सारे काम आप करते हैं जिनसे दूसरे प्रेरित होते हैं। तो सुरेंद्र जी से आज इनकी पूरी यात्रा के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सुरेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार रिलभ जी।
0: जैसा कि हमने कहा कि आप पत्रकार हैं और लेखक हैं, तो सबसे पहले जब हम किसी भी पत्रकार के बारे में सुनते हैं या लेखक के बारे में जानना चाहते हैं, एक सवाल मन में आता है कि भारत में किस हिस्से में आपका जन्म हुआ और शुरुआती जो पढ़ाई थी वो कैसी थी?
1: नीलम जी, मेरा जन्म तो दिल्ली में आनंद पर्वत जगह है, वहां पर हुआ और मैं, लेकिन मूल रूप से हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और पढ़ाई भी जो है वो दिल्ली में ही, प्राइमरी स्कूल ऊपर रामजस स्कूल, अगर आपको आनंद पर्वत का पता हो दिल्ली में, और फिर आगे 10वीं 12वीं की क्लासेस जो है वो हम क्योंकि नांगली शिफ्ट कर गए थे तो पश्चिम विहार B3 पश्चिम विहार से वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। BEd जो है वो मैंने रोहतक से किया है।
0: जी, तो BEd किया तो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जाने का विचार था। तो पत्रकारिता में कैसे आए फिर?
1: देखिए, पत्रकारिता की तो बात ये कहें कि थोड़ा सा ना बड़े भाई साहब का हम मेरे जीवन पे काफ़ी प्रभाव रहा है, अगर इस बात को कहा जाए तो, क्योंकि उनको ना पढ़ने की बड़ी रुचि थी
0: जी।
1: और बल्कि उनको बहुत क्रेडिट इसलिए भी जाता है क्योंकि जब छोटे होते हैं तो भाई बहनों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जाता ही है उनको, और एक अंग्रेजी पे भी उनका बहुत वो था फोकस, बहुत अच्छी अंग्रेजी थी उनकी और वो मेरे को भी उसी तरह से मेरे को नर्चर करते थे और मैं बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ बड़े भाई साहब का बड़ा इम्पैक्ट रहा, बल्कि छोटे भाई का भी, क्योंकि उसको फोटोग्राफी का शौक था। बड़े वाले भाई साहब जो है वो काफ़ी, उन्होंने लॉ के ऊपर किताबें भी लिखी और वो लॉयर हुए हमारे फैमिली में, तो उनका इम्पैक्ट जो है मेरे को लगता है पढ़ने पर जो ज़्यादा कहें, तो उनकी वजह से जो है लिखने में रुचि बनी। और फिर पत्रकारिता की बात करें तो वैसे सच्चाई तो ये है कि 6ठी क्लास के अंदर वो भाई, बड़े भाई साहब की वजह से ही मुझे जो है किसी अखबार में एक छोटा सा आर्टिकल दिवाली पे लिखा था शायद, वो इस तरह से मौका मिला। लेकिन उस समय तो ये कह सकते हैं कि जस्ट एक बिगनिंग थी या ये समझ लो बचपना था वो तो, लेकिन गंभीरता जो है वो आई जब मैं, शादी हो चुकी थी मेरी और 93 में मेरी मैरिज हुई, 94-95 के अंदर मुझे थोड़ा सा इस तरफ रुझान हुआ पत्रकारिता की तरफ
0: जी।
1: फिर काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिलते चले गए और फिर तो जो है पंजाब केसरी से जैसे पहचान वाली बात थी
0: जी।
1: तो हम संवाद सूचक के तौर पे हमें जो है वहां पर, लेकिन मेरे को ना शुरू से ही कुछ ज्यादा बेहतर देने की, तो संवाद सूचक में तो 5-7-10 लाइनें की रिपोर्टिंग होती थी, साउथ वेस्ट दिल्ली से मुझे अपॉइंट किया हुआ था, वो पार्ट टाइम जॉब थी
0: जी।
1: लेकिन मेरे को ये रहता था कि मैं कुछ और बेहतर लिखूं, तो फीचर पेज का पता लगा तो, और लेख लिखने लगे राजेश निरंजन, जो कि हरिभूमि के लिए भी मैं काम करता था, स्कूल से छुट्टी होती थी नांगलोई में, मैं मॉडर्न चर्च स्कूल में काम करता था, वहां से छुट्टी होती थी और मैं जो है वहां मुल्तानगर में ऑफिस होता था हरिनगर का, C101 आज भी याद है मेरे को तो नीलम जी वो जो एक लम्हा रहा ना, तो राजेश निरंजन जी हमारे हिमाचल से थे बाई चांस हमीरपुर से, उन्होंने भी मेरे को ना काफी कुछ, मतलब ये कहें कि रिपोर्टिंग से आर्टिकल और फीचर आर्टिकल लिखने में, हालांकि इसमें मुझे शुरुआती रिपोर्टिंग में मुझे रामरतन शर्मा जो पंजाब केसरी थे उन्होंने मेरे को थोड़ा मदद किया शुरुआती दौर में, एक रोशन चौधरी जी थे वो भी बिलासपुर से हैं और वो बल्कि अश्विनी जी का जो है एडिटोरियल जो है वो प्रूफ रीड किया करते थे, तो मुझे कहने का मतलब कुल मिला के अच्छे अच्छे लोग मिलते चले गए और मैंने ना हर चीज पे गंभीरता, जबकि मैं फुल टाइम जॉब करता था लेकिन मैं अपनी पूरी शिद्दत से पत्रकारिता करता था, लोग मुझे फुल टाइम पत्रकार समझते थे मैम।
0: तो लगभग 3 दशकों से ज्यादा का आपका पत्रकारिता का अनुभव है, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई मैं वो जानना चाहूंगी आपसे कि सबसे पहला असाइनमेंट जो था वो आपने बताया कि पंजाब केसरी से पहचान आपको मिली और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले गए। आज जो है पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूप हम देखते हैं, सोशल मीडिया भी है और बहुत सारे चैनल्स भी हैं, फिर जो टीवी चैनल है उनकी अपनी वेबसाइट भी है तो जिसमें लेखन का कार्य होता है, आप ऐसे में एक नैतिक पत्रकारिता जो है इस कॉन्सेप्ट को क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं?
1: देखिए, मैं तो शुरू से ही इस चीज का, क्योंकि मैंने देखिए कि मैं एक बार किसी ने हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, मैं नाम का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा शायद उन्हें हर्ट कर जाए, बट द थिंग इज कि देखिए क्या होता है, जो कोई भी, मैं तो ये बात बोलता हूँ, बात पत्रकारिता की नहीं है, कोई भी आदमी जो कोई काम करता है उसे अपने काम के लिए पूरी पागलपन से काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी काम में घुसोगे नहीं अच्छे से तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड ये मेरा जीवन का जो है एक, मतलब ये समझ लो लक्ष्य रहा कि मुझे उत्कृष्ट देना है, चाहे कैसे भी देना है, इसमें मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ का, सुनीता डोगरा का, बच्चों का भी बहुत योगदान रहा है, तो मतलब मुझे ये रहा कि यार कुछ ना कुछ अच्छा करना है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता जो आपने, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था उसको मैं इस तरह से कोरिलेट करूंगा कि पत्रकारिता तो देखिए ऐसा एक पूरा अध्ययन है, रिसर्च है, इसमें तो जितना कर लो वो कम है
0: जी।
1: तो उसके लिए पहले तो हमें लाइब्रेरियां छाननी होती थी, मैं लाइब्रेरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से, इवन अभी ये जो अपना

0: लाइब्रेरी या रशियन लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के प्रति इसलिए बहुत ज्यादा रुझान भी है क्योंकि देखिए, और आप एक देखेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी जो मैं धरोहर समझता हूँ वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही है, और वो डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी से बड़ा कोई स्रोत हो ही नहीं सकता।
1: जी
0: तो इसलिए पत्रकारिता के अंदर जो, और जो नैतिक मूल्यों की आपने बात करी, तो मुझे लगता है कि पत्रकार जो है वो किसी भी, और साहित्यकार ये किसी भी देश की धरोहर होते हैं। अगर ये ढंग से कुछ भी कार्य करते हैं तो वो समाज के लिए, समाज के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, और
1: जी
0: मैं भी अपनी तरफ से उसी कंट्रीब्यूशन पे लगा हुआ हूं।
1: जी आप हिमालिनी मैगजीन जो है उसके दिल्ली ब्यूरो प्रमुख रहे हैं, तो ऐसे में दो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक तो यही कि भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने में मीडिया की क्या भूमिका आप समझते हैं, दूसरा ये कि ब्यूरो प्रमुख के तौर पर कैसी भूमिका आपकी रही, क्या जिम्मेदारियां थी, क्या चुनौतियां थी।
0: देखिए थी नहीं, मैं अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ।
1: जी
0: 2000 जनवरी 2019 से मैं जुड़ा था, और हिमालय पत्रिका कोई आज की नहीं है, पिछले लगभग 28 वर्षों से निरंतर मासिक पत्रिका निकलती है, और हिंदी की है वो,
1: जी
0: काठमांडू नेपाल से निकलती है। हालांकि उनको भी बड़ी चुनौतियां भी रही, लेकिन उसका भी एक बड़ा जबरदस्त वाला ऐतिहासिक जो है वो एक आधार है, वो ये है कि वो जो उनके पिता थे, जो हमारे सच्चिदानंद जी हैं उनके पिता थे कृष्ण जी, वो 3 सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने पीएचडी की हुई थी।
1: जी
0: बाई चांस ये प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी जी, वो वहां गए हुए थे नेपाल में, और बाई चांस उन दोनों की भेंट हुई। जब उनसे बातचीत हुई तो वो उस समय पत्र निकालते थे जो है कोई त्रैमासिक टाइप में।
1: जी
0: तो जब वो अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि खुद साहित्य कवि थे, तो उन्होंने उनको मोटिवेट करा कि आप पत्रिका क्यों नहीं निकालते और आप इसको थोड़ा सा व्यापक करिए, और आप हिंदी का कार्य कर रहे हैं नेपाल में तो ये तो
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसे वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इसे पत्रिका का शेप दीजिए। एंड दैट वॉज द माइल स्टोन ऑफ आवर मैगजीन। तो ये जो बात थी, तो और वो जहां तक मेरे जुड़ने की बात है तो 2018 के अंदर मैं पहले उनसे मुलाकात हुई मेरी, और मेरठ के अंदर एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर वीजे पंडित, वो साहित्य पे जो है साहित्य सम्मेलन कराते हैं मेरठ के अंदर,
1: जी
0: तो वहां उनसे मुलाकात हुई थी। और 2019 में मुझे बाई चांस 2018 के लास्ट में ही वहां पर जाना हुआ, और एक किसी आयोजन के अंदर हम वहां पर मिले। 1 जनवरी 2019 से मैं निरंतर जो है वहां उनके लिए दिल्ली से ब्यूरो प्रमुख के तौर पर उन्हें काफी, मतलब जो कहीं चाहे किसी कहें आप पुस्तक समीक्षा की बात हो, या कोई किसी खास हस्ती का इंडिया से किसी खास हस्ती के ऊपर जो है इंटरव्यू हो, है ना, और या कोई सामाजिक सरोकार रखने वाला कोई लेख हो, तो इस तरह का मेरा योगदान उनको नियमित तौर पे, मासिक तौर पे मिलता रहता है। और इतना ही नहीं, ये तो हिंदी की बात हुई, उनकी वेबसाइट भी है उस पे, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी में भी लिखने का बहुत रुझान रहता है, क्योंकि
1: जी
0: वैश्विक स्तर पर अगर आपने अपनी पहचान बनानी है तो अंग्रेजी भी आपको लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, जाननी चाहिए, और आपकी उस तरह की पहचान। तो और यही कारण रहा कि मुझे हिमालिनी से जो है, क्योंकि उनका वैसे भी वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा नाम है,
1: जी
0: हिंदी का कोई ऐसा साहित्यकार, लेखक, ऐसा कवि ऐसा नहीं होगा जो हिमालिनी पत्रिका को नहीं जानता हो। तो मुझे भी बड़ा गौरव महसूस होता है कि मैं ऐसी बड़ी पत्रिका के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
1: जी तो क्या भूमिका मानते हैं मीडिया की दो देशों को नजदीक
0: हाँ,
1: लाने में।
0: ये तो एक बहुत अहम प्रश्न आपका है,
1: जी
0: और ये असल में मुझे लगता है कि ये बात हिंदुस्तान और नेपाल ही की नहीं है, मेरा एक ना एजेंडा है लाइफ के अंदर, और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, और मुझे बहुत सफलता भी मिली है। वो ये है कि मीडिया कैन ब्रिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन दी वर्ल्ड।
1: जी
0: तो लेकिन बात, मुद्दा यही है कि वो मीडिया कर्मी उसको परोसते कैसे हैं। देखिए दो एंगल होते हैं हर चीज के, दो पहलू होते हैं,
1: जी
0: जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। अब दिक्कत यह है कि आज जो है ना, अब जैसे मैं, क्योंकि जब वो जो दंगे हुए अभी पिछले दिनों, मैं वहां गया हुआ था एज ए गेस्ट टीचर, मैं वहां पर इनवाइट किया हुआ था
1: कहाँ की बात कर रहे
0: हेथोड़ा
1: हैं।
0: नेपाल में,
1: जी
0: तो मैंने वो सारा मंजर देखा है कि वहां पर जैन जी को जो जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, या वहां जो इतना नुकसान हुआ, मारकाट हुई, मैं सच्ची बता रहा हूं मेरे आंखों सामने हुई है वो सारी चीजें। मैं
1: जी
0: हेथोड़ा में था, बागमती प्रोविंस में ही आता है काठमांडू भी, ठीक है, और बल्कि काठमांडू फिर जाना मेरे को बिल्कुल मना कर दिया जिन लोगों के पास में रुका हुआ था, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेजिडेंशियल स्कूल था।
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि उसमें सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा जो है इस तरह से मारकाट हुई, क्योंकि गंभीरता जो है ना, आज भी मैं जिस स्कूल में रुका हुआ था, या मैं गया जिन्होंने मेरे को वहां बुलाया हुआ था गेस्ट टीचर के बतौर, वहां पर खुद 5 अखबार डेली आते हैं, एक इंग्लिश का, बाकी नेपाली के। तो पत्रकारिता में, और मैंने बहुत, और मैं आपको एक बात और बता दूं, वहां के मीडियाकर्मी बहुत सिंसियर भी हैं,
1: जी
0: बहुत गंभीर हैं। वहां के साहित्यकारों की बात करें तो वो एक विषय अलग हो जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता का आज जो अस्तित्व है वो हमारे इंडिया में भी

0: बहुत अच्छा नहीं रह गया है। तो नेपाल जो है वो छोटा सा देश है, उसको अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है। तो
1: जी
0: वहां पर ना और जो इन्वॉल्वमेंट है वर्ल्ड की हो गई है खासतौर पर,
1: जी
0: वो वहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है। और अब देखते हैं कि अब ये नए बालेन शाह जैसे बने हैं प्रधानमंत्री युवा, तो शायद कुछ चेंज आए। लेकिन हाँ, क्योंकि आपका प्रश्न बड़ा अहम है, उसको बताना बहुत जरूरी है कि पत्रकारिता का क्या भूमिका हो सकती है भारत नेपाल के संबंधों की। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी भूमिका है और कई बड़े बड़े नाम हैं पत्रकारिता का। जैसा मैंने ये हिमालिनी के जो प्रमुख थे जिन्होंने स्थापना करी उनके बारे में बताया, ऐसे
1: जी
0: बहुत सारे वहां पर जो है पत्र भी हैं, जो काठमांडू पोस्ट है वहां पर, हिमालयन टाइम्स है, ये ऐसे अखबार हैं। इनके अगर आप, मैं सच बता रहा हूं, मैं तो क्योंकि 2 महीने रहना वहां पर,
1: जी
0: 2 महीना 2 दिन में रुका, तो मैं काठमांडू पोस्ट तो इसीलिए जानबूझकर पढ़ता था कि अंग्रेजी का था। नेपाली मैंने काफी हद तक सीख ली, तो नेपाली को भी पढ़ता था। और आप कल्पना नहीं करोगे, हमारा कोई हिंदुस्तान का शायद ही कोई अखबार का डेली का अखबार हो, दावे के साथ कह सकता हूं, जो बहुभाषी हो, वहां पर एक गोरखा पत्र अखबार आता है डेली का,
1: जी
0: उसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली, आप सोचिए वो कैसे कंपाइल करते होंगे।
1: जी
0: मेरी बल्कि बात हुई उनसे जो उनके एडिटर थे, मैं तो देख के दंग रह गया। और हमारे संस्कृत का उस पर श्लोक लिखा हुआ है
1: जी
0: हेडलाइन पे ऊपर, मतलब जो जो फ्रंट पेज के ऊपर, तो बड़ा अपनापन सा महसूस होता है। तो नेपाली के बारे में तो जितना बोला जाए पॉजिटिव, उतना बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में उनके प्रति भावना है और
1: जी
0: हर भारतीय के प्रति होती है। तो नेपाल भारत पे बहुत सारे लोग अच्छा काम करे, अशोक वैद करके हैं जो कि बीरगंज में है, शायद ऑल इंडिया रेडियो से ही वो जुड़े हुए वहां के जो हुई है। तो कुल मिला के वहां के जो पत्रकार और वो जो लेखक है, साहित्यकार है, उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी एक्सप्रेशन है और वो बहुत अच्छा रोल अदा ऑलरेडी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर भी लोगों का काफी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है ना,
1: जी
0: क्योंकि वो कुछ धर्म से भी मिलना जुलना है ना। और हालांकि वहां मुस्लिम कम्युनिटी भी है, लेकिन वो भी बहुत हम्बल्ड है और बहुत अच्छे से आत्मीयता है लोगों के अंदर। तो
1: जी
0: पत्रकारों की एक अपना अलग भूमिका बन जाती है। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, मेरी एक फिल्म है लाइब्रेरी करके।
1: मैं तो ये आपसे पूछने ही वाली थी कि पत्रकार रहते हुए शब्दों से रिश्ता था, तो आप लेखक बन गए, लेखक से आप लाइब्रेरी तक पहुंचे, फिर उसके बाद फिल्म से कैसे जुड़ गए? आप डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं और बहुत अच्छे विषय आपने चुने अपने फिल्म्स के लिए, और समाज में कुछ योगदान करने का भी विचार उसके पीछे रहा, तो ये कैसी शुरुआत हुई?
0: नीलम जी, मुझे लगता है कि ना, देखिए आप निरंतर किसी भी काम को करते हैं ना, तो कुछ अपने आप जो है आपकी जो है दिमाग की बत्तियां खुलती हैं।
1: जी
0: उसका कारण वही, जैसे मैंने बोला ना, अच्छे लोग मिलते चले गए। और दूसरी बात ये भी है, वैसे बचपन में ना हमारी माता जी को बहुत फिल्मों का शौक था और हमें तो पता ही नहीं होता था। हम जैसे बताया ना, आनंदपुर में पैदा हुए, तो हर फ्राइडे को जो फिल्म रिलीज होती थी हमारी, जब जबकि बहुत कोई हम संपन्न परिवार से नहीं है, बावजूद उसके माँ को ये होता था कि भाई हमने पहला शो देखना है। उस समय ब्लैक होती थी टिकटें, लेकिन हम फिल्म देखने जाते थे, चाहे वो राजेश खन्ना हो, देवानंद हो, जो पुरानी फिल्में। तो फिल्मों का शौक तो उस वजह से बना बचपन में, उसके बाद दूरदर्शन पर देखते थे
1: जी
0: ना, तो फिल्मों का रुझान तो था ही। और पुरानी फिल्मों का तो मैं पूरा दीवाना हूँ गानों का। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ जो फिल्म मेकिंग के लिए आया, वो आया संदीप मारवा, जो मारवा स्टूडियो वाले हैं, मेरा उनसे संपर्क हुआ।
1: जी
0: और मैं उस दौर पे था कि जब मैं, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था और फुल टाइम जर्नलिज्म कर रहा था, तो मुझे लगा कि ना विजुअलाइजेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी महत्वता मैंने तब और ज्यादा महसूस करी कि जैसे अब मैं किताब लिखी मैंने 2017 के अंदर, तो पहली किताब जो मेरी डेब्यू बुक आई, उससे पहले भी मैंने कुछ और लोगों के लिए लिखी, तो जितना समझ थी तो उतना काम किया। लेकिन मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था जैसे अब अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो जो अंग्रेजी नहीं समझता तो भाई वो किताब उसके लिए बेकार है। सेम केस हिंदी की भी, आज भी ऐसे कोई बुजुर्ग आ या ऐसी जगह में आप चले जाते हो जहां पर कि हिंदी भी नहीं जानता कोई, तो फिर आपके पास कौन सी लैंग्वेज है? तो मैं फिल्म को यूनिवर्सल लैंग्वेज समझता हूं।
1: पत्रकार और लेखक सुरेंद्र सिंह डोगरा से हमारी रोचक बातचीत जारी है, लेकिन स्टूडियो की घड़ी ने कर दिया है इशारा कि अब हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, अगले सप्ताह भी ये बातचीत जारी रखेंगे। इस इंटरव्यू का अगला भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह। अब कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी के साथ मुझे यानी नीलम अलकाने को दीजिए अनुमति हमारे अतिथि कार्यक्रम से। नमस्कार।

ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੁੜਤੇ ਘੱਗਰਾ ਦੇ ਕੇ।

छोड़ में गबरू छमले वाले छमले वाले छैल छबीले शेरा सुन में गबरू छमले वाले।

रंगले हासे तैनू चढ़ी आख मारी, रंगले हासे तैनू चढ़ी आख मारी, नी तू हासे आंदे ढेर खलारे सौरियां दा पिंड।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक

0: ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। श्री लाइन व्यापारिक मंच को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंट तथा अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपये और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होगा और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। वे कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद C. सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मेधा, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए आदर और सम्मान के साथ याद करता है। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defense Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 10:10 और पूरे हो चुके हैं, लीजिए 20 सेकंड, और अब समय हुआ है हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। फिल्मी गीतों पर आधारित इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हम आपकी मेल्स को शामिल करते हैं, तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हिस्सा बनने के लिए हमें मेल कर भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप ये कार्यक्रम।

सुनने को मिल जाए सुबह से तो कहते ना कि दिन बहुत ही सुहावना सा बन जाता है। ये हसी वादियां, ये खुला आसमां। वैसे आजकल इतनी गर्मी में या ऐसी वादियों में जाने को तो मन नहीं करता, लेकिन पहाड़ों में आप रुक कर सकते हैं, पहाड़ों की ओर वहां जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर कहीं कहीं बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और मौसम बहुत सुहावना है। तो इस खूबसूरत सुबह में आपका और मेरा साथ, बाकी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं और हमें महसूस कराते हैं बैठे बैठे ही जन्नत की फीलिंग दिलाते हैं और ऐसा फील कराते हैं कि बस सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा अच्छा सा फील कराते हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ आपका अपना मन पसंद कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं ईमेल के जरिए ipradiodelhi@gmail.com। अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं और इस दिलकश गाने ने जो आपके दिन की शुरुआत की है, थोड़ी सी मीठी, कैसे कहें ना कि थोड़ी सी मिठास सी जो आपके दिल में घोल दी है, तो इस मिठास को आप बना के रखें, क्योंकि पूरे दिन ये जो मिठास, ये अच्छा सा मूड, फ्रेशनेस, ये जो अच्छा अच्छा सा फील होता है, ये दिन भर काम आता है, क्योंकि इतने सारे काम हमें करने होते हैं और कभी गुस्सा आता है, कभी लगता है कि बस अब छोड़ दें, कुछ ना करें, इतनी गर्मी में सारे काम करने पड़ते हैं। तो गर्मी का तो मौसम चल ही रहा है और गर्मी से संबंधित बहुत सारे सवाल हम अपने श्रोताओं से पूछते ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों आज कुछ ऐसा सवाल मैं आपसे पूछूंगी ना, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, और वो इंतजार ये कि एक और बहुत ही खूबसूरत गीत है जिस नगमे को सुनवाने के बाद मैं भी सोचती हूँ आपसे क्या पूछा जाए और क्या नहीं, क्योंकि आज है खास रविवार और मैं जानती हूँ कि आज आप सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम भी, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपके मन की बात हम कैसे निकलवाएं, और इसके लिए मुझे चाहिए छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक। तो म्यूजिकल ब्रेक ये होगा कि ये बहुत ही खूबसूरत गीत जो है ना अगला वाला, ये आप सबके लिए। सलाम नमस्ते फिल्म से ये गीत है, शान और गायत्री अय्यर की आवाज में, और मैं हूं आपके साथ दोस्तों सुषमा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली पर ये बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिकल प्रोग्राम आपकी पसंद।

तो दोस्तों इतने खूबसूरत जो गीत हम सुनते हैं ये हमारी कहते हैं ना कि मन को इतना शांत कर देते हैं और बहुत ही सुंदर गीत होते हैं जो दिल में एक अच्छा सा एहसास दिलाते हैं। अब ये एहसास क्या है सबके लिए अलग अलग होता है, आप उसे कैसे बयां करेंगी। किसी को किसी की अपनी खास की याद आती है, कोई किसी सपने में खो जाता है तो कोई बीती यादों में खोता है। सबके अपनी अपनी लाइफ कहते ना, सबके अपने अपने जीने का तरीका और सबकी अपनी अपनी जिंदगी उसको जीने का तरीका। तो किसको क्या याद आया किस गीत को सुनकर ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ शांति और सुकून ये खूबसूरत धुनें हमारे दिल को पहुंचाती हैं, दिमाग को ठंडक पहुंचा देती हैं, राहत देती हैं और शांत करती हैं कि ज्यादा मत चलो, थको नहीं, भागो नहीं, इसे ज्यादा मत चलाओ, बस शांति से कुछ पल बिताओ। और आज रविवार है, जैसे कि संडे है आप भी जानते हैं, और ये रविवार का एहसास ही हमें ये कराता है कि भाई आज कोई भागदौड़ नहीं, आज जल्दी जल्दी भागने की जल्दी नहीं।

नहीं है, ऑफिस पहुंचने की जल्दी नहीं है, पंच करने की जल्दी नहीं है, लॉग इन नहीं करने की जल्दी है, क्योंकि आज है रविवार, तो आज सारे काम हम करेंगे आराम आराम से। और सभी हमारे जो श्रोता हैं, हम देख रहे हैं, उन्हें भी ऐसे ही आराम आराम से अपनी मेल्स, स्टेप कहते हैं ना, कदम से कदम, स्टेप बाय वन करके अपनी एक एक गाने के बाद मेल पहुंचानी चाहिए। लेकिन हमारे श्रोताओं को आज रविवार को भी बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे पहला हमारा मैसेज जो है वो शामिल किया जाए। तो इस खूबसूरत गीत को सुनकर तो मुझे लगता है हमारे श्रोता भी भूल गए होंगे मेल भी करना है। अब श्रोताओं, मैंने कहा था कि मैं आपसे कुछ पूछूंगी और मुझे चाहिए उसका जवाब आपसे। आपकी जिस जिस की मेल्स, उसमें उसका जवाब आएगा, जिस जिस की मेल के जरिए, उसे मैं जरूर शामिल करूंगी। और जवाब सवाल जो है वो बहुत ही साधारण सा है, सिंपल सा है। वो ये है कि देखिए, आजकल गर्मियां हुई हैं, सभी रुक कर लेते हैं कि हम घूमने जाएंगे, बच्चों की छुट्टियां हो गई तो प्लान करते हैं अलग अलग जगह पर जाने का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस जगह पर आप जाते हैं, चाहे पहाड़ों का रुख करते हैं आप, उत्तराखंड, हिमाचल, या फिर किसी और अन्य जगह, या कहीं समुद्र की तरफ रुख करते हैं, नदियों के किनारे जाते हो, या फिर आप एक मंदिरों की तरफ ही रुख करते हैं, नदियों की तरफ, जैसे कि हरिद्वार या किसी बड़े मंदिर में जाते हैं, वैष्णो देवी, और भी अन्य कोई स्थान जो आपको पसंद हो, तो आप एक बार ये बताएं कि कितना कचरा आप फैला कर आते हो। क्या आपने कभी ऐसा किया कि अगर आपने वहां पर जो खाना पीना किया आपने, खास तौर पर प्लास्टिक का कचरा, तो आप पानी की बोतल अगर प्लास्टिक की खरीदते हैं, या आपके पास प्लास्टिक का कोई सामान है, टॉफी है, ऐसे रैपर्स को आप वहीं पर फेंक देते हैं, या अपने ही बैग में रखकर कहीं एक व्यवस्थित स्थान पर जहां पर कूड़ादान रखा हो, या जहां पे डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स हो, वहां पर आप उसको डिस्पोज करते हैं। आप बताएं हमें कि आपकी आदत क्या है, और अगर आप किसी को देख लेते हैं अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में भी, तो क्या वहां पर आप टोकते हैं उन्हें कि ऐसे कूड़ा ना फैलाएं? क्योंकि ये चिंता का विषय भी है, और इसलिए चिंता का विषय है कि इतना जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि जो प्लास्टिक का कचरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके प्रति हम लापरवाह हैं, हम ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, ग्लेशियर्स के पास चले जाते हैं, नदियों में जाते हैं, ये सारा कचरा कूड़ा वहीं पर इकट्ठा होकर रह जाता है, नदियों में बहकर समुद्र में आता है, मछलियां मर रही हैं, जल जो जंतु हैं उनको उनका विनाश हो रहा है, मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो रही है, पेड़ पौधे का जो है विनाश हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे दुष्प्रभाव हम पर भी पड़ रहे हैं, क्योंकि जब प्लास्टिक जमीन में जाता है तो अन्न की उत्पादकता जो है, क्वालिटी है, वो भी प्रभावित होती है, और वो भी हम सबके ऊपर अफेक्ट करती है। तो जरूर बताएं, क्योंकि जिंदगी का एक एक पल बहुत कीमती है, और उसे हमें स्वच्छता के साथ जीना है, पर्यावरण को भी साफ रखना है, नदियों को भी सहेजना है। जो है समा, कल हो ना हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत गीत कल हो ना हो फिल्म से, सोनू निगम की आवाज में।

जी हाँ, हर एक पल को जी भर के जियो और दूसरों को भी जीने दो, यही तो हमारा मंत्र है। और हमारे वेद पुराण शास्त्र यही सब कहते हैं कि सबकी आजादी का ध्यान रखो, सबको जीने दो, पर्यावरण का भी साथ में ध्यान रखिए। और क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हम सबका कर्तव्य है कि हमें हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियां, जल, पेड़ पौधे, सब चीजों का ध्यान रखना। और हमारी सभ्यता और संस्कृति में तो नदियों, पेड़ों और प्रकृति और हर चीज का पूजन होता है। तो देखिए, हमारे पास जो हमने सवाल पूछा उससे संबंधित मेल्स भी आना शुरू हो गई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश अनेजा जी का मेल, ये लकी लिसनर है हमारे जिनकी सबसे पहले हम मेल शामिल कर रहे हैं। ये लिखते हैं कि हम लोग अक्सर साल में 4-5 बार मनाली जाते हैं, हमें अपना ही सब कुछ लगता है वहां, सफाई का ध्यान रखते हैं, घूमते हुए कोई खाली बोतल या कोई केले का छिलका भी मिल जाए तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। पर्यावरण में शुद्धता रखना हमारा नैतिक फर्ज बनता है। और ये भी तो कहा जाता है कि जहां सफाई होती है वहां हर पल सकारात्मकता रहती है। बिल्कुल सही कहा है आपने, और ऐसे ही सभी को अपना व्यवहार करना चाहिए। और अगला संदेश मैं देख रही हूँ, रवि राहुल का है ये, और ये लिखते हैं कि कचरा हमें कूड़ेदान में डालना और दूसरों को भी उसके लिए कहना, ये छोटी सी बात बहुत बड़ा फर्क लाती है। अगर कोई ऐसे सोचे तो हमारे पार्क, पहाड़, बीच और गलियां अपने आप साफ रहेंगी। लेकिन ऐसा सोचते नहीं है ना लोग, इसलिए बोलना पड़ता है। यही टेस्ट है कि कितना लोग इसके प्रति सचेत हैं और क्या करते हैं अपनी तरफ से। मजबूर करने के लिए ये लिखते हैं कि मजबूर करने की जगह अगर प्रेरित करने वाला तरीका अपनाएं तो असर और अच्छा होता है। जैसे खुद डस्टबिन ढूंढकर कचरा डालें या किसी को प्यार से कह दें, भाई डस्टबिन उधर है। लोग देखकर सीखते हैं, डांट से नहीं। स्वस्थ जगह स्वस्थ देश, बिल्कुल सही लिखा आपने। और ये संदेश इन्होंने भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकृत और गुरशब्द सिंह, राहुल के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा है। बहुत ही बढ़िया, आप अगर ये करते हैं प्रैक्टिस अपने जीवन में तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। गांव चौधरी वास, हरियाणा से मांगेराम सतौर जी ने भी हमें संदेश भेजा है और ये लिखते हैं नमस्कार। तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। लिखते हैं कि हम खाना पीना तभी करते हैं, हमारे सामने कूड़ादान रखा है, कोई भी चीज अगर फल फ्रूट या कुछ भी चीज उसका कचरा होता है।

है उसे कूड़ेदान के अंदर डाल देते हैं। ये हमारा कर्तव्य है और इन्होंने किसी भी गीत को सुनवाने की फरमाइश की है। तो अगला गीत उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा मेरी तरफ से आप सबके लिए, और बहुत ही खूबसूरत गीत है ये अगला भी। और ऐसे ही हमारी अगले लिसनर्स हैं तुलसी मस्किन। तुलसी मस्किन लिखते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। बीना आशीष राजा और चैतन्य मेघा के साथ चंडीगढ़ से इन्होंने कुछ साथियों के नाम लिखे हैं जैसे राहुल खुराना, रचित और केशु रिधान। ये लिखते हैं कि हम कहीं आउट ऑफ स्टेशन अगर जाते हैं तो भी पैकिंग खाने पीने का कुछ लेकर जाते हैं। हम उसको यूज खाने पीने के बाद अपने एक थैले में इकट्ठा करते हैं और फिर वहीं पर कहीं डस्टबिन देखते हैं उसमें डाल देते हैं। हम घर और बाहर सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि हमारा भारत साफ सफाई से सुंदर लगे। बहुत ही बढ़िया, ये तो होना ही चाहिए, सभी को इस तरह का ध्यान रखना चाहिए और अपना कूड़ा अपने पास रखें और उचित स्थान पर ही उसे फेंकें और रखें। दिलावर खान है ये भी लिखते हैं कि पर्यावरण ही हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन देता है, और आज के समय में इसे सुरक्षित रखना हम सभी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ये लिखते हैं रघुवीर नगर से हसीना बानो और एलिजा नायाब और लड्डू के साथ, और इन्होंने साथ में लिखा कि इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पर्यावरण जरूरी है ये सब करना। फारूक अली खान जी भी लिखते हैं कि हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं और वहां खाने पीने का बचा सामान और जो भी कचरा होता है हम अपने बैग में ही रखकर बाहर डस्टबिन में ही डालते हैं। अपने देश अपने शहर की को साफ सुथरा रखने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। कस्बा गुन्नौर यूपी से इन्होंने ये संदेश भेजा है फैजी फराज, फरहान फरदीन और फारिया ताहिरा के साथ। इसके साथ ही अगले हमारे जो लिसनर हैं वो हैं चरणदास जी। ये लिखते हैं कि हम कहाँ घूमने जाएंगे, हमारी मेल तो सिर्फ दिल्ली तक ही जाती है। वाह वाह बहुत बढ़िया, तो दिल्ली तक आप मेल भेज रहे हैं, तो अपने अपने मोहल्ले अपने गाँव में तो कहीं जाते ही होंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट तहसील अपने जिले विले और भी कहीं पर तो वहां पे भी तो होता है। साथ ही लिखते हैं कि तो बर्तन साथ लेकर जहां भी जाते हैं बर्तन साथ लेकर जाते हैं, कपड़े का थैला साथ रखते हैं, और ये सबसे अच्छी बात जितना कम हो सके पॉलिथीन का इस्तेमाल कम करें। सब्जी लेने जाएं, फ्रूट्स लेने जाएं, जो जहां आपको लगे कि जरूरी नहीं है तो कोई भी पॉलिथीन आप ना लें, ना ही सब्जी वाले से और ना ही फल वाले से। और इन्होंने लिखा है चौधरीवास जिला हसरच हरियाणा सती राजू अग्रवाल और प्रियांशी रेखा के साथ इन्होंने अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। रमेश चौहान जी हैं ये भी संदेश लिखते हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, और इन्होंने मोहिनी चौहान कल्पित और गर्वी और हिमाक्ष के साथ ये संदेश भेजा है। ताज मोहम्मद जी का भी संदेश हमारे पास आया है, ये लिखते हैं महराज जहां और आजाद नगर लश्कर हरिद्वार से इन्होंने ये संदेश भेजा है। महराज जहां के साथ इन्होंने ये अपनी फरमाइश भेजी है। आर कुमार जी का भी संदेश है वड़िंग खेड़ा पंजाब से। मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा के साथ इन्होंने संदेश भेजा है, और ये कहते हैं कि कोई भी गीत हमें आप सुनवा दीजिए। तो लीजिए ये अगला बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए। और दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी बन जाता है कि पर्यावरण का प्रकृति का ध्यान हम सब रखें, उसका संरक्षण करें और अपने बाहर ही ना जाएं बल्कि अपने आसपास अपना घर परिवार गांव पंचायत जिला तहसील जहां भी जाएं सब जगह ध्यान रखें कि कचरा गंदगी ना फैलाएं।

बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, मुझे बहुत पसंद है। अलका याग्निक की आवाज और उदित नारायण की आवाज में ये गीत आपने सुना। और दोस्तों देख रही हूँ कि मेल्स की भी अब बहुत झड़ी लगी है, हमारे श्रोताओं को बहुत मजा आ रहा है और ये मुझे भी अच्छा लग रहा है कि वो विषय को लेकर सजग हैं और सचेत हैं, वो भेज रहे हैं अपने संदेश हम तक कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। देखिए बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश ही सुनना चाहिए है, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने आज के इस प्रश्न का जवाब दिया है कि जब वो कहीं घूमने जाते हैं तो प्लास्टिक हो या कोई भी कचरा हो उसका वो क्या करते हैं और किस तरह से उसे डिस्पोज करते हैं। तो अब लेते हैं हम अगला संदेश, और ये संदेश हमें भेजा है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक और मधु नायक ने। इन्होंने लिखा है कि कोशिश ये रहती है कि सफर के दौरान खान पान से दूरी बनाए रखें, यदि कभी ये सब होता भी है तो हम कचरे को एक थैले में इकट्ठा कर लेते हैं और यदि हमें इन सब बातों का दुरुपयोग करता कोई नजर भी आ जाए तो हम तुरंत उन्हें ऐसा करने से भी आगाह करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोग अक्सर बुरा मान जाते हैं ये नहीं, इसलिए कई बार नहीं दूसरों को टोकते कि कहीं ऐसा ना लड़ाई हो जाए, और लोग कई ऐसे होते भी हैं जो कि बहुत ही गंदे तरीके से दूसरों से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे वो बोलना शुरू कर दे, अरे तुम्हें क्या है, तुम्हारे यहाँ तो थोड़ी फेंका है, ऐसे करके बात करना शुरू कर देंगे, अरे तुम्हारे घर में थोड़ी बैठा है, तुम्हें क्या हो रहा है, अगर मैंने एक गिलास फेंक भी दिया तो उससे क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होता है, चल जाएगा सब कुछ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक एक जो टुकड़ा होता है प्लास्टिक का वो कितना नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को, जीव जंतुओं को और हमें भी खुद भी। और अगला संदेश है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीन

छिम्पा हैं ये, कपिल छिम्पा और पूजा परिहार की तरफ से ये लिखते हैं कि इन्होंने नमस्कार लिखा है, तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कार्यक्रम इन्हें पसंद आ रहा है तो उसके लिए भी धन्यवाद। और ये लिख रहे हैं कि गाने भी इन्हें पसंद आ रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लिख सवाल का जवाब दे रहे हैं कि जो हम जब भी हम घूमने जाते हैं और हम भी हम सब भी यही करते हैं कि जो हम सब भी कुछ लिखना चाह रहे हैं, लाइन मिक्स है इनकी, आजकल देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी सुंदर पर्यटन स्थल है वहाँ कचरा बहुत फैला हुआ रहता है। अब चाहे समुद्र के किनारे देखो, मंदिरों के बाहर देखो, पहाड़ों पर देखो, या फिर कचरा जो फैल रहा है, इसे जलवायु वातावरण पर इससे जलवायु वातावरण प्रदूषित होता है, और विशेषकर जो प्लास्टिक का कचरा होता है। तो भाई हम तो जब भी जहां भी जाते हैं, मोटे छोटे स्थान पर भी, तो कचरे का हम कोई पात्र साथ रखते हैं जिसमें कचरा डालते हैं। तो कचरा पात्र की व्यवस्था नहीं है तो एक अखबार में लपेट कर, एक थाली में डालकर कहीं भी कचरा पात्र मिलता है तो उसमें डाल देते हैं। ये आपने बहुत अच्छा कहा, कचरा पात्र। जी हाँ, कचरे का पात्र या कचरे का डिब्बा कुछ भी आपको कहीं दिख जाए तो उसी में कूड़ा डालना चाहिए, क्योंकि ये लिखते हैं कि स्थान को हम भी बिगाड़ सकते हैं, हम ही सारे सुंदर उसे बना सकते हैं। तो जितना सुंदर हम बनाएंगे अच्छा रहेगा, सुकून हमें मिलेगा और स्वच्छता भी बनी रहेगी, मनमोहक स्थान रहेगा और गंदगी भी नहीं फैलेगी। और ये बात बिल्कुल सही है और ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक हैवी फाइन लगना चाहिए, जब ज्यादा कहते ना कि जब तक लोगों के ऊपर जुर्माना नहीं लगता है तब तक लोग सुधरते नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि डंडा मारकर काम करवाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। सरकार सब जगह सहूलत हमें देती है, सारी सुविधाएं देती है, लेकिन उसको सही से रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगला संदेश टेगोर गार्डन नई दिल्ली से है, रविन्द्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा का। ये लिखते हैं कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन की पहचान, कचरा इधर उधर फेंकने से गंदगी, दुर्गंध और बीमारियां फैलती हैं, इसलिए हमें हमेशा कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए और अपने घर मोहल्ले तथा आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। स्वच्छ वातावरण न केवल हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है बल्कि समाज की सुंदरता भी बढ़ाता है। स्वच्छता अपनाएं, स्वच्छ जीवन पाएं, यदि हम कचरा फेंकते हैं तो साफ करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अपना अपना पूरा दायित्व आप निभाते हैं। और ये कह रहे हैं कि हमें विषय बहुत पसंद आ रहा है तो उसके लिए इन्होंने शुक्रिया कहा है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कीमती समय निकालकर अपना संदेश हम तक पहुंचाया। और अगला संदेश है जिन्होंने अपनी फरमाइश ही, इन्होंने कहा है कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, इनकी तरफ से ये संदेश है। बोधराज खोरवाल जी ने भी लिखा है कि भी हम तो कहीं घूमने जाते ही नहीं है, साफ सफाई का फिर भी हम पूरा ध्यान रखते हैं, कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं और कूड़ादान ना होने पर कूड़ा अपने साथ ही रखते हैं, कहीं कूड़े को नहीं डालते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इन्होंने ये संदेश भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी और भानु प्रकाश के साथ। अगला संदेश है हमारा उत्तम कुमार भक्त जी का, इन्होंने ये श्वेता भक्त, कीशु, ताशु, अर्णव, आनंद और सत्यम के साथ हम तक पहुंचाया है पश्चिम बंगाल से। और ये लिखते हैं कि कोई भी गीत सुनवाएं। सीताराम कांगड़ा जी का भी संदेश आया है एकता कॉलोनी रोहतक से, और बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी वोट के साथ इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। साथियों आपको बता दें कि आज का जो शो है वो 10:55 तक ही होगा, क्योंकि 10:55 के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को आप सुनेंगे। तो समय कम होने के कारण आज आपके सारे संदेशों को मैं शामिल नहीं कर पाऊंगी। आप भी देख रहे हैं कि घड़ी की सुइयां बचा चुकी हैं 50, और मुझे भी धुक धुक हो रही है कि भाई जल्दी से जल्दी आपके संदेशों को शामिल करूं। नीटू मल्होत्रा ने भी संदेश भेजा है खैल बाजार पानीपत से, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल और नानक चंद्र जी का भी संदेश है साथ में। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से भी इन्होंने कुछ साथियों जैसे पीयूष, सिक्का, कोयल और भाविका, इन सबके साथ संदेश भेजा। और ये लिखते हैं कि भाई ऐसी शिकायत नहीं है, इन्हें लगता है कि जो हमारे कार्यक्रम की तारीफ करते हैं उनके संदेश हम शामिल करते हैं, ऐसा कतई नहीं है। देखिए हमने आज सवाल पूछा और उस सवाल पर जिन जिन्होंने हमें अपने जवाब दिए हैं उन्हीं को हम शामिल कर रहे हैं, और अब तो आपका संदेश भी शामिल हो ही चुका है। ये रघुनाथपुरा जिला गंगाराम राजस्थान से हमारे साथी हैं लालगिरी गोस्वामी जी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, इन्होंने भी अपना संदेश भेजा है और ये भी कहते हैं कि किसी भी गीत में हमें शामिल करें। इसके साथ ही मैं देख रही हूं कि रमेश जी का

है ये संदेश महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर जी से, और भारती नचानी विनीत मिथानी मैथिल और प्रगति नथानी, इनके साथ इन्होंने संदेश भेजा है। माफी चाहती हूँ, थोड़ी सी नाम पढ़ने में गड़बड़ हो गई। और ये बहुत ही खूबसूरत गीत है आप सबके लिए, आप समझ गए होंगे कौन सी फिल्म है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी हाँ, जिंदगी कभी दोबारा नहीं मिलती है, इसको अच्छे से जिए, भरपूर जिए, दिल से जिए। और ये जो संदेश है हरजिंदर सिंह भाटिया जी का, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया के साथ इन्होंने भेजा है, और ये कहते हैं कि हम पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इन्हें मजा आ रहा है कार्यक्रम सुनने का, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेदपुर से इन्होंने स्टेशन रोड से संदेश हम तक पहुंचाया है। सुधाकर जाधव है, इन्होंने भी संदेश भेजा है, और ये लिखते हैं कि हमारे गांव के पास 5 किलोमीटर गणपति एक बड़ा मंदिर है, हम सवेरे सवेरे गणपति मंदिर को के लिए दर्शन के लिए जाते हैं, और मंदिर में जाने के बाद आजू बाजू में जो फालतू का कचरा होता है उसे कूड़ादान में हम डाल देते हैं, और मंदिर परिसर को भरपूर कोशिश करते हैं कि साफ सुथरा रखें। बाबू भाई जी का भी जवाहर नगर जयपुर से भारती देवी जी के साथ संदेश है। सुधाकर जाधव जी का भी संदेश आया है। अक्रम प्रिंस का पूरे परिवार के साथ संदेश हम तक पहुंचा है, और इसके अलावा नासिर अली जी का भी संदेश हम तक पहुंचा है। नौसाद सलमानी जी का भी आया है संदेश, साथ ही साथ मैं देख रही हूँ पंकज शर्मा जी का संदेश आए, हीरामन शैंडे हैं उनका संदेश हम तक पहुंचा, एसएम जावेद जी हैं, सुरेश नारंग हैं, पंकज शर्मा जी को हम शामिल कर ही चुके हैं, और इन्होंने भी लिखा कि करनाल से ये संदेश भेजा है। और समय अब कम है, गीत भी अब आप सुन नहीं पा रहे हैं, आवासी हैं बदली जी, कोशिश की कि सभी साथियों के संदेशों को हम शामिल कर सके, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगले रविवार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इस कार्यक्रम से दीजिए विदा, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: बोल बोल के थक गया।
5: क्या हुआ?
4: नया किड बैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले, आ गया नया किड बैग।
6: RBI कहता है,
7: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई,
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा।

0: जिन दो एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेष कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेष जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेष कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था, मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे।

0: कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
1: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
1: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है, और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा।

जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन

हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना
अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ
जाल था,

0: फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी

0: ते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अङ्गं भवतु। आगामि मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह सम्बद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हमारी बहनों का प्रिय कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: ग्रह लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को राम
1: राम राम।
0: राम। और कमलेश बहन, देखो आज जो है मई का अंतिम सप्ताह है, और जो मई का आखिरी दिन होता है उस दिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस होते हैं जो कि हमारी बहनों को जाननी भी चाहिए और पता भी होने चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो समाज के निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं।
1: बिल्कुल, और कोई भी जो दिन होता है वो हमारे लिए बहुत ही खास होता है, चाहे वो सोमवार हो, चाहे
0: बिल्कुल
1: मंगलवार हो, चाहे हो रविवार। लेकिन कुछ बहनों को हम याद दिला देते हैं कि देखो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, और बहनें भूल भी जाती हैं कई बार कि आज रविवार है। तो
0: बिल्कुल
1: देखिए बहनें, हमारी बात सुनिए, आज रविवार है और हम दोनों सखियां आ गई हैं आपसे कुछ बतियाने के लिए और कुछ रोचक

0: जानकारी देने के
1: बिल्कुल
0: लिए।
1: बिल्कुल। तो जैसे कि कमलेश जी हमने बात की थी कि आज 31 मई है, तो हम बताते चलें कि आज का दिन है जो बहुत विशेष है। जैसे कि कहा भी था कि आज का दिन समाज के निर्माण में बड़ा सहायक होता है, क्योंकि आज है तंबाकू निषेध दिवस। और जो ये तंबाकू निषेध दिवस है, हम सभी जानते हैं कि जिन घरों में, कमलेश जी देखो बहुत अच्छी तरह से जानती होगी कि जिन घरों में कोई भी व्यक्ति अगर तंबाकू का सेवन करता है, तो उस घर से पूरा परिवार बहुत ही परेशान हो जाता है।
0: बिल्कुल। और जब उन्हें बोला जाता है कि भी नशा क्यों करते हैं, कहते हैं मैं तो तनावग्रस्त हो जाता हूँ, मेरे
1: बिल्कुल
0: ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है, मैंने बच्चों की फीस भरनी है, मुझे
1: सही
0: ये
1: बात है।
0: करना है। आप ये सोचिए, जब आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो नशे के लिए आपको वक्त और पैसा वो कहाँ से मिला? ये तो फिर वही वाली बात नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और एक गलत, जब नशा करने वाली आप चीज में जा रहे हैं, उस दिशा में जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए आपके परिवार पर क्या बीतेगी, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: आप अपनी जो आपको एक जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो
1: बिल्कुल
0: यही कहूंगी कि कदम बढ़ाओ उजाले की ओर, नशा अंधेरे की डोर है।
1: बिल्कुल। और देखो कि जैसे मतलब ये वाली बात तो अलग है कि पैसे कहाँ से लाते हैं वो करते हैं, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कमलेश जी ये है कि वो अपने शरीर का भी तो नुकसान करते हैं।
0: बिल्कुल
1: तन और मन दोनों पूरी तरह से खोखला हो जाता है। और जब व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, उस समय उसे इतना पता नहीं चलता, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, उसका जो शरीर है वह पूरी तरह से बीमार होता चला जाता है, और वह कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। ऐसे में जो हमारी बहनें होती हैं, उनको बहुत अधिक समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सारे काम अकेले ही वहन करने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो ये तंबाकू है, इसे दूर रहने के लिए बचपन से ही हमारी बहनों को, जो घर के सदस्य हैं, उनमें ये वाली बात डालनी चाहिए कि चाहे पति हो, भाई हो, या बढ़ते हुए बच्चे हों, अगर मतलब वो किसी ऐसे नशे की ओर जा रहे हैं, तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए कि हर समस्या का हल प्यार से और घर में ही मिलता है। किसी भी नशे का सेवन केवल और केवल हमें नर्क की ओर ही लेकर जाता है।
0: बिल्कुल। जब आप बीमारियों की बातें कर रहे थे, जब इतने सारे लोग और नशा करने के बाद बीमार होने लगे, तब 1987 में निर्णय लिया गया कि नशा जो है हमारे
1: बिल्कुल
0: लिए कितना खतरनाक है, कितना जहरीला है, कितना हमारे रिश्तों को खराब करता है, जो हमारे समाज के जो लोग हैं उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है।
1: बिल्कुल
0: इसीलिए 1987 में इस दिन का आरंभ हुआ। तो ये केवल एक ये नहीं कि हमने आज आज सोच लिया कि चलो भाई
1: बिल्कुल
0: हमने सुन लिया तो आज थोड़ी जो है सिगरेट कम कर लेंगे या और कुछ जो नशा करते हैं उसमें कमी कर लेंगे, क्योंकि आज हमें जागरूक होना, हमें तो प्रत्येक दिन जागरूक रहना है।
1: बिल्कुल
0: केवल ये नहीं सोचना कि भाई आज हमने बता दिया आपको कि आज ये दिन है, तो थोड़ा सा पीछे जाइए, अभी आपकी पत्नी ने, माँ ने, बहन ने, या कई बार आजकल बच्चे भी बोल देते हैं, उन्होंने आपको कुछ कह दिया तो आपको बुरा भी लगा, आपने कहा चलो चलो आप लोगों का मैंने मान रख लिया, और आज
1: बिल्कुल
0: के दिन थोड़ा सा मैं इस चीज से पीछे हट जाता हूँ।
1: बिल्कुल
0: यदि आप आज के दिन पीछे हट रहे हैं, तो हर दिन क्यों नहीं
1: सही
0: पीछे
1: बात
0: हट
1: है बिल्कुल।
0: लेते?
1: और देखो वही बात है कि अगर आपको नशे में डूबना ही है, तो ऐसे नशे में क्यों डूबें जो कि आपको नुकसान की ओर लेकर जाएं। नशे बहुत तरह के होते हैं। अगर आपको संगीत का शौक है, आप संगीत का नशा करिए ना, अगर आप पढ़ने का नशा करिए। ये नशे जो हैं बहुत अच्छे भी हैं, और व्यक्ति को किसी ना किसी अच्छे स्थान पर लेकर जाते हैं, उन्हें जीवन की नई राह दिखाते हैं।
0: बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगी कि आकर्षण ही होता है नशा, तो
1: बिल्कुल
0: आकर्षण का पर्दाफाश निकोटीन और तंबाकू की लत का आपको करना है मुकाबला। और इसी अच्छी उम्मीद के साथ क्यों ना हम एक ऐसा ही अपनी बहनों को गीत सुनवाएं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो तो सुनेंगे तभी
1: बिल्कुल
0: पता चलेगा।
1: बिल्कुल।

0: छोड़कर ग्रामों में जो है व्यवसायीकरण स्थापित कर रहे हैं।
1: यानी कि यह कि युवा जो है बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे एक साथ चलें, अगर वहाँ की जो बातें हैं, वहाँ की जो खासियत है, उनको भी सभी युवा मिलकर के एक साथ लाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है गांव जाना नहीं चाहते हैं, गांव पर्यटन की ओर नहीं जाना चाहते, पर्यटन के लिए नहीं जाना चाहते। उसके उनके पीछे एक रीजन होता है कि नहीं नहीं वहां तो सुविधाएं नहीं है, अब नहीं जाना है। इस प्रकार कई प्रकार की धारणाएं होती हैं, तो इसमें और क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं और इनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, जो मूल समस्याएं थी, जो चुनौतियां थी शुरू में, वो थी सबसे पहले ऊर्जा की, बिजली की। आज के समय में सोलर के माध्यम से हर गांव तक बिजली का पहुंच हो चुकी है,
1: जी
0: सरकारें भी इस पर काम कर रही हैं। उसके अलावा दूसरी समस्या आती है, जैसे आपने बताया, रोड ट्रांसपोर्टेशन की,
1: जी
0: कि
1: आवागमन की जो
0: गांवों तक पहुंच बहुत कम हुई बाहर के लोगों की। अब सरकारों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया गया है, कोशिश ये की जा रही है कि हर गांव से शहर तक जाने वाली सड़क को जोड़ा जाए,
1: जोड़ा जा रहा है जी।
0: अब वो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या भी नहीं रही। तीसरी समस्या जो आपने बताई खान पान की, तो मैं आपको बताऊं, शहरी खान पान से गांव का खान पान पुराने समय से ही बहुत बेहतर था,
1: जी
0: शुद्ध था, देसी बेशक हो सकता है, जिसको आप देसी कह सकते हैं,
1: जी हाँ
0: लेकिन वो उसका एक अपना ही स्वाद और अपना ही एक महत्व है, जो कि अब शहर के लोग समझ रहे हैं। शहर के जो भोजन आज के समय में खा रहे हैं, जिसका उनको सोर्स ही नहीं पता,
1: जी
0: उन्हें पता नहीं, लेकिन वहीं जब वो उल्टा गांव में जाते हैं, तो वो सामने आपके खेत से तैयार होकर आने वाली चीज आपके सामने तैयार की जा रही है, तुरंत आपको जो है परोसी जा रही है।
1: जी
0: तो उस तरफ जो है ये चीजों की अवेयरनेस अब बढ़ गई है, अब लोग समझ गए हैं कि गांव का भोजन है वही एक्चुअल में भोजन है,
1: जी
0: उससे ज्यादा शुद्ध भोजन उन्हें कहीं नहीं मिल सकता।
1: ले जो आय के जो साधन है वो गांव में पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए तो जो पर्यटन है उसमें से तो होता ही होता है। उसके अलावा जो वहां के जो उत्पाद है, वहां के जैसे कि हमने कहा हस्तशिल्प है, वहां की जो जो सामान है, उसके जरिए भी अपने आय के स्रोत को भी बढ़ाया जा सकता है।
0: जैसे हमारा जो क्षेत्र है हापुड़ का, हापुड़ का एक मूढ़ा होता है
1: मूढ़ा
0: बैठने के
1: जी
0: लिए, वो बहुत फेमस है हमारे क्षेत्र में। तो अब हमारे यहाँ पे जो है धीरे धीरे देखने में आया, जो लोग आते हैं वहां से वो फर्नीचर परचेज करके लेके जाते हैं और शहरों में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी काफी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है। वहाँ ट्रेडिशनल तौर पर जो है सरकंडे से और वहाँ की जो देहात में उपलब्ध सामग्री है उससे तैयार किया जाता है,
1: बांस वगैरह सब जो
0: जी,
1: होता
0: तो उस चीजों से वो तैयार किया जाता है, उसका फर्नीचर जो है तैयार किया जा रहा है, उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है बड़ा सपोर्ट मिल रहा है।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी गांव जाता है गांव की कोई ना कोई चीज जरूर लेकर के आता है, और जब इन सब चीजों को, इन सब सामानों को जब गांव से खरीद कर लेकर आते हैं तो गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है, और इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे भी मजबूत होता है। जैसे कि आपने शुरू में ही कहा था और हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने की वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक प्रकार से कृषि पर आधारित ही है और वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है।
0: सर, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के युवा हैं, जो शहरों में हैं,
1: जी
0: उन सब की जड़ें कहीं ना कहीं गांव से ही जुड़ी हुई हैं।
1: बिल्कुल
0: ये देश कभी भी ऐसा नहीं था कि शहर से शुरू हुआ, ये गांव से ही शुरू हुआ वो देश है,
1: जी जी
0: तो हर किसी की जड़ें गांव से जुड़ी हुई हैं। अब समय आ गया है, हम जब विकसित भारत की तरफ बात करते हैं, तो वापस अपनी जड़ों पर हमें जाना पड़ेगा, अपनी जड़ों को ठीक करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा,
1: जी
0: तभी ये भारत का जो वृक्ष है ये और फलदार होगा और छायादार होगा, और ना केवल अपने लिए बल्कि समूल विश्व के लिए ये जो वृक्ष होगा भारत का, वो जो है बड़ा ही पॉजिटिव वातावरण बनाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा।
1: जी हर्षवर्धन जी, बहुत सारी बातें हैं, अगर हम इसमें बात करना चाहें तो बहुत सारा समय निकल सकता है, लेकिन हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। चलते चलते अपने जो युवा हैं, जो शहर के जो युवा हैं, जो गांव के जो युवा हैं, जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस पर्यटन के विषय में?
0: ग्रामीण पर्यटन के लिए मैं हमारे शहर के युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि वो अब, क्योंकि बहुत सारी जो है संभावनाएं बढ़ गई हैं हमारे देश में पर्यटन की दृष्टि से, पूरा विश्व जो है पर्यटन के लिए भारत में आता है, अगर हम इस पर्यटन को कुछ ही जगहों तक सीमित ना कर ग्रामीण पर्यटन की तरफ ले जाएं, और उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है हमारे युवाओं का होगा,
1: जी
0: तो उन युवाओं को आगे आना चाहिए, गांवों को विकसित करने में पर्यटन की दृष्टि से काम करना चाहिए। बहुत तरह की संभावनाएं हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास जो है और अधिक मजबूती से कार्यान्वित हो जाएगा, रिजल्ट दिखाएगा, अगर हमारे शहर के जितने भी युवा हैं एक इस तरफ सोचना शुरू करें, 15 दिन का समय निकाल कर अपने जीवन से एक बार गांव में जाएं, गांव में रुकें, देखें वहां की क्या क्या संभावनाएं हैं, तो उनको ये समझ में आएगा कि कितने अवसर हैं जो पर्यटन की दृष्टि से वो जो है वहां विकसित कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना एक व्यापार बना सकते हैं, जिसमें ना केवल वो देश को आगे लेके जाएंगे, उनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति भी बदलेगी और एक समग्र रूप से जो है हमारा देश जो है विकसित होगा, सोसाइटी विकसित होगी, समाज विकसित होगा।
1: जी हर्षवर्धन जी, एक आखिरी प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, प्रचार प्रसार के माध्यम से या आज के

0: डिजिटल युग को देखते हुए?
1: देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ समय पूर्व मैंने आग्रह किया था आकाशवाणी की टीम से कि वो हमारे गांव के पास आए। वहाँ जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है कि माँ गंगा के आसपास के घाटों को विकसित करे, तो उसमें आकाशवाणी की टीम ने बहुत बड़ा सहयोग किया। उसको प्रसारित करने के लिए प्रसारण उसका किया, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, पूरे देश तक उसकी जानकारी पहुंची। इस प्रकार से मीडिया चैनल्स जो हैं, जितने भी तरह तरह की मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे उसके बाद जो है वो प्रिंट मीडिया है, आपकी जो है ये आकाशवाणी की टीम हो गई, ये सभी लोगों को जो है हमें लगता है कि एक इस तरफ जो है प्रयास करते रहना चाहिए कि हम अपने ग्रामीण जो पर्यटन है उसको धीरे धीरे प्रमोट करें, शहरों तक लेके जाए, पूरे विदेश तक लेके जाए,
0: जी
1: ताकि लोगों को ये पता लग सके कि भारत कितने विविधताओं का देश है। इस पर अगर हम निरंतर इसी प्रकार प्रयास करते रहे तो मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि अगले 10 वर्षों में सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से इसका जो है प्रसारण होगा, प्रचार होगा, और हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था ग्रामीण पर्यटन के को साथ में लेकर जरूर बनाएंगे।
0: जी हर्षवर्धन जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारे युवाओं को भी आपकी बातों से जरूर प्रेरणा मिल रही होगी। हर्षवर्धन जी, आप हमारे
1: बहुत
0: स्टूडियो
1: बहुत
0: में आए,
1: धन्यवाद
0: बहुत
1: सर।
0: बहुत धन्यवाद आप।
2: अभी हमारी बहनें सुन रही थी ये बातचीत, ग्रामीण पर्यटन से आय के अवसर। हमारे प्रगतिशील किसान हर्षवर्धन त्यागी से ये बात कर रहे थे कमल किशोर। और अब बहनों के लिए मनोरंजन की बात।

और कमलेश, आज 31 मई है। 31 मई को हम अपनी बहनों को बता दें, क्योंकि देखो हम सभी जानते हैं जो हमारी बहनें होती हैं वो हर मोर्चे पर डटी रहती हैं, चाहे घर हो, बाहर हो, बच्चों की जिम्मेदारी

0: हो, सभी जगह पर वो अपनी मिसाल बनाती हैं। तो हम अपनी बहनों को बता दें कि हमारे देश में अनेक ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने घर और साथ साथ अपने साम्राज्य का भी लोहा मनवाया है, और आज ऐसी ही एक वीरांगना की जयंती भी है। तो समझ ही गई होगी कमलेश हम किन की बात कर रहे हैं।
1: हम बात कर रहे हैं अहिल्याबाई होलकर की।
0: बिल्कुल,
1: लोकमाता अहिल्याबाई होलकर मालवा साम्राज्य की एक महान शासक थी। उनका जीवन साहस, न्याय, प्रशासनिक सूझबूझ और सांस्कृतिक जो पुनरुत्थान है उसकी अनूठी मिसाल बन गया है।
0: बिल्कुल। और जो उनका जन्म है वो महाराष्ट्र के चौंडी गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जो जीवन था वो बड़ा संघर्षमय रहा, लेकिन वही बात है कि संघर्षों के साथ साथ उन्होंने मजबूत नेतृत्व करके एक मिसाल बनाई। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और वो एक ऐसी महारानी साबित हुई जो केवल महलों में बैठकर राज नहीं करती थी, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद हाथी पर सवार होकर तीर कमान थाम कर युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए उतर पड़ती थी।
1: और जब न्याय की बात करें तो न्याय के मामले में भी वो बहुत ही सख्त थी,
0: बिल्कुल
1: और चोर डाकू का आतंक उनके राज्य में था ही नहीं। और जब हम बात करें उनका ऐतिहासिक योगदान क्या है, तो जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार उन्होंने ही करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, गया के विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर के मार्गों पर यात्रियों के लिए उन्होंने सुविधाएं भी बनवाई। जो सड़क मार्ग थे उसका भी उन्होंने अच्छे से निर्माण करवाया, और बीच बीच में धर्मशालाएं भी बनवाई जिससे कि यात्रीगण वहां पर ठहर सके।
0: बिल्कुल। और देखो ऐसी थी हमारी वो जो ये अहिल्याबाई होलकर महारानी है लोकमाता, कि आज भी मतलब उनकी बातों को याद रखा जाता है। और एक और बात हम अपनी बहनों को बता दें कमलेश, कि उन्होंने महेश्वर को कपड़ों के उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया। और प्रसिद्ध हमारी बहनें भी साड़ियों की बड़ी शौकीन होती हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो अपनी बहनों को हम बता दें कि प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों की शुरुआत का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने स्थानीय बुनकरों और महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर भी बनाया था।
1: और किसानों के लिए उन्होंने टैक्स भी कम किए, कुएं बावड़ियां बनवाई, और सबसे बड़ी बात पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगवाए।
0: बिल्कुल
1: तो हम भी यही कहेंगे कि जो हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर है उनसे हम बहने कुछ सीखें और
0: बिल्कुल
1: आज उनको हम नमन
0: नमन
1: करते
0: करें।
1: हैं।

0: और कमलेश, आज का जो रविवार है वो आखिरी रविवार है माह का, और हमारी बहनें और हमारे भाई भी, बच्चे भी जानते होंगे कि जो आखिरी रविवार होता है उस दिन होती है मन की
1: और
0: बात।
1: सभी श्रोता जो है और हम भी बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हमारे
0: बिल्कुल
1: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मन की बात में हमसे क्या-क्या कहने वाले
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और देखो, आज भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। आज जो 134वां एपिसोड था कमलेश, उन्होंने और सबसे पहली बात तो उन्होंने हमारे जो भारतीय एथलीट हैं उनका जो शानदार प्रदर्शन रहा, और जो खेल जगत की उन्होंने बहुत सारी ऐसी विभूतियों के बारे में भी बताया जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। और जो सबसे पहले हमारे जो एथलीट इन दिनों छाए हुए हैं, उन्होंने गुरविंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर की बात की, जिन्होंने एथलीट में एक दूसरे का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। और देखो, गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर की रेस में कड़ा मुकाबला किया और 10.9 सेकेंड में उन्होंने रेस पूरी कर भारत के सबसे तेज धावक होने का गौरव हासिल किया।
1: क्या बात है, यानी कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, वो
0: बिल्कुल
1: खेल की तरफ अग्रसर हैं और उसमें नाम भी कमा रहे
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल। और पता है, इसके साथ साथ ही आज हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने भी आम की बात भी की।
1: क्या बात है,
0: गर्मियां हो
1: गर्मी
0: और उसमें आम ना हो तो ये कैसे हो सकता है। और उन्होंने जो हमारे विभिन्न राज्य में अलग अलग तरह के आम मिलते हैं, दशहरी आम, केसर आम, लंगड़ा आम, सिंदूरी, तोता, माल्टा, इन सब की बात की। और देखो, आम कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, आम खाने में भी स्वाद लगता है और साथ ही बात यह है कि गर्मी से हमारा एक तरह से बचाव भी करता है अगर इसको विभिन्न पेय पदार्थों की तरह से प्रयोग कर लिया जाए
1: बिल्कुल।
0: तो।
1: और जो रसोई है उसमें जब हमारी बहनें जाती हैं तो गर्मी में उनको भी अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का, बुजुर्गों
0: बिल्कुल
1: का, यानी मौसम के हिसाब से भी उन्होंने बात करी कि अगर हम स्वस्थ
0: बिल्कुल
1: रहेंगे तभी तो हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा,
0: बिल्कुल
1: और इससे जो है बचाव भी जरूरी है। तो
0: बिल्कुल
1: हमारी रसोई है, खेत खलिहान है,
0: बिल्कुल
1: इनकी जरूरत पड़ती है हर जगह। और गर्मियों की जब हम बात करें तो हर कोई यही चाहता है कि गर्मी से हम बच कर
0: बचते
1: रहें
0: रहें,
1: और
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं।
0: अपना। गर्मी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी को पानी भी पीते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, नमामि गंगे अभियान, उस पर भी उन्होंने बात की कि किस तरह से गंगा डॉल्फिन को 13 घंटों के प्रयासों के बाद बचाया गया और स्वस्थ करके उसको सुरक्षित छोड़ दिया गया।

0: अभी हमारी महिलाएं सुन रही थी अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही समय में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार लेकर कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है सांझ और सवेरा। 1964 में बनी ये एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें गुरुदत्त, मीना कुमारी और महमूद ने शानदार अभिनय किया है।

जी दोस्तों, सावन तो आने वाला है। अभी सावन बीता कैसे जाएगा, लेकिन मैं भी आज आपके साथ आ गया हूँ। नाम है अरुणेश द्विवेदी और काम है आपका मनोरंजन करना, एक ही फिल्म से कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ आपके लिए। और अभी जो गाना आपने सुना, अजहू न आए बालमा, इस गाने को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने और सुमन कल्याणपुर ने। बात करें अगर इस फिल्म की

सांझ और सवेरा बहुत ही भावुक करने वाली फिल्म है, एक दिल को छू जाने वाली फिल्म है। और इस फिल्म में गुरुदत्त साहब, मीना कुमारी और महमूद ने अभिनय किया है। और इस फिल्म को डायरेक्टर यानी इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं यानी निर्देशक, वो हैं जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक उस दौर के रहे हैं, और हृषिकेश मुखर्जी उनका नाम है। और अनिल घोष, डीएन मुखर्जी, जगदीश कंवल और ध्रुव चटर्जी ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है। शंकर जयकिशन साहब ने संगीत दिया है और 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म में मीना कुमारी, गुरुदत्त, महमूद साहब और शुभा खोटे का कैसा किरदार है, ये सब हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

दोस्तों, इस फिल्म में गुरुदत्त साहब ने डॉक्टर शंकर चौधरी का किरदार निभाया है, वहीं मीना कुमारी जी ने गौरी का रोल प्ले किया है। महमूद साहब प्रकाश का अभिनय किया है और शुभा खोटे ने राधा का किरदार निभाया है। और इस फिल्म की अगर कहानी की बात करें तो डॉक्टर शंकर चौधरी अपनी विधवा माँ रुक्मणी और छोटी बहन मंजू के साथ बॉम्बे में एक शानदार लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली में जी रहे होते हैं। उनकी माँ चाहती है कि उनकी शादी यानी डॉक्टर शंकर चौधरी यानी गुरुदत्त साहब की शादी अम्बाला स्थित एडवोकेट मधुसूदन की बेटी माया से हो जाए, भले ही दोनों में से किसी ने उसे देखा न हो। शंकर इस शादी के लिए सहमत भी हो जाता है और शादी हो भी जाती है, लेकिन इसके बाद अचानक दुल्हन, जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं शादी की, और उसके बाद अचानक वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद इस फिल्म की कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न आते हैं आपको हम बताएंगे। उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक और प्यारा सा नगमा।

तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी खो नहीं जाना है, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहना है और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत भी कराना है। और जो हमारे नियमित श्रोता हैं और जो हमें पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सभी से हमारा अनुरोध है कि आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप इस कार्यक्रम में और क्या इंक्लूड करना चाहते हैं और क्या जोड़ना चाहते हैं, आपकी क्या सुझाव हैं या शिकायत है, कुछ भी वो आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं। और हमारा ईमेल पत का पता है ip.radio.delhi@gmail.com और हमारे पास आपके मेल आने शुरू भी हो गए हैं। एक ये मेल आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का। और इन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा प्रस्तुत फिल्म सांझ और सवेरा की कहानी सुनकर बेहद ही अच्छा लग रहा है, और जो आप जानकारी दे रहे हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में बता रहे हैं वो भी बहुत ही बढ़िया है। इस फिल्म की कहानी और सारे गीत हम आपके द्वारा सुन रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब इस कहानी के बारे में बात करते हैं कि फिर इस कहानी में क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जो दुल्हन है यानी मीना कुमारी जी, वो अचानक बेहोश हो जाती हैं और उनकी देखभाल के लिए उनके चचेरे भाई प्रकाश और मधुसूदन आते हैं और इसके बाद वो ठीक भी हो जाती हैं। अगले दिन वह शंकर के साथ उनके घर जाती हैं और पहली रात वो उसे बताती हैं कि चूंकि वो एक पवित्र उपवास

रही है, इसलिए वे किसी भी तरह का जो होता है कि शादी के बाद गोल्डन नाइट यानी जो कहते हैं ना कि सुहाग रात, उसको वो नहीं मनाना चाहती हैं। शंकर मान भी जाते हैं और उनके साथ अगले दिन भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं और फिर से शादी करते हैं। इसके बाद क्या होता है इस फिल्म में, ये हम आपको बताएंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी के साथ। और आज की हमारी फिल्म है सांझ और सवेरा। इस फिल्म की कहानी हम आपको इस गाने से पहले बता रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं। और इस कहानी में एक दिन ये होता है कि शंकर प्रकाश और माया दोनों को खोजने के लिए घर आता है, उन्हें ढूंढता है लेकिन उनका पता नहीं लगा पाता है। और उसके अगले दिन उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला दरअसल मधुसूदन की बेटी नहीं है, और हो सकता है कि वो प्रकाश के साथ कहीं भाग गई हो, जो उसका भाई भी नहीं है, प्रेमी भी नहीं है। तो आखिर

कौन है, और फिर कुछ इस तरह से इस फिल्म में नाटकीय मोड़ आते हैं, घटनाएं घटती हैं कि दर्शक उनमें से उलझ सा जाता है। और इसी खोज के बाद शंकर और उनके परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आपको इस फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि इस फिल्म की जो कहानी का परिणाम है, कंक्लूजन है, वो हम आपको बता दें, नहीं तो फिल्म देखने का आनंद नहीं रहेगा। इसलिए इस कहानी की जो प्रमुख बातें हैं वो तो हमने बता दिया, लेकिन इस कहानी का परिणाम यानी अंत में इस फिल्म में क्या होता है वो हम आपको नहीं बताने वाले। उसके लिए तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं, क्योंकि 1964 में ये फिल्म आई थी। और इस फिल्म में ट्रेजिडी क्वीन के नाम से जाने जाने वाली मीना कुमारी ने एक समर्पित त्याग करने वाली पत्नी का किरदार बेहद ही सरलता, सहजता और भावुकता के साथ निभाया है। और वहीं दिग्गज फिल्म अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त साहब की आखिरी फिल्मों में से एक ये फिल्म थी सांझ और सवेरा। उनका अभिनय भी सदा की तरह बेहद ही प्रभावशाली और गरिमामयी है। इसी बीच आपके कुछ मैसेज लगातार हमारे पास आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं। तो एक मैसेज आया है अनिल मोहन, पीटीआई संसद मार्ग से, और इन्होंने लिखा है, नमस्कार जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, हमारी बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए। जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अनिल मोहन जी। इसके अलावा ओम प्रकाश राय साहब का भी एक मैसेज आया है, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से, और इन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून, और इस फिल्म के सभी गाने बेहद दिल को छू जाते हैं, आपकी शानदार प्रस्तुति है, और हम लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जी बहुत बहुत आभार, और आपको भी धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक और मैसेज छत्तीसगढ़ से आया है, जिला बालोद से, देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू, उमा बाई का ये मैसेज आया है। और इसके अलावा रोहित वशिष्ठ का मैसेज आया है, खजाना गेट अमृतसर से। आप सब लोगों के मैं नाम जल्दी जल्दी से लिख ले लेता हूँ। और ये हमारे नियमित श्रोता हैं, देवशंकर, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी का। और इन्होंने लिखा है कि हम आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपके कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, और इन्होंने एक रेडियो श्रोता संघ बना रखा है, कबीर रेडियो श्रोता संघ, डोंडी लोहरा, बालोद, छत्तीसगढ़ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए और आकाशवाणी से जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं उनका आनंद उठाइए, और समाचार भी सुनते रहिए, देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है बहुत कुछ आकाशवाणी के माध्यम से आपको जानने को मिलता है। और अभी तो हमारी आकाशवाणी की 90 वर्ष की यात्रा भी पूरी हो चुकी है, और ये 90 वर्ष की यात्रा अनवरत रूप से आगे भी जारी रहेगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए, और जन जन की वाणी है ये आकाशवाणी, और इसके कार्यक्रम सुनते रहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको इसी फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज में एक और प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने रेडियो दोस्त अरुणीश द्विवेदी के साथ। और आपके संदेश लगातार ईमेल के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं, तो कुछ संदेश और ले लेते हैं। माफ कीजिएगा, राजस्थान भोपालगढ़ धर्मेंद्र कपिल पूजा परिहार, इनका मैसेज आया है और इन्होंने इस कार्यक्रम की तारीफ़ की है। इसके अलावा हमारे नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, और एक ही फिल्म से कार्यक्रम की बहुत ही शानदार प्रस्तुति है आपकी और बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं, इन्होंने ये लिखा हुआ है। और दोस्तों एक और गाना मैं आपको इस फिल्म से सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि ये टाइटल सॉन्ग है और अच्छी बात यह है कि हमारे इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अभी अच्छी बात है या नहीं है ये तो हमारे श्रोता बता सकते हैं, लेकिन हमें क्या है ना कि समय के साथ चलना होता है और हर एक कार्यक्रम, हर एक प्रोग्राम हमारे श्रोताओं के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए घड़ी की सुइयाँ इशारा कर रही हैं, तो अब अपने रेडियो दोस्त अरुणीश द्विवेदी को दीजिए इजाजत, फिर किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी कार्यक्रम में आपके साथ इसी चैनल में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी उत्ते अपने प्रोग्राम मन की बात विच राष्ट्र नूं संबोधन करदियां देशवासियों नूं गंभीर गर्मी दे मौसम दौरान बेहद सावधानी वरतन अते सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करन दी अपील कीती। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने अज देश दे नवे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अते एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने समुद्री फौज दे अगले मुखी वजों अपना अहुदा संभाल लिया है। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रवाड़े लई पेट्रोल डीजल अते हवाई ईंधन उत्ते बरामदी महसूल च सोध कीती है। ते IPL क्रिकेट दे फाइनल च अज अहमदाबाद विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दा मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होवेगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों नूं मौजूदा गंभीर गर्मी दे मौसम दरमियान बेहद सावधानी वरतन अते सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करन दी अपील कीती है। आकाशवाणी उत्ते अपने मन की बात प्रोग्राम विच उन्होंने लोगों नूं घर तो बाहर निकलन तो पहला वध तो वध पानी पीण अते सूरज तो बचा करन लई सुरक्षा मापदंड अपनाउन दी अपील कीती है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना ते शरबत पीना गर्मी तो राहत पाने लिए लाभदायक ने। उन्हें कहा कि ये पीने वाले पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना अति पीढ़ियां दे तजर्बे नूं दर्शाते ने। प्रधानमंत्री ने काशी दे लंगड़ा, महाराष्ट्र दे अल्फांसो, गुजरात दे केसर अते पछमी बंगाल दे हिमसागर अंब बारे गल करदिया कहा कि हर इलाके दे अंब दा स्वाद वखरा हुंदा है। श्री मोदी ने अंब की खेती च शामिल किसानों दे योगदान की भी शलाघा की। उन्होंने कहा कि अंब की यह यात्रा हुण पिंड तों विश्व बाजार तक पहुंच रही है। उन्हें कहा कि किसान खेतीबाड़ी ते अर्थचारे लिए बहुत खास ने।
2: मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड के अपने हालिया दौरे का जिक्र करदिया कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोल काल दियां प्राचीन तांबे दियां तख्तियां भारत नूं वापस कीतियां ने। इस नाल दुनिया भर के तमिल भाईचारे च उत्साह पैदा होया है। उन्हें कहा कि यह तख्तियां चोल साम्राज की समुद्री शक्ति और दक्षण पूर्वी एशियाई देशों नाल इस दे संबंधां नूं दर्शाउंदियां ने।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश च एक नहर विचों गंगा डोल्फिन नूं बचाउण वाले वीडियो दा भी हवाला दिता। उन्हें कहा कि नमामे गंगा मुहिम तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डोल्फिन बचा एम्बूलेंस ने इस विच अहम भूमिका निभाई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने अज कहा है कि विचारां ते कार्रवाई च नवीनता फौजी समर्था दे विकास नूं अगे वधाएगी। देश दे नवे CDS वजों अहुदा संभालन तो बाद मीडिया नूं संबोधन करदिआं जनरल सुब्रमणी ने कहा कि हथियारबंद बलां, सनअतां, अकादमिक संस्थावां, स्टार्टअप्स अते खोज प्रणाली दरमियान वधेरे सहयोग आधुनिकीकरण लई सहाई होवेगा।

0: ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ITL ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਅੱਜ ਮਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਤੋਂ 7:40 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮੀ 7:00 ਤੋਂ 7:10 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मुकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर की तांबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रिवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम की मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों की सताइश भी की। दिफाई अमले के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि भारतीय मुसल्लह अफवाज मुल्क के इख्तदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबंद हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी समझौता करने के करीब है। साथ ही ये वार्निंग भी दी है कि मुजाकरात नाकाम होने की सूरत में फौजी कार्रवाई का रास्ता खुला है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी का सामना कर रही है। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क में विरासत के अनमोल मुकामात को महफूज रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में एक अहम दरियाफ्त के बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वहाँ 6वीं और 7वीं सदी के पांडुवंशी खानदानी सिलसिले के महर्षि बलार्जुन से वाबस्ता तांबे की 3 कामयाब तख्तियां पाई गई हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी तذکرہ किया, जहां एक खसूसी तकरीब में चोला दौर की कदीम तांबे की तख्तियां भारत को वापस की गईं। जनाब मोदी ने कहा कि लोग खुशी का और फख्र का इजहार कर रहे हैं, साथ ही दुनिया भर में तमिल बिरादरी के लोग खास तौर पर इस बारे में जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो गर्मी के इन दिनों में जहां तक हो सके एहतियात बरतें और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से जारी किए गए रहनुमा उसूलों पर अमल करें। जनाब मोदी ने तजवीज़ किया कि लोगों को मौसम गर्मा के मुख्तलिफ मशरूबात पीना चाहिए, जिनमें आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत,

0: बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी शामिल हैं। ये सब गर्मी को दूर करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवायती अंदाज से बनाए जाते हैं।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली हैं। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: आम का तस्करा करते हुए मौसम गर्मा के दौरान जिनकी अक्सर व बेशतर बात होती है, वज़ीर आज़म ने कहा कि हर खित्ते के अपने अपने आम हैं, अपनी अकसाम हैं और अपना जायका है। जनाब मोदी ने आम की काश्त में शामिल किसानों के रोल को भी सराहा और कहा कि आम का ये सफ़र अब गांव से आलमी मार्केट तक पहुँच रहा है। अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने झारखंड के शहर रांची में हाल ही में मुनक़िदा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबलों का जिक्र किया, जहां तकरीबन 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ मुकाबलों में 4 नए कौमी रिकॉर्ड कायम करने पर गुरिंदर वीर सिंह, टी के विशाल, तेजस्विन शंकर, द्योमीना और कुलदीप कुमार को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने एक वीडियो के बारे में भी बात की, जिसमें ये दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में दरियाए गंगा की एक डॉल्फिन को फंसने के बाद बचाया गया। जनाब मोदी ने इस बात का तذکرہ किया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इस कार्रवाई में अहम रोल अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने में हमेशा पेशावराना सलाहियत और कार्रवाई से मुतालिक फैसले करने की सलाहियत का मुजाहरा किया है और वह मुल्क के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबस्ता हैं। मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने कहा कि अंदाज़े फिक्र और कार्रवाई में इख्तरा से फौजी सलाहियतों को फ़रोग हासिल होगा। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज बहरिया के 27वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। कमान संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने के लिए भारतीय बहरिया मुस्तैद और चौकस है और उसे इलाकाई सिक्योरिटी के ऐसे माहौल में सरगर्मी के साथ तैनात किया जा रहा है जो चैलेंज से भरपूर, पेचीदा, गैर मुतवक्के और गैर यकीनी की कैफियत वाला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पूरा मुल्क उनकी जहानत, दर्दमंदी और अवाम की फलाह बहबूद के तहीं गैर मामूली लगन के लिए उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ याद करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। जुनूबी दिल्ली में कल शाम साकेत मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक कमर्शियल इमारत के ढह जाने से 3 अफराद की मौत हो गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 11 जख्मी अफराद को इलाज के लिए लाया गया, इनमें से 3 को मुर्दा करार दिया गया। इधर दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता आज जुनूबी दिल्ली में उस मुकाम पर गईं जहाँ ये वाकया पेश आया था। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शुएबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी से होगा। क्रिकेट में आज आईपीएल 2026 का फाइनल गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मुकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर की तांबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रिवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम के मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुँचा

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली हैं। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनु

0: मीठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापूस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख

0: रक्षाध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।

0: उठुआ नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 2:30 और 15 सेकंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

नमस्कार, आदाब। हाजिर है एक बार फिर आपकी रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी लेकर आपका मन पसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। और हमारे आज के कलाकार हैं बॉलीवुड की एक बेहद प्रसिद्ध और सफल संगीतकार जोड़ी आनंद मिलन। असल जिंदगी में आनंद श्रीवास्तव और मिलन श्रीवास्तव सगे भाई हैं और साथ ही वो 1960 के दशक के मशहूर संगीत निर्देशक चित्रगुप्त के बेटे भी हैं।

जी हाँ, जुड़ चुके हैं आप अपने मन पसंद चैनल आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से। तो ट्यून किया है आपने जब अपना मन पसंद चैनल, तो फटाफट भेजिए अपनी ईमेल हमारे ईमेल के जरिए। हमारा पता है आकाशवाणी दिल्ली IPRadioDelhi@gmail.com और भेजिए अपनी प्रतिक्रिया अपनी ईमेल के जरिए।

जी हाँ, दिल से दिल मिल चुका है हमारा आपका, क्योंकि हमारा आपका है पुराना ये नाता, ये रिश्ता, क्योंकि हम जुड़ चुके हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर और कार्यक्रम है आपका हमारा फेवरेट एक ही कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं आनंद मिलन। तो गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार में, जिसे प्रस्तुत कर रही है आपकी अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी। हमारे आज के कलाकार हैं आनंद मिलन, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल संगीतकार जोड़ियों में से एक है। इस जोड़ी में आनंद श्रीवास्तव का जन्म 21 दिसंबर 1958 और मिलन श्रीवास्तव का जन्म 31 मई 1959 को हुआ था। इस जोड़ी ने 90 के दशक में 200 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत दिया। जी हाँ, 200 से अधिक फिल्मों के लिए, और कई ब्लॉकबस्टर गाने बनाए। तो ऐसा ही एक गीत, नंबर वन गीत यहाँ सुनना तो बनता है ना दोस्तों, क्योंकि क्योंकि क्योंकि

हमारे जुड़ चुके हैं आप अपने नंबर वन फेवरेट चैनल इंद्रप्रस्थ से, और इस खूबसूरत से नंबर वन गीत को सुन रहे हैं आप अपने मनपसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से, और कार्यक्रम का नाम एक ही कलाकार, और ऐसे नंबर वन गीत को अपने खूबसूरत संगीत से सजाया आनंद मिलन की जोड़ी ने, जो है हमारे आज के कलाकार। साथियों, अगर बात करें उनके शुरुआती जीवन के बारे में, तो आनंद मिलन का जन्म संगीत के एक संपन्न परिवार में मुंबई में हुआ था। यद्यपि उनके पिता चाहते थे कि उनके बेटे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, जैसा कि हर माता पिता चाहते हैं, लेकिन घर में जब संगीत में माहौल हो तो मन तो संगीत में ही रमता है ना भाई, और उसी ओर दोनों भाइयों को भी प्रेरित किया। आनंद गिटार बजाने में माहिर थे तो मिलन पियानो बजाने में कुशल, और फिर वही हुआ, संगीत की ऐसी अविरल रसधार बही जो बहती ही चली गई।

वही एक से एक बढ़कर सुपर डुपर हिट संगीत करने वाले देने वाले ऐसे मशहूर फनकार जोड़ी ने फिल्म 1984 में अब आएगा मजा से संगीतकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करी। अपने शुरुआती दिनों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहायक के रूप में भी काम किया। इसके अलावा अपने पिता के भी सहायक के तौर पर उन्होंने कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया। 1988 में मंसूर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक से इनको बहुत बड़ी सफलता मिली, या यूं कहें कि जिसने इस जोड़ी को रातों रात स्टार बना दिया। भाई इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसके बाद फिल्मों की लाइन ही लग गई, दिल बेटा संगीत, आई मिलन की बेला, धनवान लव, आई मिलन की रात, और भी कई फिल्मों के लिए, लोकप्रिय फिल्मों के लिए इन्होंने संगीत दिया।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

वही हमारा तो यही सपना है कि हमारे श्रोताओं को खुश रखना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने पापा का नाम भी रोशन करना। तो हो सकता है कि हमारे श्रोता ये सुनकर खुश हो गए होंगे कि सबसे पहला नाम आज किसका आने वाला है। तो भाई ईमेल आपकी आ चुकी है आज के कार्यक्रम में एक ही कलाकार में। तो सबसे पहली ईमेल जो मैं आज लेने वाली हूँ वो एक ही कलाकार में आई है, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा की, कपिल छिंपा, पूजा परिहार की, जो लिखते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, आज आपने बेहतरीन संगीतकार आनंद मिलिंद के बारे में बेहतरीन जानकारी दी जो हमारे ज्ञान में इजाफा करती है। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति आपने दी, आपने बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से सुनाए, नगमे भी सुनवाए, बेहतरीन प्रस्तुति रही। तो धन्यवाद साथी आपका कि आपने इतने अच्छे से कार्यक्रम को सुना। अगला ईमेल आया है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, जो लिखते हैं आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो साथी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक ही कलाकार प्रोग्राम गाना बहुत ही अच्छा चल रहा है, हम भी सुन रहे हैं अखियों से गोली मारे डिस्काउ। तो भाई धन्यवाद, आपने एक ही गाना सुना लगता है भाई, आगे भी बहुत से गाने सुनवाए। अगली ईमेल आई है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया की, नमस्कार जी, प्रोग्राम एक ही कलाकार में गीत व जानकारी पसंद आ रही है, शानदार प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही आपका भी धन्यवाद। और अगली

ईमेल है आरजे सरजी आदाब। तो भाई सरजी नहीं, मैडम जी हैं आज प्रोग्राम में, और नाम है मेरा तृप्ति जौहरी। प्रोग्राम पसंद आ रहा है? कस्बा गुन्नौर यूपी से फारुक अली खान, फैजी फराज, फरीन, फरहान फारिया और ताहिरा की। अगली ईमेल मैं लेना चाहूँगी देव शंकर तामुरिया जी, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली देवी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। तो ये भाई लिखते हैं आज एक ही कलाकार में संगीतकार आनंद मिलिन को सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। इस संगीतकार जोड़ी को हम फिल्म कयामत से कयामत तक से जानते हैं जी। तो कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालू छत्तीसगढ़ से आप साथियों ने बहुत अच्छी जानकारी दी भाई। प्रसिद्धि ही इन्हें यहाँ से मिली, तो आपकी जानकारी सुनकर पढ़कर अच्छा लगा। और अगली जो ईमेल आई है ये संदीप मक्कड़ जी हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुराया, जालंधर, पंजाब से। पर आपने संदेश में कुछ नहीं लिखा, तो संदेश भी अगर आप लिखकर भेजते तो हमें अच्छा लगता। इसके साथ ही हमें अगली जो ईमेल आई है, खुश रहो खुशियाँ बांटो। ये भाई खुशियाँ बांटने वाले हमारे साथी हैं गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो भाई जब आप कार्यक्रम सुनते हैं तो कार्यक्रम के साथ अपनी जानकारी, अपनी प्रतिक्रिया भी हमें भेजें तो हमें अच्छा लगेगा। और कोई भी गीत लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कोई भी गीत तो हम आपको सुनवा ही रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम है एक ही कलाकार, तो उसी कलाकार के हम आपको गीत सुनवाते हैं। तो ये है अगली ईमेल। नमस्कार, वडिंग खेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और अगली ईमेल जो हमें आई है ये है निसार अली जी की। नमस्कार आरजे जी, आपको प्लीज़ किसी भी गीत में शामिल करें। तो देखिए शामिल कर ली। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, आपका हर पल खुशियों से भरा हो। तो ऐसी दुआ हम आपके लिए भी करते हैं। तो प्रोग्राम चल रहा है एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में आपको गीत सुनकर, संगीत सुनकर कैसा लग रहा है और कार्यक्रम सुनकर कैसा लग रहा है, बहुत सारे श्रोताओं ने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, तो सुनकर हमें अच्छा लगा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपने रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी को दीजिए विदा। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे भेंट, तब तक के लिए अलविदा।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

0: तुम तो चुटकी ले रही हो, ऐसे कैसे मजा ले रही हो आज, बहुत ही मूड में लग रही हो। मैं तो सभी से मिलके आई हूँ, चाहे समझी हो चाहे समझन।
1: बहना चुटकी लिए बिना और हास परिहास करे बिना तो मेरा भोजन पचाई ना है। और वैसे इतनी गर्मी में मूड गर्म सो है रहे हो तो नक हंसी मजाक की बौछा रह जाए तो राहत सी पड़ जाए।
0: पक्की ब्रजवासिन हो वंदना तुम, है ब्रज की रज में तो हास व्यंग कूट कूट के भरो भयो है। और वंदना जब जा तीन लोग के ठाकुर को ब्रजवासिन ने नाई छोड़ो तो हम जन की तो बात ही कहा है।
1: और क्या बहना, देखो ना ब्रज साहित्य में ही देख लो कितेक पद और रचनान में हास्य रस भरे है।
0: अब देखो वंदना, सूरदास जी ने ही दान लीला में मान लीला में गोपीन के तानेन को कितना सुंदर वर्णन किया है। और देखो बाल लीला की बात कर लियो, बाल लीला में हूँ तो दाऊ जी ने कन्हैया को कैसो तानो मारो है, तभी तो वो कहे मैया मुझे दाहू बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तू जस मत कब जायो, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसे ग्वाल सब सिखे दीत बलबीर।
1: हाँ बहना तभी ते तो शायद आज हूँ छोटे बालकन को ऐसे ही चढ़ायो जाए कि अरे तू तो मोल को लियो है। और बहना हमारे ब्रज के जो लोक काव्य है ना वहाँ में तो हास्य ही हास्य इतनो है कि कहाँ वर्णन करें, जो ब्याह शादी में गाली गाए जावे
0: जो अनार हुयो करें।
1: हाँ बहना जी सब काव्य कला इतिहास और संस्कृति के उदाहरण है। एक और उदाहरण दूं,
0: दियो
1: एक गारी में गायो जाए के मुकुट धर साम रे रे लाला द्वे बापन को जाए, एक बाप मथुरा बसे दूजा गोकुल गाम, पहली मैया देव की रे लाला कंस कैद दई डार, दूजी माए यशोधरा रे लाला गोकुल की छछिहार, भाई तुम्हारी द्रौपदी रे लाला पंच पुरुष एक नार।
0: हाँ देखो कितना बढ़िया व्यंग और हास परिहास है या में। और देखो वंदना बहन, ब्रज साहित्य में तो उरानो दानो है ही, पर जो हमारो लोक काव्य है वो भी तो हास परिहास को भंडार है, और ब्रजवासीन को तो सहज स्वभाव ही हास परिहास करना है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो बहना, ब्रजवासीन के जीवन में हास परिहास पूरी की तरिया पोर पोर में पुरियो है। ताहरी दे दे के गारी दे दे के ब्रजवासी बात करे हैं,
0: और इनको को बुरा ना माने और हर रिश्ते में हास परिहास चले, चाहे रिश्तो समधी समधन को होए, नंद भौजाई को होए, देवर भाभी को होए, जीजा साली को होए या नंदेव को होए, हर रिश्ता में हास परिहास चले।
1: हाँ श्रुति बहना एक समधन की गारी है ना के गंगा कैसी है मोहे देख वे कोचाव,
0: दूल्हे की मैया नाई वे कुचाली संग लिए लगवार, हारा कैसी बहे मोहे देख वे कोचाव। और लांगुरिया गीतन में वो तो खूब हास परिहास होए, मक्का बोए दई बारे बीगा में भई ना बुटिया,
1: ताई हमारी चढ़ी अटारी ताऊ जोड़े हाथ, उतर उतर पन मेसरी मर तोई पे बोली जात,
0: मक्का बोए दई बारे बीगा मैं भाई ना भुटिया।
1: और जो खोया हूँ मैं है ना श्रुति बहना, वहाँ में जो बैयर बानी हो वे मुंह दबाए दबाए के गाली गावे।
0: और बताऊँ ऐसी एक गारी
1: हाँ
0: का है।

0: आके अपनी मैया को दान कर देते, काहे उठ बैठे और ले लेते।
1: तो चलो वंदना बहन, यही बात पे एक गीत अपने श्रोतान को सुनवाई दे में। देखो एक बहू कैसे भिजोए भिजोए के अपनी सास को, अपने ससुराल वाले इनको ताने मार रही है,
2: सुनवाई दे।

बड़ा ही कटक रसीला गीत सुनवाया है बहन आपने माधुरी शर्मा के स्वर में। सच में ब्रजभाषा की जो मिठास है हास्य गीतन में हूँ झलके है, और आज हूँ या भाषा ते साहित्यकार प्रेम।

0: करे हैं, कवि प्रेम करे हैं?
1: बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये भाषा को प्राचीन इतिहास रहो है। याई साहित्यिक भाषा ते हिंदी साहित्य समृद्ध भयो है, और आज को साहित्यकार या वाणी में अपनी रचना करके या कुछ संपन्न कर रहे है।
0: और करना भी चाहिए श्रुति बहना, क्योंकि जे हमारी संस्कृति की संवाहिका हो तो हत है। और बहना, जो आधुनिक ब्रज भाषा के कवि हैं, बिना न भक्ति को ही ना है, बल्कि सामाजिक समस्या, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो या राजनैतिक हो, उनको हूँ वाणी दई है।
1: हाँ बिल्कुल, ब्रज भाषा में इतने एक सामर्थ्य है कि काउ भी ज्वलंत विषय पे साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया जा सके है। तो चौन आए अब अपने श्रोतान को एक वार्ता सुनवाई दी जाए। जानो हो कहा विषय है या वार्ता को?
0: कहा?
1: आधुनिक ब्रज काव्य के प्रमुख स्तंभ और वार्ताकार हैं दरियाब सिंह राजपूत ब्रजखंड।
2: सभी ब्रजवासी भजन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आधुनिक ब्रज काव्य के प्रमुख स्तंभ तो भैया हो, ब्रज भाषा को इतिहास बड़ो पुरानो है। ब्रज भाषा के अष्टचाप महाकवि ने कृष्ण काव्य धारा को प्रवाह 34 ऐसो फैलायो के 1448 ईस्वी सो 1586 ईस्वी लो भक्ति को महासागर आज नो ब्रज मंडल में ही नाए विदेशों में लहरा रहे है। मिठलोनी ब्रजभाषा और ब्रजमाटी की महत्ता को आज नो को पार न पा सको। तो आओ ब्रज काव्य के प्रमुख स्तंभ कवीन के व्यक्तित्व और कृतित्व के दर्पण में झांके। डॉक्टर मधुर बिहारी गोस्वामी ब्रजभाषा के चर्चित कवि हैं। आपके पत्र पत्रकार में निबंध दोहा प्रकाशित हुए हैं और आकाशवाणी दिल्ली और मथुरा वृंदावन से अनेक वार्ताएं प्रसारित हैं। रसोपासना में श्री स्वामी हरदास जी रचनान पे आधारित कछु दोहान को रस लेव। मेरी है यह कामना छाड़ जगत के जाल, बनकर श्री बन की लता लिपटू श्याम तमाल। कोकिल बन डोलू सदा तरुओं की मृदु साक, कुहक कुहक बोलो करूं मधुर फलन कुचाक। वृंदावन के तर तले बन बैठू मैं मुँह, कृष्ण नाम जपतो रहूं खाऊं बस दो टूक। करुआ अर गुदड़ी रहे सदा ही संग, वृंदावन बिचरत रहूं रंगू श्याम के रंग। मेरी है यह कामना रसना में रस घोल, श्री वन में बिचरूं सदा राधे राधे बोल। मुगल कालीन भक्ति एवं ऋत कालीन के बिन सभी नाम अनाम ब्रजभाषा के महाकवीन को कोटि कोटि नमन प्रणाम, जिनने ब्रज बोली को इतना अनंत असीम विस्तार दयो के ब्रज मंडल की सीमान को लांगती भई ब्रज बोली ब्रजभाषा के रूप में परिणत है गई और ब्रजभाषा साहित्य चरम पे टिको रहो। आज वो देश विदेशन में ब्रजभाषा की तूती बोल रही है। खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा के सुदृढ़ स्तंभ के प्रतीक पद्मश्री सोम ठाकुर, जिनको की गीत सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। डॉक्टर अशोक चक्रधर आजकल मेट्रो ट्रेन की कविता पढ़ रहे हैं। जी मेट्रो ट्रेन को मथुरा वृंदावन स्टेशन है। अगलो स्टेशन धौली प्याऊ होगो, बाई ओर की खिड़की खुलेगी और आप लपकन सो सावधान रहें। डॉक्टर अशोक चक्रधर जी की ये ब्रजभाषा में रचना मेट्रो स्टेशन मथुरा बहुत ही रुचिर है। डॉक्टर इंद्र सेंगर, डॉक्टर प्रमोद सागर, डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी, श्री विठल पारी, श्री श्याम सुंदर शर्मा अकिंचन, श्री नरेंद्र शर्मा नरेंद्र, डॉक्टर उमेश चंद शर्मा, श्री राधा गोविंद पाठक, श्री अशोक शर्मा अज्ञ, श्री हरिबाबू ओम सूरकुटी गोवर्धन, कवि श्री गोपाल प्रसाद गोप, श्री सत्यप्रकाश शर्मा सोटानंद, श्री अटल राम चतुर्वेदी, श्री राजवीर शिखरवार, श्री सोहन लाल शर्मा प्रेम डीग, श्री देवी प्रसाद गौड़ मथुरा, श्री चंद्रदेव मिश्र, श्री मनमोहन मोही, श्री किशोर कुमार कौशल, पंकज प्रखर, श्री ओंकार सिंह जायस, श्री गोविंद भारद्वाज पैगाम मथुरा, श्री राम सनेही लाल यायावर, डॉक्टर ठाकुर दास शर्मा दिनकर, कवि श्री अंजीव अंजुम, श्री दर्शन बिजारजी, श्री हरि ओम शर्मा हरि और ब्रजकरण आदि भैया और ढोला प्राचीन लुप्त शैली को अपने सरस वाणी श्रीमती पूनम शर्मा पूर्णिमा मंचन पे ढोला विधा को उन्हें जीवंत कर रही हैं। ब्रज कवित्री श्रीमती रेणु उपाध्याय, ब्रज रेणु श्रीमती इंदु शर्मा आदि अनेक ब्रजभाषा के रचनाकार सुदृढ़ स्तंभ के रूप में ब्रजभाषा साहित्य के भव्य भवन को अपनी अपनी कलम की नोक के बल सो आज लो धारे भये हैं। यही श्रृंखला में डॉक्टर कृष्ण चंद्र गोस्वामी विभास स्वामी हरिश्चंद्र जी के वंशज वर्तमान में आप श्री हरदासी परंपरा को इतिहास रचवे में साधना रहते हैं। सिद्धांत साखी सो जे दोहा रसकन की पहचान उजागर कर रहे हुए वृंदावन में जे बसे तेने ही रसिक सुजान, वृंदावन जिन उर बसे हो तेने है रसिक पहचान। ब्रजभाषा के श्री अविनाश चंद्र गोस्वामी रसिक अनन्य की रचना की जे वानगी आपको रुचि लगेगी। श्री वृंदावन रसवरो केवल रस में जान, छिलका गुठली ना कछु रस अगाध फलमान। श्री निधवन में केल श्री निशवासर जो होए बिन वृंदावन की।

कहो कौन यह जोए। भैया हो, अब आपको वर्तमान अन्य ब्रज कवीन की भक्ति और सामाजिक रचना को रसास्वादन करावे। समय सीमा के कारण सभी कवीन की रचना पढ़े वो संभव ना है सके, फिर हूँ ब्रजराज की ब्रजभाषा को चरणामृत आपको अपार सुख पहुँचावेगो, ऐसा मेरा विश्वास है। मीठी मीठी रस मलाई सी ब्रजभाषा के वरिष्ठ कवि श्री राधा गोविंद पाठक जी ने ब्रजभाषा को प्रेम की भाषा कहे हुए। प्रेम की वाणी जो मंज मनोहर चित्त हरे हुलसे, ब्रजभाषा धैनो और कल्प समान अनूठी, जे मान गुमान नसे ब्रजभाषा, केशव सूर कवीन प्रवीण के कंठन माहे, बसे ब्रजभाषा भाव भरे अखरा अखरा, अधरा अधरान हसे ब्रजभाषा। ऐसा ही भाव साम्य श्री राजवीर शेखर भारती जी ने प्रकट किया है। आपने ब्रजभाषा को सब भाषा की पटरानी बताए हुए। बोलते लगे मलूक कोकिला समान कूक, प्रेम में पगी भई सुहानी ब्रज भाषा है, कृष्ण ब्रज भाषा बोल बोल के बने ब्रजेश, तासो सिर मोर जग मानी ब्रज भाषा है, सूर रस खान घनानंद आदि के समान, भारती के चित्त में समानी ब्रज भाषा है, अन्य सबे भाषान को रानी मान लिंगे, किंतु रानी की रानी पट रानी ब्रज भाषा है। अलीगढ़ हिंदी और ब्रज भाषा के सशक्त कवि हस्ताक्षर श्री नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जू के अद्भुत सवैया की लटक झटक को आनंद ले। मटकी दधी की धर के कट पे, मटकी दधी की धर के कट पे, ब्रज नार चली मटकी मटकी मटकी खिसकी, नट नागर ने गह के भैया जब ही झटकी, झटकी मुख की लट नारी जबे, निरखी चवे घूंघट के पटकी, पटकी खिसका रसाए तबे, ब्रज नागर ने दधी की मटकी। छाता जनपद मथुरा की मधुर कंठ के कवि श्री श्याम सुंदर शर्मा अकिंचन कृष्ण को सहज भाव से प्राप्त करवे को मूल मंत्र बता रहे हैं। श्री राधे नाम गंगा जल सो नहाओ मल मल, काया कुंड जीवन कमल खेले जाएगो, श्री राधे राधे सोर को मचेगो घोर चार ओर, शासन प्रशासन सकल हिले जाएगो, श्री लाड़ेली को चित्त धार मिटे वृत्य को बेकार, श्री लाड़ेली को चित्त धार मिटे वृत्य को बेकार, काल के कुठार को प्रहार झेले जाएगो, कृष्ण कृष्ण कहते मिले न चाहे राधा रानी, राधे राधे कहते तो कृष्ण मिले जाएगो, राधे राधे कहते तो कृष्ण मिले जाएगो, कृष्ण के मिलवे पे अपार खुशी होए। ऐसी हिंदी और ब्रज भाषा के रसिक कवि श्री देवी प्रसाद गौड़ जी की जे मन भावन रचनाओं सुन लो। नंद को दुलारो मांगे बूंद बूंद नाच नाच, लोटा भरे छाछ होए चक जीरो डार के, कोरे मल्ला में धुमार देखे बथुआ को राय तो, कैसे ले कटोरा चार मौज में डकार के, खेत में ते तोर तोर सूंघे हाथ बेर बेर, चटनी धना की चाट व्यंजन विसार के, चूल्हे पे सेके हाथ मन गुन की करे बात, बेझर की रोटी खा में चटकारे मार के, वृंदावन के जन जन प्रिय कवि श्री अशोक कुमार शर्मा अज्ञ जू की नजर के कैमरा ने वृंदावन और श्री बांके बिहारी जू को चित्री खेस डाले। वे लिख रहे हैं, टेढ़ी ही टेढ़ी बहे यमुना, टेढ़ी ही टेढ़ी बहे यमुना, टेढ़ी ही कूल कदम्ब की डारी, टेढ़ी ही टेढ़ी है कुंज गली, टेढ़ी निकुंज करील की झारी, टेढ़े ही लोग मिले, टेढ़े ही लोग मिले, टेढ़ी ही टेढ़ी सभी ब्रजनारी, और टेढ़ी ही लाठी को हाथ ले, टेढ़ो खड़ो मेरो बांके बिहारी, टेढ़ी ही लाठी को हाथ लिए, टेढ़ो खड़ो मेरो बांके बिहारी। डॉक्टर इंद्र सेंगर ब्रज भाषा के सुदृढ़ स्तंभ सिद्ध कवि है। राधा कृष्ण स्तुति सो जे अद्भुत प्रस्तुति देखे, कान्हा जी को रंग श्याम कुंज माह अल श्याम, कान्हा जी को रंग श्याम कुंज माह अल श्याम, राधा के संग सख श्याम जू सलोने हैं, राधा जी के केश श्याम जमुना को नीर श्याम, व्योम माह घन श्याम रूप से सलोने हैं, इत श्याम उत श्याम चारो दिश श्याम श्याम, ब्रज भूमि शस्य श्याम जू के ही खिलौने हैं, श्याम रंग बिना सखी भावे नाये कछु मोहे, सांच कहूँ श्याम बिन रूप सब अलोने हैं, सांच कहूँ श्याम बिन रूप सब अलोने हैं। श्री ब्रजमोहन लाल शर्मा मोहन महावन की कामना कछु ऐसे प्रकट भई, श्री गिरिराज को पास मिले नित ही नित मानस ही गंगा नहायो करूं, हरि देव की देह हरि धोक दऊं, चक्रेश्वर शीश नवायो करूं, ब्रज राज सुदर्शन लाभ लऊं, जगदम्बे प्रदीप जराय करूं, तब मोहन प्रेम पुजारी बनूं, परिक्रमा नित्य लगायो करूं। गोवर्धन सूरकुटी पारसोल के वरिष्ठ कवि श्री हरिबाबू ओम जिन्होंने महाकवि सूरदास जी की साधना स्थली पे आज हूँ जीवंत पीलू पेड़ की अद्भुत महिमा को बखान करो है। सूर को पीलू द्वारपाल है के श्याम, पीलू में ही आठो याम, कल के प्रभाव सोयो सूर को बचायो है, नाच तो गोपाल तान सुन के जा तमूरा की, सूरा को तमूरा तर है के उग आयो है, देह के बसरावे को चेतना तजी ही सूर, आज हूँ अचेत सूर पीलू में समायो है, सूर की समाधि ढिंग पीलू को जो लागे पेड़, है के तर रूप को संत बिरमायो है, देवता अनेक ब्रज तर रूप वास करे, पीलू पेड़ है के को देव
यहाँ छायो।

0: बैठक बिहाए पीलू बल्लभ भयो है पेड़ आड़ो पड़ो नेह निज सूर सो जतायो है शाखा प्रशाखा देख के लगत ऐसो मोहे पीलू पेड़ तेने वंश बल्लभ दिखायो है भावना अनेक मन आवत है पीलू देख काऊ संत की कृपा ने ये छंद लिखवायो है काऊ संत की कृपा ने ये छंद लिखवायो है। ये थे हरि बाबू ओम सूरकुटी परासोली गोवर्धन। ब्रजभाषा के मूर्धन विद्वान कवि साहित्यकार एवं संपादक डॉक्टर उमेश संजू की पुस्तक ब्रज काव्य मंजरीसो जी प्रस्तुति पेरा को स्वाद लेके खीर हु अनोखी लागे दूध और जलेबी हु तो चसक बढ़ावे है मीठो नाए जग माए खुरमा कलाकंद सो आधो लोटा भांग पी के अगोटा चढ़ावे है चिपिया समायो मन राजी हुए कुलिया सो लोग बारी बीरी नी की पुजारी गहावे है मलिदा को भोग धरे छाछते महेरी पी में चैतन्य हु मांग मांग मधुकुरी खावे है। ब्रजभाषा के हर फन कवि श्री सत प्रकाश शर्मा छोटा संदेश दे रहे हैं नाए सदा जय नाए पराजय ना रहे वो सुख संग सदा ही ना कुसुमा कर कुंज निकुंजन ना पिय बाह सदा तन माही यौवन नार रहे न सदा तन नाए सदा नृप को जगताही चार दिना जग कोमित पंडित काहे परेख करे मन माही। फिर जो बात के कवि श्री राम सनेही लाल यादव लिख रहे हैं बड़ी ही खरी खोटी सुना में काव्य की बानगी सुनो भ्रमर गीत जाए के दूर दिखावत आंख या कान ने ऐसी करी मन मानी ताहू पे जोग को जहर पिवावत बाबरे उधव की यह बानी कारो जो है नखते सिखलों तासो औरन बात कछु अनुमानी ठीक कही ब्रज के सब लोगन कार्य को काटो न मांगत पानी। देख राजस्थान के कवि सोहन लाल शर्मा प्रेम लिख रहे हैं ब्रज तरंग निशो समय ही रुवावे नित समय भी नचावे चित्त समय सरसानो और समय हरसानो है समय की निराली मार अच्छे अच्छे गए हार समय ने पछाड़े सूर ऐसो मर्दानो है समय सूदो परे रंक शीस ताज सो विजात समय परे राजपाट चिंजानो है समय है मदारी नए खेल दिखलात याद रह जावे समय लौट नहीं आनो है। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर से संबद्ध समस्या पूर्ति के धुरंधर कवि श्री विठल नाथ पारीख जी मन भावन वृंदावन कृतिसो लिख रहे हैं लखे है जब ते छवि नेह भरी जियरा अति ही हर सावत है सरसावत है नव शीतल मंद सुगंध समीर सुहावत है अखियां ललके चह के जियरा हियरा मन मीत लुभावत है निख तज दे हरिया घर सो कित मोहन रास रचावत है। कवि ब्रजकन ने देखी और लिखी जे पान लीला राधा के प्राणन श्याम बसे श्याम आजू प्राण बिहारी के दो देह प्राण है गए एक श्री राधा कृष्ण मुरारी के दो केले करे नित कुंजन में निरखे नखरे नित प्यारी के कान आने मुंह में पान दयो ब्रजकन बरसाने वारी के। कवि श्री अंजुम जू की रचनाएं नहले पे देहरा से दे रही है इनकी एक भानगी देखो जग को आधार कृष्ण कृष्ण को आधार राधे ऐसो लगे कृष्ण ब्रज राधा वा को मूल है जग की मिठास राधे कृष्ण की मिठास राधे ऐसो लगे कृष्ण गंध राधा वा को फूल है जग की है प्यास कृष्ण कृष्ण की है प्यास राधे ऐसो लगे कृष्ण नीर राधा वा को कूल है जग को है नाम कृष्ण कृष्ण को है नाम राधे लागे कृष्ण नाम आधो राधा ही समूल है। प्रिय ब्रजवासियों आपने ब्रजभाषा के वर्तमान कवि इनकी रचना को सुनियो और आनंद लियो ब्रजभाषा को और समाज के रकबे में इन सभी धुरंधर कवि इनको बहुत बड़ा योगदान है चाहे गद्य हो या पद्य सभी विधान में निरंतर ब्रजभाषा गति में बनी हुई है। सभी माँ सरस्वती के साधक निस्वासर प्रगति के पथ पर दृढ़ संकल्पित है नए नए सोपान स्पर्श कर रहे हैं आकाशवाणी दूरदर्शन और कवि सम्मेलन के मंचन पे ब्रजभाषा के छंद सवैया श्रोताओं द्वारा बड़े चाव से सुने जाए जा वार्ता में सभी कवि एवं कवित्रियां ब्रजभाषा के दृढ़ स्तंभ के रूप में केवल ब्रजमंडल में ही नाए देश विदेश में विराजे रचनाकार हूँ बधाई के पात्र हैं जो ब्रजभाषा को यहाँ वहाँ परचम लहरा रहे हैं। आप सबन को जय श्री कृष्णा राधे राधे।
1: श्रोता अभी आपने दरियाब सिंह राजपूत ब्रज कर्ण ते आधुनिक ब्रज काव्य के प्रमुख स्तंभ विषय पे वार्ता सुनी और श्रुति बहना इन्होंने राजे शिखर भारतीय जी को जो भाव पढ़ो है ना जब मैं ब्रज भाषा को सबन भाषा की पटरानी कह के बतायो है तो मेरे दिल को तो सुकून पड़ गयो।
2: बहना ब्रज भाषा तो पटरानी है ही और बिनन ने जो कही है कि आपको बोल बोल के ही कान्हा ब्रजेश बने हैं और देखो ब्रजभाषा की मिठास तो या में हुआ है कि ब्रजवासी तो चकाचक खामे और चटक पहने।
1: बिल्कुल सही कह रही है श्रुति बहना पेड़ा रबड़ी और जलेबी खाए खाए के इनकी भाषा हु मधुर निकले।
2: देखो वंदना बहन ब्रज में ना दूध और दही को खाना बहुत है, तो ब्रज में जो मिठाई बने ना, जो व्यंजन बने मीठे व्यंजन, वो दूध और दही से बहुत बने। अब देखो तुम, पेड़ाऊ दूध से बने, रबड़ी दूध से बने, चमचम

0: गुलशन दूधते बने, और तो और बहना जो कलाकंद खामे वो तो
1: अनवर
0: दूधते
1: कौन, बिल्कुल।
0: बने।
1: और श्रुति बहना, आजकल तो लस्सी और जो सन्नाटो हुए ना, वाकू पी के मोहड़े में सनसनी सी फैल जाए।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुमने तो जो अलंकार जोड़ दिए यहाँ में। पर देखो, ब्रजवासीन को खाएवे पीवे को चाव तो है ही, पर बिना बढ़िया पहरवे को चाव है।
1: बिल्कुल श्रुति बहना।
0: और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, ब्रजवासिन जो है ना हमेशा अपने भड़तार से लड़ती रहे में।
1: अच्छा।
0: और का, अब देखो गर्मी आ रही है, अब बिनकू रेशमी कपड़ा ना सुहाए रहे, अब
1: अच्छा,
0: बिनकू चाहिए मलमल के कपड़ा।
1: तो चलो दिलवाए देने मलबल के कपड़ा या लोकगीत के माध्यम से।

0: और यह लोकगीत के संगे आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है।
1: मोए यानी वंदना जौहरी को
0: और मोए श्रुति बुली को देव अनुमति
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी आप ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रबानी। मेरे साथ है मेरे दोस्त
1: रूहानी,
2: तस्निया चौधरी,
3: नबीहा चौधरी,
4: पीहू शर्मा,
5: कोहू शर्मा,
6: रिया वर्मा,
7: युविका,
8: कुसागर सिंह,
9: आयुष्मान खुराना।
0: और आज हम आप सबके लिए लाए हैं ढेर सारी बातें, कहानियाँ, किस्से और खूब सारी मस्ती। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले क्यों ना पीहू और कुहू से एक मस्त संगीत सुना जाए। पीहू और कुहू, आज इस प्रोग्राम के लिए क्या लेके आए हो दोनों?
9: हम एक देशभक्ति गीत लाए हैं जिसका नाम है वंदे मातरम।
0: अरे वाह, सुना दो फिर।
9: वंदे।

वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।

मधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे

0: अरे वाह, पीहू और कुहू ने तो सच में बहुत ही अच्छा गाया।
1: मेरे को तो मजा आ गया।
0: बहुत सुरीला था।
2: हाँ, बहुत अच्छा था।
0: तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जो है पर्यावरण को स्वच्छ बनाने पे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण एक ऐसा धरोहर है जो हमने हमारी अगली पीढ़ी से उधार पे लिया है, ना कि पिछली पीढ़ी से वसीहत में। क्यों तस्मीहा?
3: हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो मैं पर्यावरण पर आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ?
0: अरे हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं।
3: हमारा पर्यावरण हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। इसमें पेड़ पौधे, पानी, हवा, जानवर और मिट्टी शामिल है। अगर ये सभी चीजें साफ और सुरक्षित रहेंगी, तभी हम भी स्वस्थ और खुश रह पाएंगे। लेकिन आज हम पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल, पेड़ों की कटाई और पानी की बर्बादी, ये सब मिलकर पृथ्वी को बीमार बना रहा है। प्लास्टिक ऐसा कचरा है जो ना मिटता है न सड़ता है।
0: हाँ तस्मीहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। पेड़ लगाना एक बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ उतनी साफ हवा, और जितनी साफ हवा उतनी अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ काट पाएंगे। क्यों रूहानी?
2: बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आप सबको एक कविता सुनाना चाहता हूँ।
0: हाँ अश्मन, सुनाओ।
2: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, धरती

0: को सुंदर बनाओ। फल फूल वो देते हैं, छाया भी ये देते हैं, पंछी इन पर रहते हैं, सुंदर घोंसले बनाते हैं, हवा शुद्ध ये करते हैं, गर्मी से भी बचाते हैं, बारिश भी ये लाते हैं, धरती को हरा बनाते हैं, पेड़ हमारे साथ निभाते, जीवन को खुशहाल बनाते। आओ मिलकर हम सब आज पेड़ लगाए सबके पास, हर बच्चा एक पेड़ लगाए, धरती माँ मुस्काए जाए।
1: अरे वाह आशुमन, इस कविता से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
2: आशुमन तुमने बहुत अच्छी कविता सुनाई।
3: हाँ आशुमन तुमने बहुत अच्छी कविता सुनाई। अच्छा मैं भी पर्यावरण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
1: हाँ हाँ नबीहा बताओ।
3: आज जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हमें और भी अधिक जिम्मेदारी से अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। इसके लिए सबसे पहला कदम है पर्यावरण को स्वच्छ बनाना।
1: हमें अपने आसपास सफाई रखनी होगी, कूड़े को सही जगह फेंकना होगा और लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहिए।
3: स्वच्छ वातावरण हमें न केवल सुंदरता देता है बल्कि बीमारियों से भी बचाता है।
1: अरे वाह बिल्कुल सही। अच्छा एक पॉइंट तो हम सब भूल ही रहे हैं, हमें रीयूज रिसाइकल और रिड्यूस भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्लास्टिक बॉटल बॉक्सेस या टॉयज को हम दोबारा रीयूज या रिसाइकल नहीं करेंगे तब तक वो धरती पे जंक की तरह इकट्ठे होते जाएंगे और धरती का और बुरा हाल हो जाएगा।
3: और एक बात और है, हमें प्लास्टिक के थैले भी यूज नहीं करने चाहिए, कपड़े या जूट के करने चाहिए।
1: करेक्ट। अब पर्यावरण की बात आती है तो पर्यावरण को बचाने का एक और तरीका है साइकिल चलाना, जो कि हमारी सेहत में भी बहुत हेल्प करता है।
2: अब मैं साइकिल चलाने के कुछ फायदे बताऊं?
1: बताओ।
2: साइकिल चलाने से कार्डियो वर्कआउट होता है जो दिल और फेफड़ों को मजबूत बनाता है, और रेगुलर साइकिलिंग करने से कैलोरीज बर्न भी होती हैं, और एक्सरसाइज के दौरान एंडोफ्रेंस और रिलीज होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं।
0: मैं एक बात बताऊं?
1: हाँ हाँ रूहानी बताओ।
0: साइकिल चलाना हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी होता है, ना फ्यूल का खर्चा और ना ही मेंटेनेंस की टेंशन। एक बार इन्वेस्ट करो और लंबे समय तक पैसे की बचत करो।
1: अरे वाह बिल्कुल सही। साथ ही साथ मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं भी बताऊं क्या?
2: हाँ रबानी बताओ।
1: साइकिल हमें हमारे दोस्तों के साथ बहुत वक्त स्पेंड करने का टाइम देती है। कई बार दोस्तों के साथ रोज शाम को साइकिलिंग जाने से स्ट्रेस भी कम हो जाता है, और साइकिल चलाते चलाते जो हवा मिलती है उससे फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस भी तो मिलती है।
2: हाँ ये बात तो तुमने बहुत सही कही।
1: अच्छा तो मुझे ये बताओ कि रोज शाम को तो अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग कौन कौन जाता है?
0: मैं जाती हूँ।
1: अच्छा रूहानी, अच्छा आसमन, अच्छा नबीहा, तो फिर एक दिन मिलके सारे रेस लगाएंगे।
0: ओके।
3: हाँ बहुत मजा आएगा।
0: हाँ
1: अरे बहुत सारी बातें हो गई, क्यों ना अब एक गीत सुना जाए।
0: बिल्कुल। हाँ, हाँ, जरूर। बिल्कुल जरूर, जरूर।

0: अरे आओ ना।
1: अरे वाह, ये गीत तो बहुत अच्छा था।
2: मेरे को तो इतना अच्छा लगा,
3: बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा
1: मन
3: लगा।
1: खुश कर दिया सुनने के बाद।
2: हाँ बहुत मस्त था।
1: अच्छा, बहुत बातें हो गई, हमने साइकिल भी चला ली और गीत भी सुन लिया। अब बारी है थोड़ी जीके की क्विज की। क्यों, पूछूं सबसे? हाँ
2: पूछो
4: पूछो
2: पूछो।
4: पूछो।
1: रूहानी, तस्मिया और नबीहा, मैं तुम तीनों को नाम लेके पूछूंगी, लेकिन उससे पहले रिया, कुशाग्र, समृद्धि और युविका, तुम चारों मुझे जवाब दोगे, क्योंकि बहुत देर से देख रही हूँ तुम सब बिल्कुल चुप चुप बैठे हो। तो चलो शुरू करते हैं। समृद्धि, तुम बताओ हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है?
2: मोर।
1: अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा रिया, तुम बताओ हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है?
5: कमल का फूल।
1: अरे वाह, ये भी बिल्कुल सही। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
2: मैं बताऊं?
4: मैं बताऊं?
2: मैं बताऊं?
4: मैं बताऊं?
2: मैं बताऊं?
1: अच्छा कोई भी एक बता दो।
2: क्रिकेट।
1: अरे नहीं, क्रिकेट तो नहीं है, माना वो सबका फेवरेट है, लेकिन गलत जवाब।
4: छुपन
1: छुपाई। छुपन छुपाई भी नहीं है।
2: मैं बताऊं?
1: अच्छा रूहानी, तुम बताओ।
6: हॉकी।
1: अरे वाह, सही जवाब। अभी किसी और के पास कोई सवाल है जो मुझसे पूछे?
2: मैं पूछूं?
1: पूछो रूहानी।
2: ऐसा कौन सा पेड़ है जो हमारा इंडिया का नेशनल पेड़ माना जाता है?
6: ये मैं बताऊं?
1: हाँ नबीहा बताओ।
6: इसका उत्तर है बैनियन ट्री।
1: अरे वाह, रूहानी बताओ।
2: करेक्ट है।
1: तुमने तो ये उत्तर बहुत ही जल्दी दे दिया, क्या बात है, पढ़ के आई थी क्या?
6: नहीं नहीं, पहले भी तो पढ़ाया जाता है ना।
1: हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, दूध कौन कौन पीता है? क्योंकि मुझे ये तो समझ आ रहा है कि जीके सबका तेज है।
2: मैं पीती हूँ।
1: अरे बाप रे, दूध तो सभी पीते हैं। चलो अच्छी बात है, मुझे तो बचपन में दूध पीना पसंद नहीं था, लेकिन मम्मी पिला देती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पसंद आना शुरू हो गया है, तो अब दिन के 2 ग्लास तो फिक्स है
2: मेरे भी।
1: अच्छा मेरे को अब ये कौन बताएगा कि दूध क्यों पीते हैं?
2: मैं बताती हूँ।
1: अच्छा युविका बताओ।
2: हमको दूध इसलिए पीना चाहिए क्योंकि जो हमारी बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं।
1: अरे वाह, बिल्कुल सही।
7: हाँ और साथ ही साथ दूध एक संपूर्ण आहार है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12 और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। और कुछ बच्चे मुझे दूध पीने के फायदे बता सकते हैं?
1: मैं बताऊं?
7: बताओ रबानी।
1: अरे एक तो सबसे बेसिक है, दूध हमारी एनर्जी बूस्ट करता है और हमारे दिमाग को भी तेज करता है, क्योंकि अभी जो मैंने जीके ये ली ना, ये सब दूध का ही असर है। रूहानी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम कुछ बताना चाह रही हो, बताओ भी।
2: दूध पीने से दूध के अंदर ट्रिप्टोफैन होता है जो हमारी नींद को इम्प्रूव करता है।
1: अरे वाह, इसका मतलब दूध पीने से नींद भी बढ़ी आएगी अब।
7: अब तो रोज दूध पीना पड़ेगा।
1: हाँ हाँ
8: मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ।
1: बताओ आसमान।
8: दूध हमें एनर्जी देती है।
3: दूध हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है।
1: अरे वाह रिया, ये तो सच में बहुत जरूरी था।
7: कब से हम बातें कर रहे हैं, चलो एक गाना सुन लेते हैं।
1: हाँ हाँ जरूर,
2: मेरे को तो वैसे ही बड़ा मजा आता है गाना सुनने में।

0: अरे वाह, ये गाना सुन के तो बहुत मजा आ गया।
1: हाँ, बहुत मजा आया।
2: अब तुम बताओ सौम्या, तुम क्या बताना चाहती हो?
3: क्या आपको बचपन की वो सुबह याद है जब घर में दादाजी के पुराने ट्रांजिस्टर से आती भजनों की आवाज से दिन शुरू होता था, या फिर क्रिकेट मैच की वो कमेंट्री जिस पे पूरा मोहल्ला कान लगाए बैठा रहता था। आज हम बात करने वाले हैं उसी जादू की, एक ऐसे सुपर हीरो की जिसके पास कोई चमचमाती स्क्रीन नहीं, फिर भी हमारी कल्पनाओं में रंग भर देते हैं। जी हाँ, आज की कहानी है रेडियो और हमारी अपनी आकाशवाणी की।

और इंटरनेट नहीं थे, तब यही रेडियो दुनिया से जुड़ने का एक लौती तार थी। टीवी या मोबाइल हमें सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन रेडियो हमसे महसूस करवाते हैं। जब रेडियो पर कोई कहानी या नाटक आता है तो हमारा दिमाग खुद ही उसका सेट, उसके किरदार और उसके रंग तय करता है। इसलिए रेडियो का जादू कभी फीका नहीं पड़ता, क्योंकि असली स्क्रीन तो हमारे दिमाग में होती है। स्टूडियो की शुरुआत। जब कोई आरजे या अनाउंसर रेडियो स्टेशन के माइक्रोफोन में बोलता है तो माइक उस आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। ट्रांसमीटर का कमाल, ये काम कैसे करता है? अब आप सोचेंगे कि बिना किसी तार के सैकड़ों मीटर दूर बैठा एक इंसान हमारे कानों में कैसे बोलता है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। रेडियो का पूरा खेल तीन चीजों पर टिका है, आवाज, ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो माइक उस आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। आपका रेडियो, आपके घर में रखा रेडियो या आपकी कार का एक स्टीरियो एक रिसीवर है। इसका एंटीना हवा में मौजूद उन रेडियो तरंगों को पकड़ता है, उन्हें वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है और स्पीकर के जरिए दोबारा आवाज बना देता है। और ये सब इतना तेजी से होता है कि दिल्ली के स्टूडियो में बोली गई बात पलक झपकते ही पटना के किसी गांव में बैठे इंसान को सुनाई दे जाती है। बिना स्क्रीन का सुपर हीरो। अब सवाल ये है कि आज इस 4K स्क्रीन और 5G इंटरनेट के जमाने में मैंने रेडियो को सुपर हीरो क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों, सुपर हीरो वो होता है जो तब काम आए जब बाकी सब हार मान ले। जब भारी बारिश या तूफान में बिजली कड़क जाती है, टीवी बंद हो जाते हैं और मोबाइल के टावर गिर जाते हैं, तब बैटरी से चलने वाला एक छोटा सा रेडियो ही लोगों को मौसम की चेतावनी और राहत की खबर पहुंचाता है। जब कोई किसान अपने खेत में पसीना बहा रहा होता है तो उसके पास वीडियो देखने का समय नहीं होता, तब यही रेडियो उसको खेत के गुण सिखाता है और लोकगीत सुनाकर उसकी थकान भी मिटाता है। सरहद पर खड़े हमारे जवानों से लेकर दूर दराज के पहाड़ों पर बैठे लोगों तक, जहां कोई स्क्रीन नहीं पहुंचती, वहां आकाशवाणी की आवाज़ पहुंचती है।

अगली बार जब आप अपनी कार में या मोबाइल ऐप पर रेडियो चालू करें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ गाने नहीं सुन रहे, आप विज्ञान के एक ऐसे चमत्कार को सुन रहे हैं जिसने पीढ़ियों को जोड़ कर रखा है। आकाशवाणी एक ब्रॉडकास्टर नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक धड़कन है। यह था हमारा बिना स्क्रीन का सुपर हीरो। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी कल्पनाओं को उड़ान देते रहिए, क्योंकि आवाज का जादू कभी खत्म नहीं होता।

लेकिन अब घड़ी दिखा रही है जाने का वक्त। अब हम जाएंगे और अगले हफ्ते वापस आएंगे ऐसी हमारी खजाने का पिटारा लेके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन अगर आप हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं @fmgradiokids@gmail.com। बाय।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही पलों बाद यानी शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं स्वांग। इसमें किस्सा राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती का होगा और कलाकार होंगे केशव कुमार, पूनम त्यागी और साथी। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 5:10 पर। वहीं शाम 5:30 पर आप सुन सकते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। ग्राम संसार, इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:30 बजे और शाम 7:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत। रात्रि 8 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कवि गोष्ठी।

0: अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, इस कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 10 बजे किया जाएगा और रात्रि 11:10 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं अब हमारा अगला कार्यक्रम स्वांग।
1: नमस्कार, आज का कार्यक्रम लोक संगीत स्वांग और कलाकार हैं केशव कुमार, बबीता उर्फ पूनम त्यागी, कथानक है राजा हरीशचंद, रानी तारामती।

99 यज्ञ कर लिए, 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ की। अब तो इंद्र के अखाड़े में सभी बैठे हुए हैं और सभी सोच रहे हैं कि मृत्युलोक में एक ऐसा सत्यवादी है कि एक रोज वो इंद्र के आसन को छीन लेगा। प्यारे साथियों, ऋषि विश्वामित्र कहने लगे, मृत्युलोक में ऐसा सत्यवादी कौन है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अब तो परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। स्वप्न में आते हैं राजा हरिश्चंद्र के और स्वप्न में ही तीन वचन भरवा लेते हैं। तीनों वचनों में राजपाट सब कुछ मांगने के बाद तीसरे वचन में 2.5 भार सोने की हां करा लेते हैं। साथियों, सुबह होते ही दरबार में एक साधु आते हैं, राजपाट की चाबी मांगते हैं। चाबी तो हरिश्चंद्र ने दे दी, साथ में कहा कि महाराज अभी तो 2.5 भार सोना और बाकी है। कि महाराज उसे कहां से दूंगा, कि तुम्हारे शरीर को बेच करके उसे पूरा करूंगा। काशी के बाजार में लेकर के विश्वामित्र पहुंच जाते हैं, गलियारों में आवाज लगाते हैं, लेकिन मोल लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक कालिया नाम के व्यक्ति ने तीनों का 2.5 भार सोने में मोल लगा दिया, लेकिन 1 भार सोने में राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 1.5 भार सोने में रामलाल पंडित ने रानी तारावती और रोहित को खरीद लिया। काम क्या था दोस्तों, वर्णा नदी से जल लेकर के आना काम था दोनों का। अब तो साथियों 30 रोज हो गए थे, जर्जर शरीर हो रहा था, हरिया का शरीर बेदम सा हो रहा था, भारी घड़ा था, घड़े को नहीं उठा पा रहा था। दूर को नजर करता है उसकी अर्धांगनी, उसके 7 फेरों की गुनेगार नजर आ जाती है। सोच रहा है तो 30 रोज बाद रानी तारावती से मुलाकात भी हो जाएगी और यहाँ घड़े को उठवाने वाला कोई नहीं है, कम से कम सहारा देकर यही मेरे घड़े को उठवा देगी। समय की कैसी विडंबना है, जिन्होंने 7 जीने मरने के कसमें वादे किए थे, आज तो घड़ा उठवाने से भी इनकार कर गई। दोनों का संवाद हो रहा है, भला किस

0: महारानी तारा, महारानी तारा मैं इंतजार कर रहा था कोई मुसाफिर यहाँ आए और मेरे घड़े को उठवा दे, लेकिन आज तो परमात्मा ने कैसी कृपा की है आपको यहाँ भेज दिया। इस बहाने से आज मुलाकात भी हमारी तुम्हारी 30 रोज बाद हो रही है और मेरे घड़े को सहारा देकर के मेरे सिर तक पहुंचवा दीजिए महारानी, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी।
1: स्वामी मैं आपके घड़े को हाथ तो नहीं लगा सकती, लेकिन आपको मैं एक विधि जरूर बता सकती हूँ ताकि आपका घड़ा आपके सर तक पहुँच जाए।
0: मेरी बात सुन लीजिए महारानी तारा,

0: तारा
1: जी स्वामी,
0: मेरे घड़े को हाथ लगाने से आपकी काया पवित्र हो जाएगी। लेकिन महारानी, इस शरीर को तो आप इस वर्णा के जल में धोकर भी साफ कर सकती हो।
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपके घड़े को हाथ

0: महारानी तारा
1: जी स्वामी,
0: इस घड़े में वजन ज्यादा होने के कारण इसे नहीं उठा पा रहा, मेरा जर्जर शरीर है, थोड़ा सहारा दे दे, तेरा बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। मेरी बात को जरा गौर से सुन ले।

0: शास्त्रों में लिखा है जल से पवित्र चीज को पवित्र किया जा सकता है। यहाँ तो वर्णा में बहुत सा जल है, अपने शरीर को धो करके चाहे स्नान करके पवित्र कर सकती हो। मेरी बात को जरा गौर से सुन करके।
1: आप बिल्कुल सही कह रही हैं स्वामी, लेकिन जहाँ आप रहते हैं और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ दोनों जगह में फर्क है। मेरा ब्राह्मण के घर तेरा है और मैं आपके घड़ी को घर नहीं लगा सकती।
0: मरी बात सुनकर

स्वर्गलोक में परमात्मा भेजता है उसके कर्मों को भी साथ साथ भेजता है। सत्य सत्य जीवन मानी लाभ हानि यश अभ्यस ये विधाता के हाथ में होता है, मनुष्य मात्र के हाथ में बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बात गौर से सुने जरा।

0: तरह से प्यारे साथियों रानी मदनावत के समझाने और कहने पर तरकीब बता दी कि जल के अंदर गोता मार के जब गले के बराबर जल आ जाए तो डुबकी लगा देना, घड़ा स्वेत ही तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। जर्जर हालत थी प्यारे साथियों, बहुत जर्जर हालत हो रही। जैसे ही हरिचंद घड़े को लेकर के चलता है, ठोकर के लग के घड़ा गिर जाता और फूट जाता है। अब तो कालिया जो सामने खड़ा देख रहा था, देख करके हरिया को और क्या कह रहा है, दोनों का संवाद किस तरह से बुला।
1: हरिया
0: कहिए मालिक,
1: तूने इस घड़े को फोड़ दिया है, तुझे पता है मेरा तूने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है।
0: मालिक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कमजोर शरीर था, घड़े में ज्यादा वजन था, मैं लत पचा कर चल रहा था, ठोकर लग गई मालिक, गिर गया, इसलिए घड़ा फूट गया। मालिक मुझसे गलती तो हुई है।
1: हरिया ये रोज की लापरवाही तेरी ठीक नहीं है, अपने काम को जिम्मेदारी से इंसान को करना चाहिए।
0: आप कह दीजिए मालिक क्या कहना चाहते हैं, मैं सुनूंगा।
1: जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए।

0: तो तुम फिर मारोगे। इसलिए अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा सत्य और धर्म दिखता है। मेरी बात को जरा गौर से सुनना।
1: हरिया हरिया, ना करो मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। जिसका नमक खाता है उसके साथ गद्दारी करनी ठीक नहीं होती। हरिया
0: मेरी बात तो सुन लीजिए मालिक, मैं पूरी बात कहना चाहता हूँ।
1: कहिए जरा।

0: हरिया हरिया, आपने 30 रोज से अन्न नहीं खाया।
1: नहीं मालिक।
0: आपके लिए तो मैंने सेठ जी की दुकान को बाकायदा तेरे लिए उस सेठ जी से कहा था कि भाई हरिया के लिए इस दुकान को बिल्कुल फ्री कर दे, जो कुछ खाना है हरिया के लिए इसे छूट दे दे।
1: मालिक, मैं उसके बाद जिस दिन आपके साथ गया था उसके बाद उस दुकान पर गया ही नहीं हूँ।
0: उसके उसके बाद तू गया नहीं?
1: हाँ, पूछ सकते हैं सेठ से जाकर के।
0: हरिया, मुझसे तो बहुत भारी भूल हुई है और जो मैंने तेरे लात मारी है इसका मुझे बहुत दुख है।
1: मेरी बात सुन लीजिए मालिक।

इस तरह से इतना छोटा हूं, हरिया का काम बदल दिया कि आज से तुम मरद घाट पर कर ले लेना, जो भी वहां मुर्दा जलाने आए उससे सवार पर कफन लेना है। यारे साथियों, समय की कैसी विडंबना है, होली का त्योहार आ जाता है, अब तो रामलाल की पूजा के लिए फूल तोड़ते रोहित को ऋषि विश्वामित्र ने सर्प बन करके डस लिया। वो बच्चा बाग में हाय हाय चिल्ला रहा है और कह रहा है कि कोई मेरी आवाज को

ज्यादा हो तो काशी के अंदर रामलाल के यहाँ मेरी दुखियारी माँ रहती है, जरा उससे मैं खबर पहुंचा दो कि तेरे लाडले को सर्प ने डस लिया है। किस तरह से बच्चा हाय हाय करके चिल्ला रहा है, आइए सुनते हैं बाकी वाला किस तरह से क्या लिख दिया।

0: आए, ये क्या हो गया?
1: अरे बेटा, क्या हुआ तेरे को?
0: भाई देखो मेरे क्या हो गया।
1: अरे तेरे मुंह में झाग।
0: हाँ भाई, मेरे को नाक ने डस लिया। भाई
1: बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ।
0: हाँ, और मेरी माँ से एक बात कह देना।
1: क्या कह दे? तेरी माँ भी है?
0: हाँ,
1: यहीं पर रहती है?
0: यहाँ पे ही रहती है,
1: काशी शहर में।
0: जी
1: क्या कहूँ बेटे।

0: यही बात कहाँ रहती है बेटे? राम लाल पंडित के यहाँ रहती है जी।
1: मेरी माता का क्या नाम है?
0: तारावती।
1: ठीक है, मैं जाता हूँ।
0: ठीक है,
1: अभी लाता हूँ तेरी माता को लाकर। अरे भाइयों, यहाँ रामलाल पंडित का घर कहाँ है?
2: रामलाल पंडित का घर?
1: हाँ हाँ,
2: वो सामने है।
1: सामने है?
2: क्या काम है?
1: मुझे एक उनके यहाँ तारा नाम की कोई रहती है।
2: हाँ हाँ हाँ, रहती है, उनकी तो नौकरानी है।
1: ये घर सामने रामलाल,
2: सामने रामलाल का घर है।
1: बहन तारावती।
3: हाँ जी, मेरा नाम तारा है।
1: आपका ही नाम तारा है?
3: क्या बात हुई है?
1: आपके कोई लड़का है?
3: मेरा बेटा है।
1: बेटा है?
3: हाँ जी, रोहतास, और उसका नाम है।
1: वो बाग में गया था?
3: वो बाग में मैंने फूल तोड़ने के लिए भेजा था।
1: हाँ।
3: उसने कोई खता की है, उससे कोई गलती हो गई है।
1: नहीं।
3: जो आप इतने उतावले से होकर यहाँ तक आए हैं।
1: हाँ।
3: बताइएगा अगर मेरे बेटे से कोई गलती हुई है।
1: नहीं बहन, उसने कोई गलती नहीं की।
3: फिर क्या?
1: लेकिन वो बेहोश है।
3: बेहोश?
1: हाँ, चल के देखिए।
3: बेहोश?
1: हाँ।
3: मेरे बेटे को क्या हुआ है?
1: हाँ, ये देखिए।
3: रोहतास, हाय मेरी लाल, मेरी चंदा, तुझे क्या हुआ है मेरे बच्चा? अरे आंखें खोल मेरे जिगर के टुकड़े, तुझे क्या हुआ है रोहतास? रोहतास मेरे बच्चे, मेरे बछड़े, आंख खोल, क्योंकि मेरे जीने का एकमात्र तू ही सहारा है। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे लाल को क्या हुआ है जो ये बोलता भी नहीं? इसके मुख से नीली नीली झाग क्यों निकल रहे हैं, आपको क्या पता है?
1: देखिए बेटी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। वो कहा है किसी ने के सूरज का प्रकाश हुए भी हटता घोर अंधेरा ना, पैदा सो न पैद जगत में सदा रहे घर डेरा ना, और जीते जी की मेर तेर मरे पीछे मिंट बसेरा ना, यो सूक्ष्म जीव निकल जाएगा फिर कोई तेरा कोई मेरा ना।
3: अरे भैया, मुझे नहीं तो बताओ कि मेरे जीवन के टुकड़े को हुआ क्या है?
1: मेरी बात सुनिए, फिर मेरे खीरे
3: मुझे बताओ, मैं किसी
1: मेरी बात समझिए बेटी, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ।

ये आदमी का जिस्म क्या है जिस पे चेहरा है जहां, ये आदमी का जिस्म क्या है जिस पे चेहरा।

सांसों पे खड़ा है ये ख्याल आसमां पर मौत की पुरजोर आधी जब इसे टकराएगी।

0: प्रेम पतंग के कागज लड़के टोरी हाथ रही कोन्या, इसके जात जमात रही कोन्या, यो तेरा बेटा और तू इसकी मात रही कोन्या। और गुरु मंगल चंद भी चुप हो गया जब बस की बात रही कोन्या। कहे चंद्रलाल देह शंकर दास दूर हो गया, और जिसने बेटा कहा करे थी यो रोदास दूर हो गया।
1: मैं अपने बेटे को लेकर के कहा जाऊं मुझे भागन के पास तो इसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी नहीं है।
0: देखिए ये बाग में केले के पत्ते हैं, इसको केले के पत्ते में लपेट कर लेके जाओ, और ये सामने शमशान भूमि है वहां ले जाओगे। जाइए, केले के पत्तों में लाश लपेट देती है और वो दुखियारी लेकर के अपने बेटे को चलती है और क्या कहती है।

0: मुर्दा जलाने वाली औरत, कौन हो तुम जो बिना महसूल दिए यहाँ मुर्दा जलाने की हिम्मत कर रही हो?
1: स्वामी, मैं आपकी तारा हूँ। आप अपनी तारा को नहीं पहचानते?
0: कौन तारा, किसकी तारा, कैसी तारा?
1: पूरे संसार ने, पूरी दुनिया ने मुझे जानने से इनकार कर दिया। आज ये अभागन अपने पति के पास कुछ फरियाद लेकर के आई है। आप भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं स्वामी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, याद आया, मुझे याद आया, अच्छी तरह से याद आया। तुम वो मिश्रानी तारा हो जो वर्णा नदी पर मुझे घड़ा ठुआने से भी मना कर गई थी कि मैं अभी अपवित्र हो जाऊंगी। वो मिश्रानी तारा हो, मैं समझ गया।
1: महाराज, मेरी मजबूरी थी, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। आज आपका इकलौता बेटा रोहतास, मेरे ख्याल से आप उसे भी आज पहचानने से इनकार करेंगे।
0: आपको काशी के नियमों का मालूम?

0: हुक्म है आदेश है कि यहाँ मुर्दा जलाने से पहले 1.25 रुपये और कफन देना पड़ता है। क्या तेरे पास है वो?
1: मेरे पास नहीं है महाराज, मुझे भागन के पास एक भूती कौड़ी नहीं है महाराज, कहाँ से लाऊं मैं?
0: नहीं है तो उठाइए इस लाश को और ले जाइए शमशान से बाहर। मैं बिना महजूर के यहाँ मुर्दे को नहीं जलने दूंगा।
1: महाराज ऐसा घोर अनर्थ ना कीजिएगा, इतने बेदर्द ना बनिएगा। आज अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रहे हो, आपका इकलौता जीने का सारा।
0: मेरी बात को सुन ले जरा।

0: आज मुझे भी धर्म निभाने दे, मैं अपने मालिक कालिया का नौकर हूँ। उसके में मेरे अंदाता है, वो मेरे विधाता है, वही मेरी माँ और वही मेरे बाप है। उसके अलावा भाई दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर मैंने अपनी मालिक के साथ में छल कर दिया, पुत्र और पत्नी के मोह में आकर के बिना महसूल मुर्दे को जलने दिया, तो मैं ऋणी हो जाऊंगा कालिया का। उस ऋण को चुकाने के लिए फिर मुझे आवागमन में भटकना होगा। मुझे मुक्त हो जाने दे, मेरी बात को
1: थोड़ी दया दिखाइए,
0: मेरी बात को सुन ले और

0: अपने लाल की लाश को लेकर शमशान में नहीं आता, कहीं दरिया के किनारे कहीं बिहार जंगल में रख करके इसका अंतिम क्रियाक्रम कर देती, आज अपने पति का सत्यभंग करने के लिए क्यों आ गई?
1: महाराज, सत्यभंग करने के लिए नहीं आई हूँ। अगर बेटे का फर्ज पूरा नहीं कर सकते तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। सात फेरों का कम से कम एक फर्ज तो चुका दीजिएगा। आपके साथ राजपाट, धन दौलत, शोहरत सब कुछ छोड़ दिया, आज आपने पहचानने से क्या अपने बेटे को ही लात मार दी। कम से कम एक फर्ज तो निभा दीजिएगा महाराज।

0: मैं दुखियारी औरत, क्या तेरे पास देने के लिए कुछ है जो मैं अपने मालिक को बता दूं कि मैं ये कर लेकर के आया हूँ?
1: मेरे पास कुछ भी नहीं है स्वामी, केवल मेरा आधा सा चीर है वो कंठी है, इसे ही ले जाएगा और मेरे बेटे की लाश को जलाने
0: देख। दुखियारी औरत, मैं आप मुझे कंठी और चीर देना चाहती तो दे दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं अपने मालिक से पूछ करके आऊंगा, अगर उन्होंने कर स्वीकार कर लिया तो मुर्दे को जलने दूंगा, वरना नहीं जलने दूंगा।
1: ये कंठी चीर है स्वामी, इसे ले जाइएगा और मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने दीजिएगा स्वामी, करने दीजिएगा।
0: तो मैं अपने मालिक से पूछ करके आता हूँ, तब तक कि आप यही रहिए, अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो जला लेना मुर्दे की लाश को, वरना मत जलाना। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनकर लग बैठ जाइए और मैं जाता हूँ स्वामी के पास।

0: आइए हरिया आइए।
1: मालिक के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो।
0: प्रणाम हरिया। कहिए आज आपका कैसे आना हुआ?
1: मालिक आप अपने शमशान के नियमों को बदल डालिए, ये बड़े बेदर्दी के नियम हैं, बहुत ही कठिन नियम है मालिक।
0: बड़े कठिन नियम हैं।
1: मालिक मुझसे नहीं होता ऐसा, देखा नहीं जाता मालिक।
0: ऐसा तो कोई भी नियम मेरे मुरद घाट में कठिन नहीं है, केवल 1.25 रुपया मैंने मुरद घाट का कर कर रखा है, इससे कम कैसे करूं हरिया।
1: मालिक आज एक मुखियारी अपने लाडले की लाश को लेकर के आई थी, उसके पास मरघट का कर चुकाने के लिए 1.25 रुपया नहीं था। उसने ये आधा चीर और ये कंठी अपनी गले की सुहाग की निशानी दी है, अगर आप स्वीकार करें तो मैं उसकी मूर्ति की लाश को जलाने से।
0: क्या 1.25 रुपया उस दुखिया के पास नहीं था? ये कंठी और चीर लेकर तू मेरे पास आया है हरिया? कि यहाँ बड़े बड़े सेठ रहते हैं इस काशी में, पर ऐसी दुखिया भागन कौन है जिसके पास 1.25 रुपया भी नहीं है कर देने के लिए हरिया।
1: मेरी बात सुन लीजिए मालिक, और इस नियमों को बदलने की कोशिश करना, मेरी बात ध्यान से सुनो जरा।
0: कह दो जरा।
2: अभी हम सुन रहे थे लोक संगीत विधा स्वांग, किस्सा हरीशचंद तारामती भागे।
3: अभी आप स्वांग कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 5 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
5: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल

0: भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत ने भारत अमरीका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैनिक कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: हेमंत भाई, ये देखिए,
1: जी
0: लोक संगीत किसी भी क्षेत्र और समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, इतिहास और जीवन शैली का दर्पण होता है।
1: बिल्कुल, लोकगीत हमारी संस्कृति और मिट्टी की खुशबू से जुड़े हुए गीत होते हैं सुनील भाई, और ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी समाज की रचना होते हैं।
0: बिल्कुल, और ये देखिए, मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ियों तक आगे बढ़ते हैं, जो सामाजिक एकता को मजबूत करने और मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इनके महत्व की बात करें तो देखिए, सांस्कृतिक पहचान और संरक्षण यह किसी विशेष क्षेत्र की वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाजों और लोक कथाओं को संरक्षित करते हैं। यह हमारी जड़ों से जुड़ाव बनाए रखने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल, और भारत के अलग अलग राज्यों में लोकगीत जो है अनगिनत रूप में है, चाहे वो राजस्थान का घूमर हो, पंजाब का भांगड़ा, या यूपी बिहार का सोहर या बिरहा, सबकी अपनी अलग मिठास है।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सविता शर्मा के गाए इस

0: हेमंत भाई, ये तो लोकगीत सुना सविता शर्मा से। और देखिए, हम बात कर रहे थे लोकगीतों के महत्व की, तो
1: जी
0: सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ मौखिक इतिहास का संकलन की अगर बात करें तो बहुत से लोकगीत पीढ़ियों से मौखिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें उस काल की सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाएं छिपी होती हैं। यह इतिहास की किताबों में अलग

0: हम लोगों की कहानियां बयां करते हैं।
1: उन्हें गाने के लिए ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम जैसे साधारण वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है, जो किसी भी महफिल में जान डाल देते हैं।
0: बिल्कुल, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वीना डिलोर से सुन लेते हैं ये लोकगीत।

सुनील भाई, अभी हमारे साथियों ने सुना बीना ढिल्लोर और साथियों को, और बात हम कर रहे थे लोकगीतों की। आज के इस आधुनिक और डिजिटल दौर में सुनील भाई, हमें अपने इन लोकगीतों को बचाकर रखना है और उन्हें बढ़ावा देना है, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारी पहचान और अनमोल धरोहर है। आइए हम सब मिलकर अपनी इस शानदार विरासत पर गर्व करें और इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों तक जरूर पहुंचाएं। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम के अंत में पूनम चौधरी और की आवाज में ये लोकगीत।

0: हेमंत भाई, ये तो लोकगीत सुना पूनम चौधरी से, और पूनम चौधरी के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय ही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, संयोजक शिव नंदन लाल, लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। समय हुआ है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी, जी हाँ, खड़े की सुइयों ने इशारा कर दिया है। 5:30 का समय, रविवार का दिन और आज बहुत कुछ है खेलों में। आईपीएल फाइनल है, उसके अलावा हॉकी, बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन की बात करेंगे, इसके अलावा चेस, रेसलिंग में बहुत कुछ हो रहा है। तो बहुत कुछ खेल खबरों में आज, और आज आपके साथ मैं हूँ अतुल और मेरे साथ हैं
3: शिवांश।
2: जी हाँ शिवांश, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत अगर करें तो एक अच्छी खबर है बैडमिंटन प्रेमियों के लिए, जहां पे सिंगापुर ओपन में आज सभी वर्ग के फाइनल खेले जा रहे हैं। और पहले अगर बात करें तो मेंस डबल्स की, जहां पे भारतीय जोड़ी, जी हां, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशियन पेयर्स को 18-21, 21-16 और 21-17 से हरा कर टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा और भी मुकाबले चल रहे हैं। मेन सिंगल्स का इस समय मैच चल रहा है, जहां पे फ्रांस और सिंगापुर के खिलाड़ी आमने सामने हैं। विमेन सिंगल की बात करें तो साउथ कोरिया की SYN ने यामागुची, जापान के जो खिलाड़ी हैं, उनको हराकर खिताब जीत लिया है। विमेंस डबल्स में भी चाइना ने अपने हमवतन पेयर को हराकर पदक जीत लिया है। और मिक्स डबल्स में डेनमार्क की जोड़ी ने जापान को हराकर खिताब जीत लिया है। तो शुरुआत बैडमिंटन से, जहां पे अच्छी खबर खेल प्रेमियों के लिए, और अच्छी खबर आज आईपीएल से भी आने वाली है, जहां पर 2 महीने की जद्दोजहद के बाद आज फाइनल खेलने जाने वाला है। तो आइए सुनवाते हैं मेरे साथी शिवांश की ये रिपोर्ट।
3: लगभग 2 महीनों से ज्यादा चले आईपीएल 2026 का सफर आज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। आज भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

का खिताबी मुकाबला अपने ही घरेलू मैदान में खेलने के लिए उतरी गुजरात टाइटंस से होगा। जीटी अपने किले अहमदाबाद में उतरेगी, जहां उसका जीत प्रतिशत 63 है और यह टीम का तीसरा आईपीएल फाइनल है। संयोग से उसके तीनों फाइनल का वेन्यू अहमदाबाद ही रहा है। दूसरी तरफ आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत उसका सामूहिक प्रदर्शन रहा है। इस सीजन टीम के 10 जीत में 8 अलग अलग खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में जीटी को बड़े अंतर से हराया था। जीटी की टीम उस हार का बदला लेते हुए अपनी दूसरी ट्रॉफी हासिल करने का प्रयास करेगी। आइए इस मैच से जुड़े कुछ अहम आंकड़ों के ऊपर नजर डालते हैं। फाइनल में जीटी की उम्मीदें एक बार फिर राशिद खान पर टिकी होगी, क्योंकि आरसीबी के कई प्रमुख बल्लेबाज उनके खिलाफ संघर्ष करते नजर आए हैं। विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में राशिद के खिलाफ 12 पारियों में 131 रन बनाए हैं, लेकिन 3 बार अपना विकेट भी गंवाया है। देवदत्त पडिक्कल का रिकॉर्ड और भी कमजोर रहा है। उन्होंने आईपीएल में राशिद के सामने 9 पारियों में सिर्फ 40 रन बनाए हैं और 5 बार आउट हुए हैं। टिम डेविड भी 17 T20 पारियों में राशिद के खिलाफ 70 रन ही बना सके हैं, जबकि 3 बार आउट हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें आरसीबी की, तो नई गेंद से आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। जीटी के दोनों प्रमुख बल्लेबाजों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। शुभमन गिल ने आईपीएल में भुवनेश्वर के सामने 14 पारियों में सिर्फ 80 रन बनाए हैं और 6 बार अपना विकेट गंवाया है, जबकि उसका स्ट्राइक रेट भी महज 101 का रहा है। वहीं जॉस बटलर का रिकॉर्ड भी ज्यादा बेहतर नहीं है। T20 क्रिकेट में बटलर ने भुवनेश्वर के खिलाफ 21 पारियों में 123 रन बनाए हैं, लेकिन 9 बार आउट हुए हैं। आरसीबी के शीर्ष क्रम के सामने फाइनल में मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा की जोड़ी बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। T20 क्रिकेट में कोहली ने रबाडा के सामने 17 पारियों में 131 रन बनाए हैं, लेकिन 5 बार आउट भी हुए हैं। वहीं पडिक्कल का रिकॉर्ड सिराज के खिलाफ भी बहुत मजबूत नहीं है। आईपीएल में दोनों की भिड़ंत की 8 पारियों में पडिक्कल ने 45 रन बनाए हैं और 3 बार अपना विकेट गंवाया है। आईपीएल प्लेऑफ में जॉश हेजलवुड ने सिर्फ 7 पारियों में 14 विकेट लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट शानदार 11.6 का रहा है। 7 प्लेऑफ पारियों में वो 5 बार 2 या उससे ज्यादा विकेट ले चुके हैं। सबसे दिलचस्प आंकड़ा उनका फाइनल रिकॉर्ड में है। हेजलवुड ने अब तक खेले 5 T20 फाइनल और 4 ODI फाइनल जीते हैं। इनमें आईपीएल के 2 फाइनल भी शामिल है। ऐसे में आरसीबी को उम्मीद होगी कि बड़े मैचों में जीत दिलाने का उनका यह सुनहरा सिलसिला अहमदाबाद में भी जारी रहे। गिल और साई सुदर्शन ने इस सीजन 15 पारियों में 886 रनों को जोड़ा है, जो आईपीएल 2026 में किसी भी जोड़ी द्वारा सबसे ज्यादा है। इस दौरान उनका औसत 63.3 और स्ट्राइक रेट 177 का रहा है, जबकि 4 शतकीय और 2 अर्धशतकीय साझेदारियां भी आई हैं। साझेदारी में दोनों का योगदान लगभग बराबर रहा है, लेकिन गिल ने 173 के स्ट्राइक रेट से 421 रन बनाकर थोड़ा ज्यादा आक्रामक भूमिका निभाई है, जबकि साई ने 156 के स्ट्राइक रेट से 406 रन जोड़े हैं। आरसीबी के खिलाफ भी यह जोड़ी 3 पारियों में 187 रन बना चुकी है और अहमदाबाद में तो उनका रिकॉर्ड और भी शानदार है, जहां 23 पारियों में उन्होंने 1384 रन जोड़े हैं। आईपीएल 2026 में जब गिल और सुदर्शन की जोड़ी 5वें ओवर के बाद तक साथ रही है, तब जीटी के साथ में से 6 मैच जीते हैं और सिर्फ 1 में हार का सामना किया है। उसके उलट जब यह साझेदारी 5वें ओवर से पहले टूट गई, तब टीम का रिकॉर्ड 4 जीत और 4 हार कर रहा है। यह आंकड़ा दिखाता है कि जीटी के लिए शुरुआती विकेट कितना बड़ा फैक्टर है। फाइनल में आरसीबी की कोशिश नई गेंद से गिल या साई में से किसी एक को जल्दी आउट करने की होगी। अब बात करते हैं जीटी के लकी स्टार जेसन होल्डर की। क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 दोनों में जेसन होल्डर ने 2 विकेट लिए थे। आईपीएल 2026 में होल्डर ने 10 पारियों में से 17 विकेट चटकाए हैं, जो आईपीएल में किसी भी एक सीजन में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उनका इकोनॉमी रेट 7.5 है, जो कम से कम 30 ओवर फेंकने वाले गेंदबाजों में से इस सीजन का दूसरा सर्वश्रेष्ठ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब होल्डर ने 2 या सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, तब जीटी ने 6 में से 5 मैच जीते हैं। अहमदाबाद में उनका रिकॉर्ड और भी खतरनाक है, जहां 4 पारियों में वो 9 विकेट ले चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 9.3 का है। आरसीबी के खिलाफ भी उनके आंकड़े शानदार हैं। उन्होंने 10 आईपीएल पारियों में 16 विकेट लिए हैं। आज का महामुकाबला आरसीबी के किंग के बारे में बात किए बगैर पूरा नहीं हो सकता है। जी हाँ, किंग कोहली ने आईपीएल 2026 में एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी उम्र बढ़ सकती है, लेकिन निरंतरता में कोई कमी नहीं आती। इस सीजन 15 पारियों में 600 रन बनाकर उन्होंने आईपीएल में 6ठी बार 600 से ज्यादा रन का आंकड़ा पार किया है। साथ ही लगातार 4थे सीजन में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले बल्लेबाज बने हैं। इस बार उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत पावर प्ले में आक्रामकता रही है, जहां उन्होंने 168 के स्ट्राइक रेट से 325 रन बनाए हैं। हालांकि आईपीएल प्लेऑफ में उनके आंकड़े सामान्य रहे हैं, लेकिन बड़े फाइनल मुकाबलों में उनका रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली है। T20 फाइनल में उन्होंने 8 पारियों में 49.1 की औसत से 384 रन बनाए हैं,

0: जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है। कुल मिलाकर इन आंकड़ों को और अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए तो ये तय है कि आज आईपीएल के फैंस को कतई निराशा नहीं होगी और आज की शाम आक्रामक क्रिकेट देखने वाले दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। आज के खेले जाने वाले मैच पे जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: आई मीन टोटली डिपेंड्स ऑन लाइक दिस रिलेटिवली इज अ लिटिल बिट दिस ग्राउंड इज अ लिटिल बिट बिगर एंड वी हैव सीन समटाइम्स द विकेट हियर टुडे एंड इन बोथ द मैचेस द विकेट्स बीन रियली गुड बट समटाइम इफ द विकेट टेंड्स टू बी अ बिट ऑन द स्लोअर साइड यू नो देन इट्स इंपॉर्टेंट टू हिट द गैप्स Still looking to run well, hit the gaps, because I think that is the foundation of, you know, any format you are playing. If the team that plays less number of dot balls has a better chance of, you know, getting a better score.
0: आज के खेले जाने वाले मैच पे आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: After the qualifier won, we got enough time to rest, recover, and at the same time, GT is coming straight after the qualifier too. So there will be some sort of advantage, but not that much because both the teams are pretty good and played really good cricket.
3: और शिवांश, आज के मैच पे हमने बात की हमारे एक्सपर्ट रविंदर सिंह से, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा आज के मैच के बारे में।
4: बड़े मैच के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म सेट है सर, कैसे देखते हैं आज का मैच आप?
5: बिल्कुल, आज ये आरसीबी और गुजरात टाइटंस का जो मैच है वो एक बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है, क्योंकि आरसीबी जिस उम्मीद करी जाती थी शुरू से ही इस परफॉर्मेंस आईपीएल में बहुत ही अच्छा देते आ रहे हैं, इस आईपीएल में बहुत अच्छी फॉर्म में है। इनकी बैटिंग जो कॉम्बिनेशन है और बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो लगातार अनबीटन में चल रहा है, तो ये इस समय फेवरेट टीम है। गुजरात ने भी बाद में अच्छा पिकअप किया, लेकिन गुजरात हैवी डिपेंडेंट है मेरे हिसाब से बॉलिंग में अब रबाडा और रबाडा उस रात के ऊपर और बैटिंग में गिल के ऊपर।
4: और अंत में क्या लगता है आज आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है?
5: देखिए 20 ओवर के मैच में कुछ भी कहना बड़ा भारी पड़ता है, एक दो ओवर में ही मैच बिल्कुल पास पलट जाता है, लेकिन आज जो पलड़ा भारी मुझे लग रहा है इस समय, थोड़ा सा पलड़ा जो कह सकते हैं आरसीबी का लग रहा है जो फॉर्म देखते हुए आ रही है और गुजरात, लेकिन ये है कि अगर गुजरात अगर बाद में बैटिंग करती है और होम ग्राउंड है उनका होम एडवांटेज तो मिलेगा उनको, और गिल और जो साई ने जो बैट जो प्रदर्शन दिखाया है अगर वो क्लिक कर जाते हैं तो पर सकता था कभी पर।
3: जी हाँ, ये थी आईपीएल पर रिपोर्ट और कुछ ही घंटों का समय शेष है जब अहमदाबाद में आज एक नया विजेता मिलने वाला है। तो शिवांश, ये तो हुई बात आईपीएल की, और इंग्लैंड और इंडिया की विमेंस टीम के बीच में भी T20 मैच खेले जा रहे हैं, तो आइए उस पर भी जानकारी ले लेते हैं।
0: इंग्लैंड की महिला टीम ने भारत के खिलाफ शनिवार को दूसरे T20 मुकाबले में 26 रनों से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में वापसी कर ली। इससे पहले स्मृति मंधाना के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने गुरुवार को खेला गया पहला मुकाबला 38 रनों से जीता था। अब इंग्लैंड की जीत के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है। तीसरा और अंतिम मुकाबला 2 जून यानी मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इंग्लैंड महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। टीम के लिए फ्रेया कैंप ने मात्र 13 गेंदों में नाबाद 39 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि डैन वायट ने 25 गेंदों पर 39 रन, एमी जोन्स ने 22 गेंदों में 28 रन और एलिस कैप्सी ने 28 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से युवा स्पिनर श्री चरणी सबसे सफल गेंदबाज रही और उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। भारत के लिए यास्तिका भाटिया ने 36 गेंदों में 33 रन बनाए, जबकि कप्तान स्मृति मंधाना ने 25 गेंदों पर 32 रन और हरमनप्रीत कौर ने 22 गेंदों में 28 रन की पारी खेली। शेफाली वर्मा ने भी तेज शुरुआत देते हुए 14 गेंदों पर 22 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत दिला न सकी। इंग्लैंड की ओर से फ्रेया कैंप ने 2 विकेट झटके, जबकि चार्ली डीन ने भी अहम मौकों पर 2 विकेट लेकर भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने मुकाबला 26 रन से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। आइए श्रोताओं, इसके बाद सुनते हैं मेरे साथी अतुल द्वारा ICCF ISSFF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल के ऊपर रिपोर्ट जो म्यूनिक जर्मनी में आयोजित हो रहा है।
3: जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित ISSF राइफल और पिस्टल विश्व कप 2026 का समापन भारत के शानदार प्रदर्शन के साथ हुआ। भारतीय निशानेबाजों ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर पदक तालिका में 2रा स्थान हासिल किया। चीन 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदकों के साथ

0: शीर्ष पर रहा। टूर्नामेंट के अंतिम दिन भारत को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक मिला। मनु भाकर और सम्राट राणा की भारतीय जोड़ी को विश्व नंबर एक और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के याओ क्यान कुसुन और हुकाई ने बेहद रोमांचक मुकाबले में मात्र 0.3 अंक के अंतर से हराया। फाइनल की शुरुआत भारतीय जोड़ी के लिए धीमी रही और पहली सीरीज के बाद वे तीसरे स्थान पर थे। हालांकि दूसरी सीरीज में मनु भाकर ने शानदार वापसी करते हुए 51.5 अंक जुटाए और भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया। तीसरी सीरीज तक भारतीय जोड़ी ने चीन से अंतर घटाकर सिर्फ 0.1 अंक का कर दिया। इसके बाद पहली एलिमिनेशन सीरीज में मनु और सम्राट ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2.2 अंकों की बढ़त भी बना ली थी, लेकिन अगली एलिमिनेशन सीरीज में मुकाबले का रुख बदल गया। भारतीय निशानेबाजों के कुछ कम स्कोर वाले शॉट्स के कारण चीनी जोड़ी ने वापसी की और बढ़त हासिल कर ली। अंतिम सीरीज में भारतीय जोड़ी ने अंतर कम करने की कोशिश की, लेकिन चीन की अनुभवी जोड़ी ने दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आइए सुनते हैं मनु भाकर और सम्राट राणा ने मैच के बारे में और फ्यूचर तैयारियों के बारे में क्या कहा।
1: या वी वन गोल्ड इन एशियन एयरगन चैंपियनशिप बैक इन 2022, बट इन जूनियर कैटेगरी। सो इन द सीनियर कैटेगरी दिस इज आवर फर्स्ट वर्ल्ड कप।
2: आई वुड से दैट आई एम रियली लाइक इन द मोमेंट राइट नाउ बिकॉज इट वाज अ लॉट फॉर मी। So I just can't like quickly recall what was it, but I'm sure if he's saying then it was that. But however, like right now I'm just not able to go in the past or recall anything. Well, Munich World Cup is one of those World Cups where we really look forward to. We want to come because we know that good competition will be there, and we want to bring good competition to this event. So indeed, every time is a different experience here in Munich. And again, I am looking forward to all the Munich World Cups coming next year, next to next year, and all. And this will be very crucial in confidence building or experience building, and couple of other things as well. When we are headed to a more serious season ahead, so we have Asian Games, World Championships, and all lined up. So definitely, this is going to help.
0: राइफल वर्ग में भी भारतीय टीम को निराशा हाथ लगी। 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में एलावेनिल क्लावरिन और अर्जुन बाबरूता की जोड़ी 630 अंक के साथ 14वें स्थान पर रही, जबकि आर्य बोरसे और शाहू तुषार माने 629.6 अंक के साथ 16वें स्थान पर रहे। दोनों जोड़ियां पदक मुकाबले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस स्पर्धा का स्वर्ण चीन की वांग जिफेई और शिंग लिहाहो की जोड़ी ने जीता। म्यूनिख विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी स्टार रही ईशा सिंह और सुरुचि सिंह। ईशा सिंह ने महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतते हुए नया सीनियर और जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वहीं टूर्नामेंट के अंतिम दिन महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सुरुचि सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। इस मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला और दूसरा स्थान हासिल किया, जहां ईशा सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों युवा निशानेबाजों के प्रदर्शन ने भारतीय महिला पिस्टल शूटिंग की बढ़ती ताकत को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित किया। म्यूनिख विश्व कप में कुल 4 पदकों के साथ भारत ने आगामी विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों से पहले अपनी तैयारियों का मजबूत संकेत दिया है। यहाँ शूटिंग में मजबूत संकेत है भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर। और बात करें रेसलिंग की तो वहां से भी अच्छी खबर है, बहुत कुछ है रेसलिंग में। पहले अगर बात करें तो एशियन चैंपियनशिप अंडर 17 जो वियतनाम में चल रही है, वहां पर फ्री स्टाइल कैटेगरी की जो कैटेगरी में अलग अलग मुकाबले हुए हैं, वहां से क्या खबर है। 65 किलोग्राम भार वर्ग में बात करें तो भारत के विनीत ने सिल्वर मेडल जीता है। उसके अलावा 71 किलोग्राम भार वर्ग में भी भारत के अनुज को ब्रॉन्ज मेडल मिला है और 80 किलोग्राम भार वर्ग में मनदीप ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। और आज शाम भी मुकाबले होने हैं। 92 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के दीपांशु दहिया का मुकाबला उज्बेकिस्तान के पहलवान से होगा और 110 किलोग्राम भार वर्ग में भी भारत के आरुष राणा चुनौती देंगे ईरान के पहलवान को फाइनल मुकाबले में। जी हाँ, ये तो बात हुई अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप की। और रेसलिंग की ही बात करें तो एशियन गेम 2026 के लिए क्वालिफिकेशन मैच चल रहे हैं इस समय। अगर विमेन कैटेगरी की बात करें तो 50 किलोग्राम में दीपांशी क्वालिफाइड कर चुकी हैं, 53 किलोग्राम में अंतिम पंगेल और 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा भानवाला भी क्वालिफाई कर चुकी हैं, 62 किलोग्राम में मानसी अहलावत, 68 किलोग्राम में निशा दहिया और 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक, ये सभी एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और अगर मेन्स यानी कि पुरुष वर्ग की बात करें तो क्वालिफाइंग मैच चल रहे हैं।

0: लखनऊ से हमारे साथी शाहिद आजमी की रिपोर्ट सुन लेते हैं, जहां पे आज किन पहलवानों ने क्वालिफाई किया।
1: एशियन गेम्स के लिए साई सेंटर में आयोजित फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन कुश्ती ट्रायल्स में देश भर के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया और अगले दौर में पहुंचने के लिए जोरदार मुकाबले खेले। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी ट्रायल्स जारी हैं और अंतिम परिणाम आना बाकी है, लेकिन बात करते हैं कुछ खास कुश्तियों की जो अब तक हो चुकी हैं। पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चिराग ने अंकुश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत ने भी आसान जीत दर्ज करते हुए अंतिम चार में अपना स्थान पक्का कर लिया। 65 किलोग्राम भार वर्ग में सुजीत कलकल ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। इसी वर्ग में निखिल ने भी अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर अंतिम चार में प्रवेश किया और अब सेमीफाइनल में उनकी भिड़ंत सुजीत कलकल से होगी। दूसरी ओर विशाल कालीरमन ने उदित को हराकर सेमीफाइनल में जगह, जबकि रोहित ने मोहित को मात देकर अंतिम चार में अपना स्थान सुनिश्चित किया। 74 किलोग्राम भार वर्ग में यश और अभय के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें यश ने जीत दर्ज की। वहीं जयदीप ने दीपक को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। परमिंदर ने चंद्रमोहन को पराजित कर अंतिम चार में जगह बनाई। इसी भार वर्ग में सागर जगलान ने संदीप मान के खिलाफ एक तरफा जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की। ट्रायल्स में कुल 6 फ्री स्टाइल भार वर्ग में 77 पहलवानों ने हिस्सा लिया। इनमें 57 किलोग्राम में 13, 65 किलोग्राम में 11 और 74 किलोग्राम में सर्वाधिक 18 पहलवान शामिल रहे। इसके अलावा 86 किलोग्राम में 13, 97 किलोग्राम में 12 और 125 किलोग्राम हैवी वेट वर्ग में 10 पहलवानों ने चुनौती पेश की। वहीं ग्रीको रोमन शैली में भी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। 6 भार वर्गों में कुल 92 पहलवानों ने भाग लिया, जबकि प्रतियोगिता में कुल 85 मुकाबले निर्धारित किए गए थे। एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने की होड़ के बीच ट्रायल्स में खिलाड़ियों का उत्साह और प्रतिस्पर्धा दोनों ही चरम पर दिखाई दी। आप हैं कुलदीप सिंह, भारत के जाने माने कुश्ती कोच। जानते हैं साई सेंटर में किस तरह के मुकाबले चल रहे हैं, बताइए जरा कैसा दमखम दिख रहा है।
2: बहुत तगड़े मुकाबले चल रहे हैं और सभी रेसलर अपना 100% लगा रहे हैं, क्योंकि 4 साल बाद टूर्नामेंट आता है एशियन गेम्स, तो फंटेस्टिक। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टैलेंट, बहुत अच्छे मुकाबले चल रहे हैं।
1: जिस तरह पहलवान दिख रहे हैं, एशियन गेम्स में कितने पदक आने की उम्मीद है?
2: देखो, एशियन गेम्स में फ्री स्टाइल में उम्मीद है कि 3 से 3 पदक 4 पदक जीत सकते हैं। ग्रीको रोमन में 1 या 2 का उम्मीद है बस।
1: ग्रीको रोमन में जोश बहुत दिख रहा है।
2: हाँ, जोश बहुत है, अच्छा कंपटीशन है। सभी जो एक नेम्ड रेसलर है जिनका नाम है वो भी हार रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत अच्छा है।
1: आखिर सवाल पूछूंगा, फ्री स्टाइल आपने देखा है, अमन सहरावत से लेकर दीपक पुनिया तक तमाम पहलवान हैं, क्या कुछ नए चेहरे भी अच्छे नजर आए?
2: हाँ बिल्कुल, नए चेहरे, जैसे अभी अंकुश को हराया चिराग ने 57 में, बहुत अच्छा रेसलर है, न्यू कमर है। और 65 में भी जैसे नए, ये क्या नाम है, नया एक लड़का, ये भी 65 में, जिसका अभी अंडर 23 में गोल्ड था, वो लड़का भी एक अच्छा है। और 74 में भी नेक टू नेक बाउट चल रही है, तो काफी नए लड़के हैं और इनके पास अभी प्रिपरेशन का भी टाइम रहेगा, जो लड़के सेलेक्ट होंगे जो 3 महीने बाद एशियन गेम्स।
1: थैंक यू कुलदीप जी। फिलहाल के लिए साइज सेंटर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए।
0: जी हाँ, तो बात हुई कुश्ती की, और एथलेटिक्स से भी बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए, जहां पे एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप चल रही है हांगकांग में, जहां आज अंतिम दिन है, और इस पर भी जान लेते हैं रिपोर्ट और ताजा अपडेट्स। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदकों की झड़ी लगा दी है। प्रतियोगिता के अंतिम चरण तक भारत ने 8 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर तालिका में अपनी जगह मजबूत की है। आज दिन के प्रथम चरण में मेंस डिस्कस थ्रो में भारत के निश्चय ने 60.10 मीटर का डिस्कस थ्रो करके रजत पदक जीता। निश्चय का ये सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। वहीं अगर महिला वर्ग में 5000 मीटर में भारत की मुस्कान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपनी दूरी 16 मिनट 53.08 सेकंड में जीती। वहीं कल की बात करें तो भारत के लिए निखिल चंद्रशेखर ने पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। निखिल ने 9:25.44 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकालते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं

0: लंबी कूद में शाहनवाज खान ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 7.84 मीटर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या बढ़ाई। भारत के ही जितिन अर्जुनन ने 7.66 मीटर की कूद के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। हाई जंप की बात करें तो वसंत ने भी स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय दल को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। वसंत ने 2.20 मीटर की कूद के साथ पहला स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में आरती ने भी 200 मीटर के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कांस्य पदक सुनिश्चित किया। 24.12 सेकंड के अपने सर्वश्रेष्ठ समय के साथ आरती ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं भारत की ही भूमिका 24.13 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर रही। श्रीलंका की दिलानमा ने स्वर्ण पदक जीता। चैंपियनशिप में अन्य भारतीय खिलाड़ियों के कल के प्रदर्शन की बात करें तो महिला भाला फेंक स्पर्धा में पूनम 46.55 मीटर के साथ सातवें स्थान पर रही। वहीं 4x400 मीटर मिक्स रिले में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वे क्वालिफाई नहीं कर पाए। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज दोपहर के चरण में भारतीय दल की नजर रिले स्पर्धाओं और कुछ फील्ड इवेंट्स के फाइनल मुकाबलों पर रहेगी, जहां भारत के कई खिलाड़ी पदक की दौड़ में बने हुए हैं। अंतिम दिन भी भारतीय खिलाड़ियों से पदकों की उम्मीद है और यदि वे अपने प्रदर्शन को दोहरा सके तो भारत पदक तालिका में और मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। कुल मिलाकर युवा खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन आगामी विश्व अंडर-20 प्रतियोगिताओं और सीनियर स्तर की एथलेटिक्स के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। जी हाँ, एथलेटिक्स में अच्छा भविष्य शुभ संकेत। और बात करें इवेंट्स की, जहाँ पे निपम जो भारतीय विमेंस 100 मीटर फाइनल में खेली थी उन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। इसके अलावा डेकथलन जो इवेंट होती है उसमें मेंस हाई जंप में भारत के राहुल जाखर तीसरे स्थान पर रहे और डेकथलन 400 मीटर में भी राहुल जाखर ने तीसरा स्थान हासिल किया। तो अच्छी खबर एथलेटिक्स से। और इसके बाद अगर बात करें तो स्क्वैश में भी बहुत कुछ हुआ है। ब्रिटिश ओपन चालू हो चुका है, वहां से क्या खबर है राउंड ऑफ 64 की, आइए वो भी जान लेते हैं। ओपन स्क्वैश 2026 में भारत के अभय सिंह और वीर चोटरानी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल के राउंड ऑफ 64 मुकाबले में अभय सिंह ने कोलंबिया के मातियास कनुडसेन को सीधे गेमों में 11-8, 11-5 और 11-4 से हराकर अपनी चुनौती मजबूत की। वहीं वीर चोटरानी ने पाकिस्तान के नूर जमान के खिलाफ कड़े मुकाबले में 11-8, 12-14, 11-6 और 11-7 से जीत हासिल कर अगले दौर का टिकट कटवाया। हालांकि भारत के रमित टंडन को निराशा हाथ लगी, उन्हें फ्रांस के ऑगस्टे दुसूर्द के खिलाफ मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और प्रतियोगिता में उनका अभियान यहीं पर समाप्त हो गया। महिला एकल वर्ग में भारत की युवा खिलाड़ी अनहत सिंह ने मिस्र की नादरीन ग्रास को कड़ी टक्कर दी, लेकिन चार गेम तक चले मुकाबले में उन्हें 8-11, 11-8, 8-11 और 9-11 से हार झेलनी पड़ी। इसके साथ ही अनहत का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। और ये तो बात हुई ब्रिटिश ओपन स्क्वैश की। और चेस में नॉर्वे ओपन जो 2026 चैंपियनशिप चल रही है वहां से क्या खबर है, आइए जान लेते हैं शिवांश से।
1: नॉर्वे शतरंज 2026 के पांचवें दौर में भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबले में डी गुकेश ने आर प्रज्ञानंद को हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली क्लासिकल जीत हासिल की। इस मैच से पहले गुकेश की एकमात्र जीत पहले राउंड में आर्मागेडन के जरिए हुई थी। यह प्रतियोगिता का एक अहम क्षण था क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुए इस मुकाबले में काले मोहरे से खेल रहे गुकेश ने जीत हासिल की। इस परिणाम ने न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ाया बल्कि रैंकिंग में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया और वे 30 स्थान पर पहुंच गए जबकि प्रज्ञानंद चौथे स्थान पर खिसक गए। 47 चालों के बाद गुकेश ने चेकमेट कर दिया जिसके चलते प्रज्ञानंद को हार माननी पड़ी। जीत के बाद गुकेश की प्रतिक्रिया में राहत झलक रही थी क्योंकि उन्होंने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में अब तक कोई क्लासिकल गेम नहीं जीता था। पहले दौर में विंसेंट कीमर के खिलाफ उनकी जीत आर्मागेडन टाई ब्रेक के जरिए हुई थी। राउंड 5 काफी रोमांचक रहा जिसमें 3 में से 2 क्लासिकल गेम काले मोहरे से खेलने वाले खिलाड़ियों के जीत के साथ समाप्त हुए जबकि केवल एक गेम ड्रॉ रहा। टूर्नामेंट के अग्रणी अलीरेजा फिरोजा ने शीर्ष पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। उन्होंने विंसेंट कीमर के खिलाफ अपने क्लासिकल गेम में एक मौका गवा दिया लेकिन आर्मागेडन में उन्होंने संयम बनाए रखा और अंततः जीत हासिल करके तालिका में शीर्ष पर अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया। वेस्ली सौ का दिन भी अच्छा रहा, उन्होंने 5 बार में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर दूसरा स्थान हासिल किया। हालांकि नॉर्वे के इस दिग्गज खिलाड़ी का प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में लगातार खराब हो

0: जा रहा है और अब वे रैंकिंग में सबसे नीचे आ गए हैं, जिससे उनका रिकॉर्ड 8वीं बार नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने का प्रयास लगभग असंभव हो गया है। 5 राउंड के बाद रैंकिंग में फिरोजा 10.0 अंकों के साथ आराम से शीर्ष पर है। वेस्ली 108.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके बाद गुकेश 6.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, प्रज्ञानंद 6.0 अंकों के साथ चौथे और कीमर 5.0 अंकों के साथ पांचवे और कार्लसन 4.5 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। टूर्नामेंट की शुरुआत होने से पहले डी कुकेश ने प्रेशर हैंडलिंग के बारे में बताया।
1: Everybody kind of underestimates the kind of spotlight and expectations that come along with the title, and it's something that, like, obviously I've been I've had to deal with, and sometimes struggle with. As I say, a pressure is a privilege, so like chance for me to grow through the challenge, and I feel like this last 1.5 years. As challenging as it has been, it has also helped me build character and become a better person in general. So.
0: इस बीच भारत की दिव्या देशमुख ने नॉर्वे महिला शतरंज 2026 के पांचवें दौर में चीन की झू जिनर को हराकर बीबी सारा को पिछाड़ते हुए तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। बीबी सारा और अन्ना मुजीचुक के बीच का मैच ड्रॉ रहा, जिसके बाद यूक्रेनी खिलाड़ियों ने आर्मागेडन राउंड जीत लिया। 2025 महिला विश्व कप की विजेता अब 8.5 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है, जबकि बीबी सारा 8.0 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, मुजी चूक तीसरे स्थान पर जिनके 7.0 अंक है, उसके बाद जीनेर चौथे स्थान पर 5.5 अंक के साथ और मौजूदा महिला विश्व चैंपियन जू वेंजून 5वें स्थान पर 5.0 अंक के साथ है, जबकि अनुभवी भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी 4.5 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है।
2: और जल्दी से हॉकी की बात कर लेते हैं, जहां पे अंडर 18 एशिया कप टूर्नामेंट जापान में खेला जा रहा है। वहां पे महिला वर्ग में आज भारत की टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया, जबकि पुरुष वर्ग में भारत को 2-4 गोल से जापान से हार मिली। तो ये तो बात हुई हॉकी की, और जल्दी से फुटबॉल की बात कर लें तो भारत का यूनिटी कप अभियान निराशाजनक रहा है, जहां उसे शनिवार को तीसरे स्थान के लिए हुए प्लेऑफ के मैच में जिम्बाब्वे से 0-1 का सामना करना पड़ा। और चलते चलते अगर बात करें संडे ऑन साइकिल की, आज संडे है तो 76th एडिशन यानी कि 76वां एडिशन आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उसका आयोजन हुआ, और आज की थीम थी सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये हर संडे को फिटनेस पर आधारित एक प्रोग्राम है। तो खेल की खबरों में आज शिवांश इतना ही, समय खबरें और भी हैं लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है, तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी अतुल को
0: और शिवांश को दीजिए अनुमति।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
5: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
5: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत

दारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: roles. The objective of SIR is that no eligible citizen is left out, while no ineligible person is included in the electoral roll. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India has transformed from a technology follower to a technology leader over the past 12 years. Speaking in a podcast with Doordarshan News, Dr. Singh said the country is playing an increasingly important role in the development of frontier technologies and helping shape the future of global innovation. In Himachal Pradesh, 8 people lost their lives after their vehicle fell into a deep gorge in the Chamba district. The deceased include 7 tourists from Chhattisgarh and the driver of the vehicle. The tourists had been visiting Himachal Pradesh for sightseeing and were staying in Dalhousie before leaving for Sach Pass on Friday. When they failed to return, the hotel management alerted the police, after which the search operation was initiated. Authorities later located the vehicle deep inside the gorge. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for the evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said vulnerabilities have been identified and contained, and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. The Terminal Ballistics Research Laboratory of the DRDO today successfully conducted trial of a powerful high-caliber bomb at its facility at Ramgarh in Panchkula district of Haryana. The test was conducted amid comprehensive security arrangements. In badminton, the Indian pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched the men's doubles title in Singapore Open today. The duo defeated Indonesian combination of Muhammad Shohibul Fikri and Fajar Alfian 18-21, 21-17, 21-16 in the final to win their first title in 2 years. The Indian pair had won the Thailand Open in May 2024. In IPL cricket, Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru are all set for epic title clash at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad this evening. Both teams are aiming for their second IPL title. Gujarat won their maiden crown in 2022. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ, प्रख्यात साहित्यकार कवि एवं पत्रकार श्रीकांत वर्मा की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्वरांजलि और दक्षिण पश्चिमी मॉनसून 2026 के संदर्भ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन। 28 मई गुरुवार को एनएएससी कॉम्प्लेक्स पूसा में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अध्यक्ष थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। इस आयोजन में अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा,
2: देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहे। 140 करोड़ का देश हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं रह सकता, और वो खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है। और इसलिए मैं कहता हूँ अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले हैं। वो दिन का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। खाद्यान्न का उत्पादन हो, फलों का हो, सब्जियों का हो, दलहन का हो, तिलहन का हो, किसान दिनों रात मेहनत करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में हमने कई योजनाएं किसानों के लिए बनाई हुई, और वो योजना सीधे केंद्र इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, राज्य के माध्यम से ही हमको करना पड़ेगा। वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, और इस टीम ने बेहतरीन काम किया है। सबसे बड़ा योगदान किसानों का है, खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, हमने तृतीय अनुमान जारी किए हैं। मुझे फिर दोहराते हुए खुशी है कि इस वर्ष जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित जो है 3,765.63 लाख टन है, जो पिछले साल की तुलना में 188 लाख टन अधिक है, और इसके लिए मैं भारत के किसानों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में, बढ़ते तापमान में, क्लाइमेट चेंज के इस वातावरण में उन्होंने अद्भुत परिश्रम किया है। हमारे आईसीआर के वैज्ञानिक मित्रों को भी आज हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। हमने जो अलग अलग किस्में बीजों की विकसित की है, अलग अलग जो कृषि की पद्धतियां बनाई है, उसका भी इसमें अतुलनीय योगदान है। तो हम कैसे अलग अलग गतिविधियों में किसान को लगा पाए ताकि उसकी आमदनी बढ़े। भाई अन्नदाता सुखी भवा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन उसकी भी तो हालत सुधारना है जो दिन और रात मेहनत कर रहा है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे आपके विचार चाहिए मुझे। एक राज्यों को जिस पे काम करना है वो नकली पेस्टिसाइड, खाद और पेस्टिसाइड अगर कोई नकली बेचता है तो पाप करता है, अपराध करता है, उसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। इसमें बड़ी भूमिका राज्यों की है। पेस्टिसाइड एक्ट, सीड एक्ट, इस पर तैयारी चल रही, सलाह मशवरा विचार विमर्श चल रहा है, वो भी लाएंगे। लेकिन हमारे पास जो आज मौजूदा व्यवस्था, उसके अंतर्गत गड़बड़ करने वाले को ठीक करने का काम हमको करना ही पड़ेगा। बीज सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग विचार कीजिए सब। सीड रोलिंग प्लान कैसे उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करें, इस समय पूरी तैयारी करें, क्योंकि मानसून आने में भी देर है। और इस समय मैं तो कहता हूँ, अगर जमे तो खेत बचाओ कार्यक्रम में ही सीड मिनी किट का वितरण हो जाए, बीज के टाइम पे पहुंचाएं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो, राज्य के हमारे बीज निगम हो, या बाकी एजेंसीज हो, ये प्लान पूरा बनना चाहिए, सही समय पर सही बीज पहुंच जाए किसान के पास। आखिर हमारा काम किसानों का हित है, इसलिए उस व्यवस्था को हम कैसे ढंग से बनाए। एक बात और जिस पर विचार, फार्मर आईडी का टारगेट पूरा करना है। भाई कई राज्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ राज्यों में अभी शुरू होना है, और इसलिए फार्मर आईडी मतलब एक फार्मर आईडी है, तो कई योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी को किसान को दिया जा सकता है। विकसित कृषि संकल्प अभियान में हम लोग जुटे थे, सारे हमारे वैज्ञानिक जाए, आईसीआर की टीम, केवीके की टीम, कृषि विभाग के राज्य का अमला, एक्सटेंशन का आपका अमला पूरा, प्रगतिशील किसान, एफपीओज, पैक्स के लोग मिलकर हमको प्रयत्न करना पड़ेगा।
1: 27 मई बुधवार को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में स्वरांजलि श्रृंखला के अंतर्गत आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुति हेतु पंडित प्रदीप्त सेन गुप्ता को आमंत्रित किया गया। प्रस्तुत है इस आयोजन में मैंडोलिन वाद्य प्रस्तुतिकरण की एक झलक।

0: 25 मई सोमवार को रफी मार्ग स्थित मावलंकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सभागार में विश्व हिंदी परिषद एवं श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में प्रख्यात साहित्यकार कवि एवं पत्रकार स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में विश्व हिंदी परिषद के उपाध्यक्ष डीपी मिश्रा ने बताया,
1: ये आयोजन विश्व हिंदी परिषद और श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट के तत्वाधान में श्रीकांत वर्मा जी की 40वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है श्रीकांत वर्मा जी की जो उनकी भारतीय संस्कृति पर सोच थी, वो एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, एक बड़े कवि थे, साहित्यकार थे। मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, आशा करता हूँ कि हर व्यक्ति को इनसे सीखना चाहिए।
0: 29 मई शुक्रवार को दक्षिण पश्चिमी मानसून 2026 के संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया,
2: हमारा जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी हुआ है 5 जून से 30 सितंबर के बीच देश की एवरेज रेनफॉल की बात करें वो सामान्य से नीचे रहने का संभावना है, और परिमाणात्मक ढंग से देखें तो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है वो लगभग 87 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और इसका 90% बारिश कंट्री में होने का संभावना है। ये जो मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं इसका त्रुटि है ±4%। मगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री देखें तो मेनी एरियाज में बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है, एक्सेप्ट ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, कुछ इलाका, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सम पार्ट्स ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जहां नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है जून के सेप्टेम्बर के दौरान। आज भी हम जून के रेनफॉल के बारे में जानकारी दिए हैं, जून के रेनफॉल के हिसाब से कंट्री जो होल के लिए रेनफॉल सामान्य से कम हो सकता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्ट सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सा जहां नॉर्मल या नॉर्मल से वो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है।
0: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
3: और अब प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार।
4: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमंत्री आतपात् आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिक पेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिकतः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिकशक्तिं दक्षिणपूर्व एशियादेशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतप्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञानभारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़राज्यस्य मल्हारक्षेत्रे 6-7 शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः 3 ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
5: ज्ञान भारतम् अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी

0: सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमन्त्रिण श्री नरेन्द्र मोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्मऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात रक्षण प्राप्तुम आमपन्नम, तक्रम, सत्तुपेयम, बेलपन्नम, पानकम, नीरमोर, सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभवः निहितः अस्ति।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली हैं। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीड़ा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्यां प्रतियोगितायां प्रायः अष्टशताधिक क्रीडकाः भागं गृहीतवन्तः। श्रीमोदी, गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ शत मीटर मितायां धावन प्रतियोगितायां विजेतृभ्यां गुरिन्दर वीर सिंहः तथा अनिमेश कुजूर चेत्येताभ्यां सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशस्य प्रत्येकं जनेषु जिज्ञासां जनयति। तेनोक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशे शीघ्रं लोकप्रियं भवति। श्रीमोदी युवानः खगोलशास्त्र समूहे सम्मिलितुं तथा अवकाश कालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरितवान्। प्रधानमन्त्री उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षण सम्बद्धस्य लघु चलच्चित्रस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। तेनोक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेन्स अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्रीमोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैव विविधतायाः तथा अमूल्यायाः प्राकृतिक धरोहरायाः संरक्षणमपि भवति।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: नूतनः सीडीएस इति प्रमुखः रक्षाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणिः अद्य उक्तवान् चिन्तने कर्मणि च नवोन्मेषः सैन्य सामर्थ्यानां विकासं त्वरितं करिष्यति। देशस्य नूतनस्य प्रमुख रक्षाध्यक्षस्य पदं स्वीकृत्य वार्ताहरैः सह संवादे जनरल सुब्रमणिः अवदत् यत् सशस्त्रबलानि राष्ट्रहितसंरक्षणे निरन्तरं व्यावसायिकं कार्यसञ्चालनसम्बद्धं निर्णायकं च प्रदर्शनं विहितवन्तः। ते भारतस्य सार्वभौमत्वस्य, प्रादेशिक अखण्डतायाश्च रक्षणाय दृढसंकल्पाः सन्ति। अद्य प्रातः नवदिल्लीस्थे साउथ ब्लॉक प्रांगणे प्रमुखाय रक्षाध्यक्षाय गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानः प्रदत्तः। तेन राष्ट्रीय युद्ध स्मारके पुष्पांजलिरपि समर्पिता। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा उक्तं यत् स्वस्य सेवा प्रदातुः ऑन मार्क पोर्टल इत्यस्यान्तर्गताः ये दोषाः अधुना सार्वजनिकरूपेण आगताः तेषां विषये सा सावधानतया निरीक्षणं करोति। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे सीबीएसई उक्तवान् यत् विविध सर्वकारीय संस्थानां तथा भारतीय

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: हेमंत भाई, देखिए
1: जी।
0: आज 31 मई है और आज के दिन को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं और इसे दुनिया भर में लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में जागरूक करना है। और विशेषकर बात करें तो देखिए युवाओं की जो सुरक्षा की बात करें तो ई
1: जी
0: सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों से बच्चों और किशोरों को बचाना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, तंबाकू छोड़ने में लोगों की मदद करना और तंबाकू मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है।
1: बिल्कुल सुनील भाई, आपने सही कहा। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी। और तंबाकू में निकोटीन जो पदार्थ होता है ना, जो अत्यधिक नशे की लत को पैदा करता है,
0: बिल्कुल,
1: और उससे क्या होता है, लगातार लत पड़ जाती है और ये स्वास्थ्य के लिए एक बुरा असर डालता है।
0: और हेमंत भाई बात करें विषय की या थीम की तो इस वर्ष का जो थीम रखा गया, विषय रखा गया, आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना रखा गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य भाई जो तंबाकू के सेवन से मुक्त लोगों की जीवन शैली बिताने पर ही आधारित है। और तंबाकू के सेवन की अगर गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं के विषय में बात करें तो देखिए फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारी, आघात, उच्च रक्तचाप, मुख का जो कैंसर है वो, प्रतिरक्षा दमन और इस तरह की जो मूत्राशय का कैंसर, अनेक जो बीमारियां हैं तंबाकू के सेवन से हो सकती
1: एक
0: हैं।
1: बहुत बड़ी गंभीर बात सुनील भाई ये है कि हर साल दुनिया में 80 लाख से अधिक मौतें जो हैं तंबाकू संबंधित बीमारियों के कारण होती हैं।
0: बिल्कुल, और इसीलिए इस दिवस को मनाने का जो मुख्य

0: जैसे यही कि भाई लोगों को तंबाकू निषेध के बारे में जागरूक करना।
1: तम्बाकू को कहें ना और स्वस्थ जीवन को कहें हाँ।
0: बिल्कुल, तो देखिए इस बारे में बातचीत भाइयों से और भी करेंगे, लेकिन देखिए आज भाई हमारा विशेष कार्यक्रम पत्रों पर
1: बिल्कुल
0: आधारित लोक संगीत का फरमाइश कार्यक्रम विशेष इसलिए भी क्योंकि देखिए भाइयों को इंतजार रहता है, वो हमें खत भेजते हैं और साथ ही मैसेज भेजते हैं, तो भाई उनको इंतजार रहता है कि
1: बिल्कुल
0: अपनी पसंद के कलाकार को सुनने के लिए। और आज के जो हमारे पहले कलाकार हैं वो हैं रुस्तम सागर, और रुस्तम सागर से रागनी सुनने के लिए जो पहला खत आया है, जो पहले ही हमारी फरमाइश आई है गांव चोलदा बागपत से, संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया की।
1: वहीं अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव महाराजपुर करकोरा पोस्ट पुठरी कला से, बुलंदशहर से ये फरमाइश हमारे पास आई है जितेंद्र सिंह सोलंकी, धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, अमित कुमार सोलंकी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: रुस्तम सागर को ही सुनना चाहते हैं, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, शंकर लाल, गणेश लाल और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हम तक पहुंची है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव की।
0: और इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से फरमाइश हमारे पास आई है पीएस नहापकर, निर्मला नहापकर, विशाल नहापकर और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन रोजी पर्ल और विलिस डिक्स्ट्रोक की।
1: रुस्तम सागर को ही सुनना चाहते हैं डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, तन्मय गजभिये और उनके परिवार के सदस्य।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले बेरवाला खुर्द सिरसा से, बलवंत जाखड़, ममता, प्रिया, हिमानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: हनुमानगढ़ टाउन से हमारे पास फरमाइश आई है संत सुल्तान सिंह, कृष्णा मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है जटवाड़ा गाजियाबाद से, ये फरमाइश है शीशपाल अकेला की।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है बटेड़ा रोड मंडी डब्बाली से, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है ऊपर कोट मोहला चौखंडी बुलंदशहर से, उसको भेजने वाले हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहित, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन और उनका समस्त परिवार।
1: रुस्तम सागर को ही सुनना चाहते हैं योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अंबाला से, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, गुरकीरत और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है योगी मोहल्ला बराड़ जिला अंबाला से, इसको भेजने वाले हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हम तक पहुंची अनारकली बाजार जगराओं से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो पटेल नगर मालोट से, डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: दादरी गेट से फरमाइश आई है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: रुस्तम सागर को ही सुनना चाहते हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हम तक आई है गांव कालाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कटवासरा, सचिन, सतीश, योगेश और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है नजदीक बस स्टैंड हनुमानगढ़ से, और इसको भेजने वाले हैं रोमन वर्मा, अमन वर्मा और उनका समस्त परिवार।
1: तो सुन लेते हैं सुनील भाई इन साथियों की फरमाइश पर रुस्तम सागर का
0: और किस्सा रहेगा गोपीचंद का।

हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी रुस्तम सागर से और किस्सा सा गोपीचंद का। और देखिए आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं जिनके लिए हमें

0: फरमाइश मिली है वो सत्येंद्र यादव। और सत्येंद्र यादव को सुनने के लिए पहली फरमाइश मिली है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार की।
1: इनको ही सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है दुबैया नेवदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: वही हमें फरमाइश मिली है एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लाभ्या आरब और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है जीटीबी मार्केट अंबेडगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रबीना, आफिया, सना, हिना, शकीला और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल, कौशल्या, हेमलता, डिंपल और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: सत्येंद्र यादव को ही सुनना चाहते हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू।
0: सत्येंद्र यादव के लिए जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से, उसको भेजने वाले रमेश कुमार कंपोज, पिंकी वंश और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हम तक आई है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार की।
1: वही अगली फरमाइश आई है गांव लोहडडा जिला बागपत से जगमोहन प्रजापति, श्रीमती मुनिश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है पलारी छत्तीसगढ़ से, उसको भेजने वाले नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा देवगन और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई आज़ाद नर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, महराज जहां की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, उसको भेजने वाली है मुर्शद जहानाज, तलत जहानाज और उनका समस्त परिवार।
1: नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से फरमाइश आई अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली आशा रेडियो श्रोता संघ मेयर नगर से, और इसको भेजने वाले अभिजीत से, सरिता, परिणीता और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी की।
0: सत्येंद्र यादव को ही सुनना चाहते हैं रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: मेरठ कैंट से हमारे पास फरमाइश आई है दिग्दर्शन और कविता गौड की, सुनना चाहते हैं सत्येंद्र यादव को।
0: सत्येंद्र यादव को ही सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हम तक आई है गांव खोखरा वाली, विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है भोला कॉलोनी गरौंडा जिला करनाल से, इसको भेजने वाले हैं विजेंद्र कुमार, जयाजन, कांता रानी, गुंजन साहिल और उन समस्त परिवार।
1: गुजरात के गांधीनगर से हमारे पास फरमाइश आई है सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा की।
0: सत्येंद्र यादव को ही सुनना चाहते हैं गांव कुमारेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, साइना हसन और उनका समस्त परिवार।
1: पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, डी के अलवी, सुनना चाहते हैं सत्येंद्र यादव।
0: बिल्कुल इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिले फातिमा कॉलोनी महाराष्ट्र से, इसको भेजने वाले नासिर शेख, साजिद साहिद और समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हम तक आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की।
0: सत्येंद्र यादव को ही सुनना चाहते हैं गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम, इंदिरा शर्मा।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है ये पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से फरमाइश आई है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं सत्येंद्र यादव से ये रागनी और किस्सा रहेगा कृष्ण सुदामा का।

0: सुनील भाई, अभी हमने सुना सत्येंद्र यादव को रागिनी और किस्सा था कृष्ण सुदामा का। और अगले हमारे जो कलाकार हैं वो हैं गजेंद्र कुमार, और उनके लिए जो फरमाइश आपके हाथों में दिख रही है।
1: बिल्कुल, फरमाइश हमें पहले ही मिली है ढाणा नरसाना भिवानी से, और इसको भेजने वाले हैं जगदीश चिंडालिया, राजू चिंडालिया, सतीश चिंडालिया और उनका समस्त परिवार।
0: वहीं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और उनके परिवार के सदस्यों की फरमाइश आई है।
1: गजेंद्र कुमार को ही सुनना चाहते हैं। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू।
0: वहीं हरियाणा, ये गांव बड़दू चैना, जिला भिवानी, हरियाणा से फरमाइश आई है महिपाल शारोण, नीरू उत्कर्ष और दिव्यांश की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है जसपुर उत्तराखंड से, उसको भेजने वाले रियासत हुसैन, नजमा बेगम, रियाज और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश आई है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और

0: परिवार के सदस्यों की। और इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ
1: सूरतगढ़
0: से।
1: राजस्थान से फरमाइश सुनील भाई आई है, भूपेंद्र भूपेंद्र मिशन, प्रभुजोत मिशन और बीबी जानविका की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है ग्राम नागर कोहरा जिला छत्तीसगढ़ से। इसको भेजने वाले हैं बबलू शाहू, जमुना देवी शाहू और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश आई है गोविंदगढ़ राजस्थान से राजू टुटेजा, खुशदिल होरिमला टुटेजा, गुड्डू मीनू, शिव शेट्टी, करणपुरी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा की।
1: पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से फरमाइश आई है, ये ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल मक्कड़ और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: गजेंद्र कुमार को ही सुनना चाहते हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और उनका समस्त परिवार। साथ ही फरमाइश मिले डुमराव बिहार से डॉक्टर डुबलू अंसारी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: चौधरीवास से फरमाइश आई है राजू अग्रवाल, केशव प्रयाग, प्रियानशी, विवेक और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है भाई कबीर रेडियो श्रोता संघ से छत्तीसगढ़ से। और इसको भेजने वाले देवशंकर तुमारिया, अजय देव तुमारिया और उनका समस्त परिवार।
1: दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से फरमाइश आई है मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है मुरादनगर से। इसको भेजने वाले करमवीर सिंह और उनका समस्त परिवार।
1: रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई उदय भान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: अगली फरमाइश हमें लिए गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम स्तोड़, रितु सिंह और उनके समस्त परिवार की तरफ से। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गजेंद्र कुमार से ये रागनी और किस्सा रहेगा मोर ध्वज का।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी गजेंद्र कुमार से, और किस्सा था मोर ध्वज का। और गजेंद्र कुमार की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। शाम के 7 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि

और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स। श्रोताओं, वक्त शाम के 7:05 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को राम
1: राम राम।
0: राम।
1: हेमंत भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए, किसी भी फसल का महत्व हमारे किसान भाइयों के लिए काफी होता है,
0: बिल्कुल
1: और खरीफ फसलों की बात करें तो इनका भी खेती में काफी महत्व है। और खरीफ फसल मुख्य रूप से वर्षा ऋतु यानी मानसून की फसलें इनको माना जाता है, जिसकी
0: जी
1: बुआई जून जुलाई से और भाई कटाई की बात करें मुख्य रूप से सितंबर से अक्टूबर के महीनों में की जाती है।
0: बिल्कुल
1: और खरीफ अभियान 2026 की तैयारियों की अगर बात करें तो खरीफ अभियान 2026 की तैयारियों, रणनीतियों और लक्ष्यों को तय करने के लिए कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में खरीफ की बेहतर पैदावार और कृषि तकनीकों पर केंद्रित कुछ प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। तो आइए
0: जी
1: सुनते हैं इसी सम्मेलन पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। दिनांक 28 और 29 मई 2026 राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 आयोजित किया गया। इस आयोजन में उपस्थित किसानों और कृषि अधिकारियों ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आइए आपको सुनवाते हैं इस आयोजन पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट।
3: नमस्कार, मेरा नाम सुखबीर है। मैं राजगढ़ एग्रो मैरिन प्रोडक्ट हेड प्रोड्यूसर कंपनी यानी चूरू जिले के FPO का डायरेक्टर हूँ। हमारे वहाँ पे मुख्यतः जो खेती होती है मूंग की, बाजरा, मोठ और गुआर की खेती होती है। टोटल की टोटल बिरयानी खेती होती है, यानी बिरयानी मतलब कि वहाँ पे सिर्फ बरसात पे निर्भर रहती है पूरी खेती। पानी लगाने का कोई भी सोर्स है वो हमारे वहाँ पे नहीं है। अभी पिछले 2 दिन से मैं इस इवेंट में शामिल हूँ। सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी है 2 दिन में महसूस हुई है वो ये है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पूर्णतः किसान के प्रति समर्पित है। प्रत्येक मोड पे हम देख रहे हैं कृषि मंत्री जी को, प्रत्येक स्टेट के अधिकारियों को, वहाँ के कृषि मंत्री जी को बार बार निवेदन कर रहे, क्लियरली आदेश दे रहे हैं कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, उसी

0: रिगार्डिंग हमें जो योजनाएं वो बनानी होगी, जैसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनको हमें जानकारी नहीं थी या फिर उनमें कैसे क्या हो रहा है, सारी चीजों का यहाँ पे आने के बाद दो दिन में हमें पता चला है। इससे पहले यदि किसी भी डिपार्टमेंट में जाते थे, हॉर्टिकल्चर अलग बैठता था, एग्रीकल्चर का अलग देखते थे अपने, यहाँ पे एक ही छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट आए हुए हैं। हमारे वहाँ पे मुख्य तो है जो दाल है वो मूंग और चने की होती है, लेकिन वो पीएम आत्मा में शामिल नहीं थी, इसलिए कल हमने अधिकारी जी को वहाँ पे लिख के दिया तो उन्होंने तुरंत वहीं पे हमारे सामने, जब हमारे स्टेट राजस्थान का बोलने का नंबर आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने उस चीज को वहीं पे रख दिया, उन्होंने हमारे सामने वहीं पे बात रखी है। उम्मीद हमें पूर्णतः है कि हमारी ये जो दोनों क्रॉप्स हैं उसको आत्मा में शामिल कर लेंगे। उसके अलावा हमने आज भी सुबह भी बात की है कि जो भी किसान उत्पादक संगठन है राजस्थान में, उनके सामने भी एक समस्या ये भी है कि जितने जो एमएसपी पे जो खरीद केंद्र है वो अभी उनको एफपीओ को नहीं, क्रय विक्रय सहकारी समितियां चल रही है उनको मिले हुए, तो हमने हमारी बातें अधिकारी जी के सामने भी रखी है। हो सकता है और हमें पूर्णतः उम्मीद है कि ये बात हमारी पूरी भी होगी और आने वाले समय में जो भी क्रय विक्रय सहकारी समिति जिस तरीके से काम कर रही है प्रोक्योरमेंट सेक्टर का, वही काम हमारे एफपीओ भी करेंगे, उससे किसानों को उचित मूल्य अपनी फसल का मिलेगा। और
1: मैं प्रसन्न कुमार चूरू, राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ तहसील से, मैं मूंग चने की अच्छी तरह से खेती कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ये खरीफ 2026 का जो आयोजन किया गया है ये बहुत ही सराहनीय और अच्छा है, और मैं ये आशा करता हूँ कि आगे भी सरकार इस तरह का जो आयोजन करती रहे। क्यों है उनको जो एक तो तुलाई सेंटर नहीं दिया गया है अभी, तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार को मिल करके तुलाई के लिए वो स्थापित किया जाए ताकि किसानों को भी फायदा हो और जो बीच में बिचौलिए वगैरह है ये भी खत्म किए जा सके। उसका समय समय पर जो एमएसपी है इसमें थोड़ा इंक्रीज किया जाए ताकि किसान को फायदा हो और वो दलहन की तरफ ज्यादा मन लगा करके खेती करे।
2: मैं राकेश रोही जिला पंचायत, इस इवेंट में आने से मुझे लग रहा है कि हमारे भारत के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो एक अच्छा कदम उठाया है, इससे हमारे किसान बहुत ही ज्यादा लाभान्वित, बहुत बारीकी से सारी खेतों की बातें बताई और कृषि मंत्रियों से जो आग्रह किया है कि वो देश में सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है धरातल पर उतारा जाए। मिनी किट्स वाली योजनाएं चलाई हुई है जो सरकार अब तक लगभग 70% से 80% तक वितरण कर चुकी है निःशुल्क, नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, अपनी क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, दूसरे देशों की तरह में निर्भरता है वो खत्म हो, हमारे चलन फिलन की मात्रा बढ़ाई जाए।
3: मेरा नाम विश्वजीत पांडे है। यहाँ इवेंट में बहुत सारी अच्छी बातें हुई, जहाँ मतलब हमारे देश के किसानों के बेनिफिट के लिए बातें हो रही है, लेकिन हम एक और चीज चाहेंगे कि यहाँ पे हो एफपीओ को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, इसको प्रमोट करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से, लाइसेंसिंग से जीडीपी में भी इजाफा हो और ज्यादा किसान जागरूक हो सके, सब अटेंड कर रहे हैं इवेंट, और यहाँ से जो हमें सीखने को मिलेगा वो हम चाहेंगे कि अपने किसानों में इम्प्लीमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा चीज यहाँ से सीख के जाए। हम यहाँ अपनी बातें भी माननीय मंत्री जी आए हुए हैं सारे स्टेट के, उनके सामने रखे हैं, सरकार और किसान दोनों एक मंच पे हैं, किसान और सरकार जो भी मतलब चाहते हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, जो है पेपर्स में न रह के किसानों तक पहुँच रहे हैं।
4: मेरा नाम स्वर्णिम कहते हैं, संभल स्वर्णिम एफपीओ का, जैसे कि अभी यहाँ पर भी हम मीटिंग में आए हुए हैं, वो भी उनका भी यही कहना है कि किसानों को तो सारा फायदा सीधे डायरेक्ट मिलना चाहिए, जो मंडी में होता है कि 7% आड़त है वो किसानों में नहीं जाना चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे एफपीओ ने क्या किया है, जो मॉडर्न ट्रेड की सारी कंपनीज है ब्लिंकेट है जेप्टो है, इनको डायरेक्ट हम वेजिटेबल सप्लाई करते हैं और डायरेक्ट किसानों से लेते हैं, और यहाँ पर जो मीटिंग हुई है आज इसमें बहुत सारी बातों पर विशेष चर्चा हुई है, जैसे कि फर्टिलाइजर है, ये मैं भी एक मतलब मानता हूँ ये बहुत बड़ी इशू आने वाला है, क्योंकि जैसे स्टेट ऑफ हार्मोस क्लोज किया हुआ है, क्योंकि जैसे अगर हम देखें वहां से फर्टिलाइजर आ नहीं रहा है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ग्राउंड में जाके देखें तो वहां पर फार्मर्स को बिल्कुल इस बात की भी नॉलेज नहीं है, हमें जमीन को भी देखना होगा कि वो क्या चीज मांग रही है, क्या चीज उसको जरूरत है, उसको पोटेशियम की जरूरत है, उसको सल्फर की जरूरत है, उसको कार्बन की जरूरत है, उसको बोरोन की जरूरत है, पर नहीं किसान से फर्टिलाइजर्स लेता है मोस्टली, जब पोटैटो हम लगाते हैं तो और उसको इतनी मात्रा में उसमें डाल दिया जाता है जिससे कि खेती का जो उपजाऊपन है, जो खेती की फर्टिलिटी है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, उस पर सरकार को बहुत ज्यादा नियंत्रण करना चाहिए। और एक चीज और है, जहां पर वाटर लेवल कम होता जा रहा है, मतलब बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी का स्तर गिरता ही जा रहा है, वहां पर सरकार को

0: जैसे कि जो फसल ज्यादा पानी लेती है उसको कम कर देना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे पानी वाटर लेवल ज्यादा नीचे गिरे। नाम दीपक शर्मा है, उत्तर प्रदेश के संबल जनपद का शान हूँ, जो एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी हम लोग चलाते हैं। आज हमें यहाँ इनवाइट किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि माननीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत सारी अच्छी चीजें हमें बताई, बहुत सारी किसानों के बारे में, तो जमीनी लेवल पर किसानों को परेशानियां आ रही है। मैं समझता हूँ कि मंत्री जी की नॉलेज में वो सब कुछ है और उन्होंने राज्यों को निर्देश भी दिए हैं। मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मतलब वो किसान को समझ रहे हैं, खेती को समझ रहे हैं कि किसान को क्या परेशानी आ रही है। और खाद के बारे में अभी हमने देखा कि बहुत समस्या मतलब अभी खरीफ में होती नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है और नहीं खुलता है तो आने वाली रबी की फसल में किसानों को बहुत समस्या हो सकती है, तो उसके लिए हम भी किसानों को जागरूक करेंगे। मंत्री जी ने कहा कि जो सीड है हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो किसानों तक समय से नहीं पहुंच पाता। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, जिसकी वजह से किसान की जो पैदावार है वो प्रभावित होती है, समय से वो नहीं पाता। किसान को बिना किसी लाइन में लगे खाद मिले, ये प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ये हमारे लिए जो है एक अच्छा साधन है, जिससे कि हमारी निर्भरता जो फर्टिलाइजर्स हम विदेशों से इम्पोर्ट कर रहे हैं उस पर कम हो जाएगी। उसके 25% पर प्राकृतिक खेती या आप जैविक खेती स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसमें जब आपको सही लगे तो फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, जिससे कि हमारी जमीन भी बची रहेगी। इसमें फसल बीमा की हकीकत ये भी है कि फसल बीमा जितना कंपनियां प्रीमियम ले रही है अभी उतना फसल बीमा नहीं दे रही है, वो माननीय मंत्री जी की नॉलेज में है। उन्होंने कृषि ऋण के लिए भी बोला है कि कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाए किसान को, और इसके अलावा जो और भी जरूरत पड़ती है कृषि ऋण की तो वो भी आसानी से उपलब्ध किसान को होना चाहिए।
1: मेरा नाम ज्ञान सिंह, गांव कासिमपुरा, और इस प्रोग्राम में मुझे कुछ बहुत देखने को मिला। और मैं नेचुरल खेती करता हूँ काफी टाइम से, प्राकृतिक खेती करता हूँ। प्राकृतिक खेती करने का मेरा ध्येय है कि यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और जमीन की उर्वरा शक्ति हमारी बढ़ती रहेगी। और इस वजह से हम सभी किसान भाइयों को कहते, जो मंत्री साहब भी कहते कि भी प्राकृतिक खेती करने से हमें लाभ मिलेगा और हमारी आय में वृद्धि होगी और खर्चा भी कम होगा और श्रम करेंगे। और मैं बीजों की उत्पत्ति करता हूँ, अपने जो पुराने बीज है जो लुप्त हो गए थे, जैसे हमारे बीज हैं एक मटरी होता था, काला धान होता था और गेहूं होते, जो प्राचीन बीज थे हमारे, उनको हम ढूंढ ढूंढ कर अपनी खेती में लगा रहे हैं और उनसे हम पैदावार अच्छी ले रहे हैं। कुछ बीज वैरायटी ऐसी हमारी है जो हम पानी भी नहीं दे पाते, उनको बिना पानी के तैयार करते हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती है और स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। इस वजह से हम सब अनुरोध ये करें कि आप नेचुरल खेती करें, फर्टिलाइजर से बचें, एडवांस में रखें, जितनी जरूरत हो। अपनी जमीन आपके 10 बीघे है तो उसमें 2 या 3 बीघे नेचुरल खेती करें और उसमें देसी खाद भी, गाय का गोबर और जीवामृत बनाकर गाय के पेशाब, इनसे उसमें खेती करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। किसानों से ये अनुरोध है, जल संरक्षण का है कि हम ज्यादा पानी चलाएं खेतों में तो हमारा पानी खत्म हो जाएगा, पीने से भी निर्भर हो जाएंगे। और यदि हम ऐसी खेती करेंगे जो प्राकृतिक खेती, उसमें हमें पानी कम मात्रा लगानी पड़ेगी, उसमें देसी खाद, हरी खाद, वास्प गोबर खाद, इनसे हम उसमें रोटेशन बनाकर और उसमें घास कबाड़ उसके अंदर जोत के तो पानी कम जरूरत पड़ता है हमें। प्रोग्राम था मंत्री साहब का, मैं आया हूँ 1-2 बार पहला, ये बहुत अच्छे ऐसे प्रोग्राम होने जरूरी है, क्योंकि यदि देश का किसान होगा सही स्थिति में उसे निर्देश मिलेंगे, हमारी सरकार को निर्देश देगी मंत्री साहब ने बताया, तो हम सही रास्ते पर आएंगे। अन्य एक दिन हुआ किसान उस स्थिति पर, किसान के दिन कहा जाना कि खेत में खून गिर गए तो खून के नुकतार है, उसे फसल चाहिए, क्योंकि जो हम नेचुरल खेती करते हैं उसके हमें दाम नहीं मिल पा रहे सही। ये एक सामूहिक प्रोग्राम है।
2: मेरा नाम मनाजिर है, मैं कमिश्नर एग्रीकल्चर हूँ आंध्र प्रदेश से। ये इस बार जो खरीफ कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ सारे स्टेट से मिनिस्टर्स आए हुए हैं, सेक्रेटरीज आए हुए हैं, डायरेक्टर्स आए हुए हैं और बाकी डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स भी जो आए हुए हैं, एक्चुअली ये काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ने इस बार लिया हुआ है, क्योंकि इससे ये है कि ओवरऑल कंट्री में कहाँ कहाँ, इंडिया में क्या क्या चल रहा है, गुड प्रैक्टिसेस कहाँ क्या क्या हो रही है, बाकी स्टेट्स को भी पता चल रहा है, एक तो वो है और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी मिलता है चीजों का कि एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस डायरेक्शन में लेना चाह रही है, उसमें स्टेट्स का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ जो इनिशिएशन इस बार लिया है मिनिस्ट्री ने, ये काफी अच्छा है। खरीफ सीजन आने वाला है, फर्टिलाइजर का भी थोड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से उसका भी थोड़ा अप्रिहेंशन है फार्मर्स में, एल नीनो का भी थोड़ा अप्रिहेंशन है। तो ये मानता हूँ ओवरऑल जो प्रिपेयरनेस है, ओवरऑल कंट्री लेवल पे जो प्रिपेयरनेस होनी चाहिए एज टीम एग्रीकल्चर की, तो ये उस डायरेक्शन में काफी अच्छा एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ने लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है, इसको तो कंटिन्यू करना ही करना चाहिए, स्टेट्स को भी करना चाहिए अपने अपने लेवल पे, जैसे जिले के जो भी अधिकारी हैं या ऑफिशियल्स रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, तो उनको बुला के भी अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज रोड मैप या उसके नीचे

0: विलेज रोड मैप बना बना के कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और एक यूनिफाइड डायरेक्शन में एग्रीकल्चर सेक्टर को लिया जाए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग बाहर ना आए। फूड बास्केट बनाने की अभी कोशिश हो रही है, ऑलरेडी रिकॉर्ड प्रोडक्शन वाइज फूड ग्रेन्स का पल्सेस का जो प्रोडक्शन हुआ है काफी रिकॉर्ड हुआ है अक्रॉस द कंट्री, तो उस डायरेक्शन में भी कैसे एरिया को बढ़ाया जाए, कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और पल्सेस की तरफ से और तिलन की तरफ से कैसे डायरेक्शन लिया। कॉटन का भी अभी मिशन शुरू हो रहा है कई राज्यों में, इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में कॉटन का काफी अच्छा खासा एरिया है, तो ये काफी उसमें मदद करेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थिंकिंग है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी अभी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, तो कैसे फार्मर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, जैसे आधार आया कंट्री में, उसके बाद यूपीआई आया, तो अभी फार्मर आईडी आ रहा है, बेनिफिट जो है लीकेज का स्कीम ना हो और उसमें मतलब जिस बेनिफिशियरी को बेनिफिट जाना चाहिए, ये सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव उसमें मदद करेंगे।
1: फार्मिंग करता हूँ, मुझे एनएचपी के थ्रू सब्सिडी मिली थी पॉली हाउस लगाने पे, जिसके अंदर मैंने टच रोज लगा रखा है और फिलहाल मैं राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खारिफ अभियान 2026 दिल्ली में आया हुआ हूँ, इसमें भाग लेने के लिए। और इसके अंदर हमें नेचुरल फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग संबोधन मिला है, इसके अलावा हमें यूरिया डीएपी जैसे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को कम यूज करने पे और हमारे प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स को जैसे कि घनजीवामृत हो गया, जीवामृत हो गया, उनका अधिक उपयोग करने पे सलाह दी गई। एक जो नया सुझाव इसके अंदर माननीय मंत्री जी ने दिया वह मित्र कीट का था, जो कि हमारी पेस्टिसाइड के उपयोग को भी कम कर सकते हैं। फसलों में अगर जहर का अंश कम होगा तो वह सभी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और किसान की जेब पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, जैसे हमारा खर्चा कम होगा। अभी बाजार में जैसे नकली पेस्टिसाइड वगैरह भी खूब है, माननीय मंत्री जी किरोड़ी लाल जी ने भी राजस्थान के अंदर खूब जगह पे इन सब चीजों के ऊपर रेड करी है, उनको बंद करवाया है। ये किसान के फायदे में है, जो नकली का उपयोग करके किसान का पैसा भी बर्बाद होता है और उसका फसल में कोई उपयोग भी नहीं हो पाता है, तो उससे अगर हमें बचाव मिल सके, जैसे मित्र कीट है और अभी माननीय शिवराज सिंह जी ने बताया था कि उनका उपयोग करके हम वर्ष भर शत्रु कीटों का कंट्रोल कर सकते हैं, कम खर्चे में कर सकते हैं और वह जहर को भी फसल के अंदर कम करेगा, तो ये सभी चीजें फायदेमंद है। और बाकी जो उर्वरक के उपयोग की है वह मांगी लाल जी ने अभी हमें प्रेजेंटेशन के अंदर बताया था कि जो हमारा सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन है उसको देखते हुए हम ग्रीन मैन्योरिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, काउडन मैन्योर का उपयोग बढ़ाना चाहिए और उससे हमारा जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज है वो 100% कम होगा और हमारी फसल की उपज भी बढ़ेगी और हमारे मिट्टी का उपजाऊपन भी बरकरार रहेगा। सम्मेलन में प्रेजेंटेशन के दौरान बताया गया कि जो योजनाएं किसानों के फायदे के लिए बनाई गई है कागजी कार्रवाइयों की वजह से रुक जाती है और कहीं पे उनमें प्रभाव गलत पड़ता है किसानों के ऊपर, कुछ लोग इसकी वजह से अपने जो फसल चक्र है उसको भी नुकसान में झेलना पड़ता है। मंत्री जी ने कहा है कि भाई इसका जो प्रक्रिया है इसको सरल बनाया जाए, किसानों को ऑन ग्राउंड मदद पहुंचाई जाए और जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाई जाए ताकि जो भी योजनाएं बनी गई हैं उनका सही प्रभाव किसानों को मिल सके।
2: दिनांक 28 और 29 मई 2026 राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब यहीं संपन्न होती है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूं, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: तो किसान बहनों और भाइयों, ये तो थी खरीफ अभियान 2026 की तैयारियों, रणनीतियों और लक्ष्यों को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन जो कि NASC कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, इसमें स्वर था संध्या और प्रस्तुति थी तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल। और ऐसा ही एक और अभियान कल से मध्य प्रदेश के रायसेन से शुरू होगा और जिसमें धरती माँ को बचाने का राष्ट्रीय संकल्प जो कि 1 जून से रायसेन जो कि मैं बताई रहा हूँ वहां से शुरू होने वाला है और इसका जो उद्देश्य है वो है खेत बचाओ अभियान। और इसमें जो है इसका शुभारंभ जो है कल 1 जून से हो रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों तथा किसानों हित में कार्यरत साथियों से वर्चुअल संवाद भी किया और इस अभियान में जन भागीदारी, वैज्ञानिक दृष्टि और राष्ट्रीय

0: के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया है।
1: इस अवसर पर जो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देखिए अपने प्रेरक संबोधन में कि यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि धरती माँ को बचाने, खेती का भविष्य सुरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करने का राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का असंतुलित उपयोग, मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट और बदलते जलवायु संकट खेती के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़े हैं। इसलिए समय रहते व्यापक जागरूकता और व्यावहारिक हस्तक्षेप जरूरी है।
0: और इसमें शिवराज सिंह चौहान, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अभियान का बहुउद्देश्य स्वरूप देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, मिनी बीज किट, दलहन तिलहन मिशन तथा कृषि यंत्रीकरण जैसी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाए। इसमें खेत बचाने के साथ साथ किसान की आय, जागरूकता और कृषि प्रबंधन क्षमता को भी मजबूत किया जा सकेगा।
1: इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल सलाह देना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि खेत स्तर पर डेमो, वैज्ञानिक प्रमाण और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से किसानों का विश्वास मजबूत करना होगा। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश भर में 30 जून तक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा जिसमें यह स्पष्ट हो सकेगा भाई कौन अधिकारी, वैज्ञानिक संस्था या टीम किस स्थिति को किस गाँव में जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले का कार्यक्रम पूर्व नियोजित और डैशबोर्ड पर आधारित मॉनिटरिंग हो, स्थानीय स्तर पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो और अभियान के हर चरण में प्रभावी समन्वय दिखाई दे।
0: इसी मौके पर शिवराज सिंह चौहान, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि जैसे पूर्व में विकसित कृषि संकल्प अभियान ने व्यापक प्रभाव छोड़ा, उसी प्रकार खेत बचाओ अभियान भी देशव्यापी जन जागरण और कृषि सुधार का सफल अध्याय बनेगा। उन्होंने सभी साथियों से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा, तैयारी और संवेदनशीलता के साथ साथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को सही जानकारी दें और धरती माँ के संरक्षण का ये संकल्प जन आंदोलन में बदले। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने स्वयं इस अभियान के दौरान विभिन्न राज्यों में गांव में जाकर किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे, मतलब वो गांव में जाएंगे और किसानों से मिलेंगे और वहां पर किस किस तरह की योजनाएं हैं, कैसे कैसे वो कृषि संबंधी और व्यापकता को बढ़ा सकते हैं, इस पर भी वो डायरेक्ट किसानों से बातचीत करेंगे। तो ये तो बात हुई, ये महत्वपूर्ण बात हुई। अब सुन लेते हैं एक उपदेश दिनेश गिरी की आवाज में।

0: नगर हो सुना सुना मुखिया पंचायत।
1: हेमंत भाई, ये तो भैया ने उपदेश सुना दिनेश गिरी से, और अब कल के कार्यक्रम के बारे में बता दे। कल 5:10 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का आनंद ले सकेंगे,
2: और वहीं अगला कार्यक्रम जो रहेगा ग्राम संसार, उसमें बातचीत सुनेंगे हमारे साथी, दूध की शुद्धता जांचने के आसान घरेलू तरीके। वहीं
1: 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे धान की नर्सरी के बारे में, और साथ ही भाई जो बाजार भावों के बारे जो जानकारी भी देंगे। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय ही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर
2: और संयोजक थे शिवनंदन लाल।
1: इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:30 हो चुके हैं और जो लफ्ज़ है शाम, वो शाम होती है दिन के ढल जाने के बाद, और दिन का ढलना ही शाम है। और ये इतना खूबसूरत लम्हा होता है कि जब आपका मूड, आपका मिजाज ज़रा कुछ गज़लों और कव्वाली की तरफ होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस खूबसूरत सी गज़ल से पहले एक मशहूर शायर जो अब इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं, जनाब बशीर बद्र साहब, उनका एक शेर आपको ज़रूर सुनाऊं कि इतनी मिलती है मेरी गज़लों से तेरी सूरत, इतनी मिलती है तेरी मेरी गज़लों से तेरी सूरत, लोग तुझको मेरा महबूब समझते हैं।

कभी जिस तरह अल्फाज जज्बात का साथ नहीं देते, ऐसे ही कभी कभी हमारे कंप्यूटर साहब नाराज हो जाते हैं। तो उनकी ख्वाहिश नहीं है कि ये गजल मैं आपको सुनाऊं, तो पेशे खिदमत है दूसरी गजल।

ये बात जो है वो दूर तलक चली जाती है बिना उसके पैर हुए, वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। और जब वो कोई मकाम पाती है तो कभी तो आपको वो खुश कर देती है, कभी आपको वो हैरान कर देती है, और कभी-कभी आपके लिए बहुत सारी परेशानियों का सबब बन जाती है।

पर ये जो वक्त है, ये एडवांस है, डिजिटल है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्द आपके पैगाम एक से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और बहुत आसानी से भी पहुंच जाते हैं। लेकिन दौर जब खत व किताबत का था तो बहुत हसीन वक्त रहा, और उसकी जो अहमियत है मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा है। और अभी भी मुझे लगता है कि खत जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत एक तरीका है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का। ये जहन में ख्याल आया और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको पंकज उदास साहब की ये खूबसूरत सी गज़ल सुनाऊं जिसमें उन्होंने खत के जवाब की बात कही है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने गज़ल और कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम सुना और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ठीक 8 बजे समय होगा कवि गोष्ठी का और 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के
8: अब 0 रुपए कैसे दो।
7: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विकसित मालवीय नगर संकल्प समारोह के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित की। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत। शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में राइट ऑफ वे के अंतर्गत बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू। और जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालर्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं मिली हैं।
12: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोल कालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक ऐसे पहल की शुरुआत करना है जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति केवल आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति में नहीं बल्कि उसकी समृद्ध सभ्यतागत चेतना और नैतिक मूल्यों में निहित है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम सिंधु कुंभ नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि भारत की विरासत का संरक्षण देश निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विकसित मालवीय नगर संकल्प समारोह के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा तक आसान पहुंच हर बेटी का अधिकार है और ऐसी पहल छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और जनहितकारी परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का निर्माण मजबूत स्थानीय बुनियादी ढांचे और जन भागीदारी से ही संभव है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पक्षियों के लिए जल पात्र स्थापित किए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अंतिम मील कनेक्टिविटी पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने जब बसों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम कर रही है।
2: प्राइवेट अपने व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आइए, क्योंकि लगातार सरकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे काम कर रही है, मेट्रो पे काम कर रही है। मेट्रो में आज की डेट में 65 लाख लोग रोजाना चल रहे हैं।
0: दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम दक्षिणी जोन के उपायुक्त ने यह जानकारी दी। उपायुक्त की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि एक सहायक इंजीनियर और एक

0: जूनियर इंजीनियर को इमारत के निरीक्षण में हुई चूक के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी 3 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ितों को हर संभव सहायता देने और मामले की जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर लापरवाही के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कोई भी बिल्डर, अधिकारी या प्राधिकरण कानून से ऊपर नहीं है और नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल में भर्ती घायलों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली और सभी घायलों को निःशुल्क और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्रीमती गुप्ता के निर्देश पर महरौली पुलिस थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और दक्षिण जिले के जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में इस मामले की एक मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सदुलाजाब और आसपास के इलाकों में जर्जर, खतरनाक और अवैध भवनों का तत्काल सर्वे और निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कई एजेंसियों का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी सभी जरूरी मेडिकल मदद और तुरंत राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और ग्रेटर कैलाश के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना को भ्रष्टाचार का मामला बताया। उन्होंने कहा कि यह इमारत मूल रूप से 3 मंजिला थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में आज सड़क नंबर 320 के निर्धारित राइट ऑफ वे के अंतर्गत बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई। एक रिपोर्ट।
2: मध्य उत्तर जिला के जिलाधिकारी SS परिहार ने बताया कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि अधिग्रहित सरकारी भूमि है, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में सार्वजनिक सड़क के रूप में चिन्हित है। उन्होंने कहा कि सड़क की वर्तमान चौड़ाई अतिक्रमण के कारण प्रभावित है, जिससे नियमित यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण के पूरे होने से यातायात व्यवस्था में सुधार, आपातकालीन सेवाओं के सुगम आवाजाही तथा क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आकर्षिता सिंह।
0: दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। उनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। श्री शुक्ला ने बताया कि ये सीमा पार बैठे अपराधियों के निर्देश पर काम कर रहे थे और इन्हें दिल्ली और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आज सुबह के समय हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक लॉन्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने

0: लिए किसानों की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विकसित मालवीय नगर संकल्प समारोह के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित की। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत। शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में राइट ऑफ वे के अंतर्गत बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू। और जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
5: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आगे समरी। नहीं झुमके
2: ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कवि गोष्ठी।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्रीमती संध्या सेठ, श्रीमती पूनम सागर, डॉक्टर सुषमा गुप्ता, श्रीमती माधुरी स्वर्णाकर और डॉक्टर उपमा शर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं डॉक्टर उपमा।
2: आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। शब्दों की इस महफिल में आपका स्वागत है। आज की इस काव्य गोष्ठी में हम सुनेंगे कुछ चुनिंदा कवित्ती की चुनिंदा रचनाएं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती संध्या सेठ को, जो 2 बार गोल्डन अवार्ड के साथ कई अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं और कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हैं।
3: नमस्कार। जिंदगी हम तेरे अजब ढंग देखते रहे, पल पल बदलते तेरे नए रंग देखते रहे। कभी खुशियाँ मिली बहुत तो कभी मायूस किया तूने, गिरते संभलते हम बहती जल तरंग देखते रहे। जिंदगी हम तेरे नए रंग देखते रहे, कभी अपनी सी लगी हमें तो कभी हुई पराई। रोते रोते हंसने लगे तो कभी हंसते हंसते आँख भर आई। कभी अपनी सी लगी हमें तो कभी हुई पराई। रोते रोते हंसने लगे तो कभी हंसते हंसते आँख भर आई। जब भी सुनाया हाल अपना खुद अपना उपहास दंग देखते रहे। जिंदगी हम तेरे नए रंग देखते रहे। यादों के झरोके खोल जब भी तुझसे की बातें, यादों के झरोके खोल जब भी तुझसे की बातें। प्यार वफा नफे नुकसान के खोल डाले सारे बही खाते। संभाल रखा था मेरे जीवन का सारा लेखा जोखा, संभाल रखा था मेरे जीवन का सारा लेखा झोंका। परत दर परत जीवन के प्रसंग देखते रहे। जिंदगी हम तेरे अजब ढंग देखते रहे, पल पल बदलते नए रंग देखते रहे। एक निराशा में आशा को जीवंत करती हुई कुछ पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ। ना हो दिल उदास, तेरी हार में भी जीत है। कुछ खोना है कुछ पाना है, यही जीवन की रीत है। सुख दुख तो आते जाते हैं, गम में भी जो मुस्काते हैं, मंजिल वही पा जाते हैं। जो होते ना भयभीत हैं, ना हो दिल उदास, तेरी हार में भी जीत है। कुछ खोना है कुछ पाना है, यही जीवन की रीत है। जो बीत गया सो बीत गया, अब उससे कैसी प्रीत है। जो बीत गया सो बीत गया, अब उससे कैसी प्रीत है। यह जीवन पल पल बदले काया और बिन अल्फाज का गीत है। ना हो दिल उदास, तेरी हार में भी जीत है। दिल की बात हमेशा सुनते, वो अपने मन के मीत है। गम और खुशी में भी जो गाते मधुर गीत हैं। ना हो दिल उदास, तेरी हार में भी जीत है। कुछ खोना है कुछ पाना है, यही जीवन की रीत है। धन्यवाद।
4: बहुत खूब, बहुत खूब।

0: देती थी।
1: बात।
0: पूछते हो मुझसे कि मैं ऐसी क्यों हूँ, क्यों खुश रहकर भी आंसुओं में गुम। हर चाह को मन में दबाया था, ना चाहते हुए भी अपने मन को समझाया था।
1: वाह
0: उदासी आंसू दोस्त से लगते थे, अपने भी अब तो पराए से लगते थे।
1: वाह,
0: जिंदगी आगे बढ़ती गई, जिंदगी आगे बढ़ती गई,
2: बहुत बढ़िया।
0: और मैं कुंद सी होती गई,
1: क्या बात,
0: और मैं कुंद सी
1: क्या
0: होती
1: बात।
0: गई, पर आज इस मकाम पर एक एक लम्हा चुराया है। देर से ही सही, खुशी का पल तो आया है,
1: क्या बात,
2: बहुत
0: पर
2: सुंदर।
0: आज इस मकाम पर एक एक लम्हा चुराया है। देर से ही सही, खुशी का पल तो आया है, अनजाने में ही सही दिल की खुशी को पाया है। अपने अंतर्मन को अपना दोस्त बनाकर
1: क्या
0: भीड़
1: बात,
0: से अलग खुद को देखा
1: क्या बात,
0: तो
1: बहुत सुंदर,
0: मोह
1: बहुत
0: माया से
1: बढ़िया।
0: ऊपर पाया है। पूछते हो तुम मुझसे कि मैं ऐसी क्यों हूँ, क्यों उदास रहकर भी आंसुओं में गुम हूँ।
1: बहुत
2: बहुत
1: सुंदर,
2: सुंदर सुंदर
1: बहुत
2: सुंदर
1: सुंदर,
0: सुंदर, वाह, थैंक
1: हार्दिक आभार संध्या जी,
0: यू।
1: बहुत ही हृदय स्पर्शी रचनाएं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती पूनम सागर जी को, जो स्टेट टीचर्स अवार्ड से सम्मानित हैं। आपके नाम अनेक उपलब्धियां हैं, जिनमें 28 देशों के कवियों के साथ सबसे लंबे ऑनलाइन काव्य सत्र का विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है।
0: स्वागत है।
2: शुक्रिया उपमा जी, मैं एक गजल रखती हूँ आपके सामने। हो

कंपन रुखावा का फेरा हुआ।

0: क्या गा रहे हैं,
1: शुक्रिया।
0: बहुत
1: यूं हुआ ये बनी बड़ा बंधन, और एक शेर यूं हुआ आ

0: बहुत बढ़िया,
1: शुक्रिया। ये जुबान से बयान नहीं होता, और होती जहां मोहब्बत है।

0: बहुत सुंदर,
1: शुक्रिया,
0: शानदार गजलें, शानदार प्रस्तुति पूनम जी।
1: शुक्रिया शुक्रिया।
0: अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी को। आप लिटो फेस्ट मुंबई का बेस्ट पांडुलिपि अवार्ड सहित अनेक सम्मान से सम्मानित हैं। आपकी कई किताबें आ चुकी हैं जिसमें कितरा और तलब को बहुत प्यार मिल रहा है। सुषमा जी
2: नमस्कार। उपमा जी, मैं अपनी शुरुआत कुछ शनिकाओं से करना चाहती हूँ और सुनिएगा। पहली शनिका है नया जमाना। सीख तो सकते थे हम भी इस नए जमाने का चलन, सीख तो सकते थे हम भी इस नए जमाने का चलन, पर ये हमसे हो ना पाया। अब लोग जमी नहीं इंसानों को बिछाते हैं पैर जमाने के लिए। अब लोग जमी नहीं इंसानों को बिछाते हैं पैर जमाने के लिए, और सीढ़ियों की कोई अहमियत नहीं, बस चंद लोग चाहिए गिरा के खुद को ऊंचा उठाने के लिए। शुक्रिया। अगली शनिका है रहनुमा। चंद चिराग मेरी मंजिल के रहनुमा ना हुए तो ये ना समझना कि रास्ता मेरा रोशन ना होगा। चंद चिराग मेरी मंजिल के रहनुमा ना हुए तो ये ना समझना कि रास्ता मेरा रोशन ना होगा। मैं वो सूरज हूँ जो रोज आसमां का सीना फाड़ के निकलता है, चार बादलों के छाने से मेरा हौसला कम ना होगा। शुक्रिया। अगली शनिका है रिवायत। रिवायत ये जमाने की ऐसी है कुछ कि औरों के किस्से में हर कोई रस ढूंढता है। रिवायत ही जमाने की ऐसी है कुछ कि औरों के किस्से में हर कोई रस ढूंढता है, बस अपनी ही असलियत से सबको परहेज है, तमाम नजरों में बाकी फरेब ढूंढता है।
0: क्या बात है।
2: एक बार जरा खुद से मिलके घर से निकला कीजिए हजूर, एक बार जरा खुद से मिलके घर से निकला कीजिए हजूर, फिर देखेंगे कैसे किसी में कोई नुक्स ढूंढता है।
3: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
2: बहुत शुक्रिया। और अगली शनिका है पायदान। हम वो लोग हैं जो तन को रखते हैं साफ सजावटी और खुशबूदार, हम वो लोग हैं जो तन को रखते हैं साफ सजावटी और खुशबूदार, पर भूल जाते हैं मन की देखभाल करना, और होना तो यह चाहिए कि घर के बाहर पैरों के साथ दिल पोछने के पायदान भी होने चाहिए।
0: क्या बात है।
2: कि होना तो ये चाहिए घर के बाहर पैरों के साथ दिल पोछने के पायदान भी होने चाहिए। बाहर से आओ तो जाने किस किस के कीचड़ का बोझ साथ चलाता है, और इंसान की देह को तन से ज्यादा मन का प्रदूषण मार देता है।
0: बहुत खूब।
2: अगली शनिका है बुलंदी। थोड़ी सी बुलंदी क्या हुई आसपास शोर सा मच गया, थोड़ी सी बुलंदी क्या हुई आसपास शोर सा मच गया। जी हाँ कामयाबी के तो संगी बहुत हैं, जी हाँ कामयाबी के तो संगी बहुत हैं, पर अपनी शिकस्त का एक टुकड़ा जेब में रखा कीजिए कि पैर टिके रहें, पर अपनी शिकस्त का एक टुकड़ा जेब में रखा कीजिए कि पैर टिके रहें। जो हवा में उड़ते हैं उनके तो किरदार हल्के बहुत हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत
2: बढ़िया, शुक्रिया। और अगली शनिका है तंग दिली। जमाने की तंग दिली का क्या खूब है मंजर, जमाने की तंग दिली का क्या खूब है मंजर, जो ऐश में है उनका पूछते हैं हाल, और जरूरतमंद को देख आंखें मूंद लेते हैं। जो ऐश में है उनका पूछते हैं हाल, और जरूरतमंद को देख आंखें मूंद लेते हैं। गजब का ये तमाशा है, अजब सा खेल है भैया, गजब का ये तमाशा है, अजब सा खेल है भैया। जिंदा आदमी की कीमत है दो कौड़ी की, और मरे पीछे मुआवजों में तोल देते हैं।
0: बहुत
2: खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी कविता रखती हूँ, पुरानी डायरिया। मुझे याद है उन दिनों मैंने एक कागज पर लिखा था, घर में सबसे छोटा होना बहुत बुरा है, या तो दुलार मिलता है या दुत्कार, सम्मान कभी नहीं मिलता। फिर अरसे बाद मैंने उसी डायरी के पीले पड़ चुके कागज पर लिखा, घर में सबसे बड़ा होना सबसे बुरा है, अपेक्षाओं का बोझ और निर्वाह की चूक, अपेक्षाओं का बोझ और निर्वाह में चूक का दंड कंधे और मन दोनों तोड़ देता है। कुछ समय पहले मैंने दोनों पन्ने फाड़ दिए, कुछ समय पहले मैंने दोनों पन्ने फाड़ दिए। सबसे बुरा है सीने में मन का होना, और डायरियों को छुपा दिया कि पुरानी डायरियां दुख नहीं।

0: करती हैं।
1: क्या बात है,
0: एक कविता है सबक। स्वागत। बचपन में जब पिता सिखाते थे दोस्ती रिश्ता मन बराबर वालों के साथ जोड़ना, बचपन में जब पिता सिखाते थे दोस्ती रिश्ता मन बराबर वालों के साथ जोड़ना, तब नहीं की थी उन्होंने हैसियत की बात। उनका अर्थ था इंसान की देह में दिखने वाला इंसान ही हो यह जरूरी नहीं है। उनका अर्थ था इंसान की देह में दिखने वाला इंसान ही हो यह जरूरी नहीं है। मैंने सही लोगों से सही सबक सीखने में गलती की और गलत लोगों ने सिखाए सबक दंड सहित, और गलत लोगों ने सिखाए सबक दंड सहित, और अफसोस वो सब सही थे। हम अपने साथ सख्त क्यों नहीं होते, हम अपने साथ सख्त क्यों नहीं होते, हम अपने साथ सख्त नहीं होते इसलिए समय हमारे साथ सख्त होता चला जाता है।
2: बहुत
3: बहुत
0: खूब। एक छोटी सी प्रेम कविता सुनाती हूँ आपको। हम उदास होते हुए मुस्कुराने के बहाने तलाशते प्रेमी हैं। हम उदास होते हुए मुस्कुराने के बहाने तलाशते प्रेमी हैं। हम लड़ते लड़ते रोने लगते, रोते रोते थक जाते, कसमें खाते कि अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। रोते रोते थक जाते, कसमें खाते कि अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। कभी आवाज नहीं सुनेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। फिर विरह के भय में प्रेम टूट कर बरसता, पर दूर होने में दूर होना इतना ज्यादा हुआ कि प्रेम के लिए प्रेम से ही झगड़ते गए। ये रहस्य क्या कभी कोई समझ पाया है? प्रेम को बचाने में हम खुद को खोते जाते हैं, या खुद को बचाने में प्रेम छूटता जाता है। भविष्य संदिग्ध रहे प्रेमियों के, भविष्य संदिग्ध रहे प्रेमियों के, वर्तमान को खा गया प्रेम का हिसाब किताब, और इतिहास ने मोहर लगाई है इस बात पर प्रेम में साथ कभी मुकम्मल ना हो सके, और जो मुकम्मल हुए उनमें प्रेम ही ना रहा। शुक्रिया।
4: आभार सुषमा जी, बहुत संवेदनशील झटकाएं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती माधुरी सोनकर जी को। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी प्रमुख प्रकाशित कृतियों में एक काव्य संग्रह और बहुचर्चित गजल संग्रह कौन आहटों में है। माधुरी जी,
5: सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक गजल रखती हूँ। गजल का मतलब कुछ यूं है कि ऐसी वैसी सजा नहीं देते, कि ऐसी वैसी सजा नहीं देते, वो कभी फैसला नहीं देते, बस बताते हैं रुख हवाओं का, बस बताते हैं रुख हवाओं का, जर्द पत्ते हवा नहीं देते। बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि मैं चलूं आगे जिद भी करते हो, कि मैं चलूं आगे जिद भी करते हो और फिर रास्ता नहीं देते। मैं चलूं आगे जिद भी करते हो और फिर रास्ता नहीं देते। आप आएंगे ये खबर ही न थी, आप आएंगे ये खबर ही न थी, वरना पलके बिछा नहीं देते। शुक्रिया। आप सबको समर्पित था। आप आएंगे ये खबर ही न थी, वरना पलके बिछा नहीं देते, और लुत्फ देते हैं आईने भी मगर, कि लुत्फ देते हैं आईने भी मगर, तेरी तस्वीर सा नहीं देते। ऐसी वैसी सजा नहीं देते, वो कभी फैसला नहीं देते। अगली कविता का जी, कविता का शीर्षक है कविता में मेरी कब चलती है, कि मैंने लिखा पाँव तो रास्ते कुनमुना उठे, मैंने लिखा पाँव तो रास्ते कुनमुना उठे, धूप मछली उठी सौंधी खुशबू, तभी दिखा एक चरवाहा घर लौटता अपनी भेड़ों के साथ, भूख प्यास दाल भात और दिखा शाम का सूरज विदा कहता जमीन को, दूर जंगल में फैली हरियाली भी दिखी, सबको लिखना पड़ा कविता में, मुड़ के देखना भी जरूरी था, एक चिड़िया चहचहाती हुई कह रही थी मुझे नहीं लिखोगी क्या, तुम ही बताओ उसे कैसे मना करती, कविता में मेरी कब चलती है।
2: बहुत
5: बहुत शुक्रिया।
2: कविता में मेरी कब
5: चलती। एक और कविता रखती हूँ मैं। मेरी कविता का शीर्षक है औरत और डर। मासूम बच्ची लहराती थी हवा में हाथ, किसकी सत्ता किसका भय, कौन राजा कौन मालिक, मैं कर्मयोगी मैं ही शक्ति, मैं अपनी नियंता फिर कैसा डर, लेकिन उम्र ने सिखा दिया उसे डरना, अब उसे लड़ना भी सीखना होगा।
0: बहुत
5: खूब। तो ये मेरी कविता थी औरत और डर।
0: बहुत शानदार, बहुत बढ़िया,
4: बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर कविता है।
5: बहुत शुक्रिया।
2: और अभी आप सुन रहे थे हम सबको, और जो हम सबको सुनवा रही थी डॉक्टर उपमा जी, अब मैं उनसे

0: आग्रह करती हूँ कि वो अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। उपमा जी,
1: आभार पूनम जी। मेरी कविता है रीढ़ वाली स्त्री। वो सुंदर थी पर सिर्फ चेहरे से नहीं, विचारों से भी। बुद्धिमान थी इसलिए तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। तुम्हारे हर अधूरे वाक्य में जोड़ती रही अर्थ। तुम्हारे हर लड़खड़ाते कदम के नीचे रखती रही अपनी हथेलियों की जमीन। लेकिन छोड़ नहीं पाई तुम्हारी अंधी हाँ में अपना विवेक। वो तुम्हारे लिए समर्पित थी, उसकी चाहतें सिर्फ तुम्हारे लिए थीं। उसने प्रेम किया पर प्रश्न भी किए, सही को सही कहा पर गलत पर चुप नहीं रही। तुम्हारी छाया नहीं साथी बनना चाहा। फिर एक दिन तुमने उसे छोड़ दिया एक अति साधारण स्त्री के लिए। उसकी आंखों के आंसू वे आवाज गिरते रहे। बहुत सोचा उसने उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जब रातों की सिलवटों में जवाब ढूंढती रही और फिर समझ आया, तुम्हें सुंदरता नहीं चाहिए थी, न बुद्धि न बराबरी। तुम्हें चाहिए थी एक रिमोट से चलती गुड़िया जो मिलाती रहे तुम्हारी हाँ में हाँ, पोषित करे तुम्हारे अहंकार को और ना करे तुमसे कोई भी सवाल।
0: क्या बात है,
1: तुम्हें चाहिए थी एक बिना रीढ़ की हड्डी की औरत जो झुक
0: वाह,
1: सके मुड़ सके पर सीधी खड़ी ना हो।
0: बहुत सही,
1: और
0: हकीकत
1: वो
0: है
1: तो
0: वो।
1: रीढ़ रखती है, सीधी सख्त अडिग। वो टूट सकती है प्रेम में पर झुकती नहीं तुम्हारी बेबुनियादी बातों पर। तुम्हारा जाना उसका हारना नहीं था, यह तो तुम्हारा डर था एक सीधी खड़ी औरत से। और जब देखती हूँ उसे तो अनायास ही तिर जाती है होठों पर मुस्कान। इतने झंझा बातों के बाद भी सीधी खड़ी है वो।
0: क्या बात,
1: बहुत
0: बहुत
1: अद्भुत,
0: बहुत
1: बहुत
0: अद्भुत,
1: बढ़िया।
0: बहुत बहुत बढ़िया।
1: अब मैं कुछ माया रखती हूँ।
0: हाँ, स्वागत है।
1: सब भाग्य कहाँ पाते, सब भाग्य कहाँ पाते, जगतारन बाले केवट से सकुचाते,
0: वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
1: जगता

0: बहुत बढ़िया, वाह वाह
1: बहुत
0: वाह,
1: बढ़िया
0: बहुत
1: माही,
0: सुंदर
1: बहुत
0: आवाज
1: सुंदर
0: सुरीली,
1: माही।
0: बहुत सुंदर सुनाया आपने।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्रीमती संध्या सेठ, श्रीमती पूनम सागर, डॉक्टर सुषमा गुप्ता, श्रीमती माधुरी स्वर्णागर और डॉक्टर उपमा शर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही थी डॉक्टर उपमा। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आप जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:37 हुए हैं।

0: श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में फिल्म क्रांति से। इस गीत को लिखा संतोष आनंद ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप जुड़े हुए थे फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DNM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:44:45 हुए हैं। अब से कुछ ही दिन में यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 9 बजे प्रसारित किए जाएंगे अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। फिलहाल अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ

0: वहाँ स्टूडेंट भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार

0: की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा

0: और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the national

0: compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासिद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के OnMark पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है और IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासद के तहत उनके गैर मामूली तआवुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इकदाम और हसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वालशेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णैया की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर टीचर हैं, जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तहत उनके तआवुन को भी सराहा।
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: खेल कूद के मैदान में भारत की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरिंदर वीर सिंह और उन्मेश गुजर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर पौंडवंशी संतलत के मक्के महारिषि बलार्जुन से मुतल्लिक 6वीं और 7वीं सदी की 3 नायाब तांबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का भी जिक्र किया।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा

0: में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: वजीर आजम ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश व जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन ताबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हुसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिल कदर गहरी मालूमात फराहम होती हैं। वज़ीर आज़म ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफुजाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने आज कहा है कि ख्याल और कार्रवाई में इख्तरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। मुल्क के नए CDS की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने मुसल्लह फौजों, सनात, तालीमी इदारों, स्टार्टअप्स और तहकीक के इको निज़ाम के माबैन मजीद इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया, जो जदीदकारी के लिए बुनियादी हैसियत का हामिल हैं। साबिका फौजियों और वीर नारियों के बहबूद के तई मुसल्लह फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमात अंजाम देती रहेंगी। आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के जिले पंचकुला में वाके रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जामे हिफाजती इंतजामात के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निज़ाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में BJP ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में BJP ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड में जीत हासिल की है। सोलन में BJP ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड हासिल किए हैं। मंडी में BJP ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड में वाज़े अक्सरियत हासिल की है, जबकि BJP ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर मुनक़द हुए थे। ताहम BJP और कांग्रेस दोनों ने अपनी हामी उम्मीदवारों की कामयाबियों का जिक्र किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।

इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR के तीसरे मरहले के तहत नंबर शुमारी का काम शुरू हो गया है। कमीशन ने बताया कि उन सभी अहल वोटरों को जिनके नंबर शुमारी फार्म इंतखाबी रजिस्ट्रेशन दफ्तर को 28 जून को या इससे पहले मौसूल हो गए हैं, चुनाव फहरिस्तों के मुसवदे में शामिल किया जाएगा। SIR का मकसद यह है कि कोई अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से न रह जाए और कोई नाअहल शख्स चुनाव फहरिस्त में शामिल न रहे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर नेज बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज अगरतला में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब रेड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि PM स्वानिधि स्कीम के 6 साल पूरे होने के मौके पर मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रेड़ी पटरी वालों को रुपए पैसे के डिजिटल वसीले से किए जाने वाले लेन देन को फरोग देने और माली तौर पर खुद किफालत के लिए कर्जों के चेक और QR कोड वाले क्रेडिट कार्ड तकसीम किए। मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है क्योंकि रियासत में सबका TMC सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन BSF के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हस्सा जिले मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने दफाई एतबार से अहम चिकन नेक राहदारी पर भी हिफाजती इंतजाम मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। यह राहदारी शुमाल मशरकी खित्ते को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाती है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मुंबई में लोकभवन में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अहिल्या देवी होलकर की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत नजर किए। इस दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर जिले में चौंडी के मकाम पर अहिल्या देवी होलकर यादगार का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामकम टाउनशिप के काउंगटुब गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। ये इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जनूब में वाक़ है, जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। ये एक मुसल्लह ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाजारा है। जय हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मगरबी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और झालाबारी का इम्कान है। महकमे ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे और बिजली चमकने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोएब अल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। इस तरह उन्होंने 2 साल में अपना पहला खिताब जीत लिया। आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़ मकामी मुश्किल को हल करने और दिगर समाजी मकासद के तई अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम

0: तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमा के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दिस इज दिल्ली। प्लीज स्टैंड बाय फॉर अ नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगुंज।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। धान पर बैठकर तमाशा देखना आसान, पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर।

0: जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
0: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
2: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल, ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदलकर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
2: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदल

0: बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
2: नहीं अछूता हो
1: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

0: सुरी।
1: 1940 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।
1: हर

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटि आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
0: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नू कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by Sri Asnapura Puyaraya in the Ravivasari Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Sri Eraya next presents Samagana Priyakaram, a composition of Guru Srajananda in Rag Kiravani set to Misra Chaputal.

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशिरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several

अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं अपने ईमेल के जरिए, और हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com, ip.radio.delhi@gmail.com हमारा मेल आईडी है, और आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए ये गीत सुनते सुनते।

कभी आपको जिंदगी में या किसी दिन ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आपके पास बातों का भंडार होता है और आप सोचते हैं कि इसमें से कौन सी बात पहले कह दी जाए और कौन सी बात बाद में बात कही जाए, लेकिन इसी शशोपंज में वो वक्त गुजर जाता है और बात जो है बात की बात रह जाती है। तो यही शशोपंज कहीं रह ना जाए, इसलिए अगर किसी खास से आपकी मुलाकात हो रही है तो जहन में रखिए कि क्या क्या बातें आपको जरूर करनी है।

और कभी कभी मुलाकात इतनी खूबसूरत और इत्तेफाक से भरी होती है कि ये शुक्र अदा किया जाता है कि शुक्र है कि आपसे मुलाकात हो गई और आपसे अपने दिल की चंद बातें कह ली। तो ऐसी ही खूबसूरत मुलाकात आपकी और हमारी होती है, और मुलाकात का जो ये दौर है ये बना रहे, यही कामना है।

और बात की बात ये है कि अगर सामने वाला आपकी नज़रों को पढ़ना सीख जाए, वो जान जाए कि आपकी इस वक्त आंखें क्या कहना चाह रही हैं या फिर ये क्या चीज़ छुपा रही हैं, तो उस इंसान की, उस शख्स की आप कदर कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जान गया है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और मेरी नज़र पड़ी है एक बहुत खूबसूरत से मेल पर जो है चंडीगढ़ शहर से आया है। लिखा है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने, और आपने कहा है कि लफ्ज़ों की जस्तजू में सब कुछ गंवा दिया। लफ्ज़ों की जस्तजू में सब कुछ गंवा दिया, वो चल दिया मैं तर्ज़ अदा ढूंढता रहा, उसको किसी ने रब से मांग लिया और मैं उसको किसी ने रब से मांग लिया और मैं सजदे में गिर के हरफे दुआ ढूंढता रहा। ये मैं दोबारा पढ़ूंगी, बहुत खूबसूरत लाइंस हैं। लफ्ज़ों की जस्तजू में सब कुछ गंवा दिया, वो चल दिया मैं तर्ज़ अदा ढूंढता रहा, उसको किसी ने रब से मांग लिया और मैं सजदे में गिर के हरफे दुआ ढूंढता रहा। बहुत बहुत खूबसूरत शेर है, मुझे बहुत पसंद आया है सतीश जी ये। और क्योंकि एकदम खोलते ही इसको मैंने रीड कर दिया तो वो जो उसकी अदायगी थी वो ज़रा गड़बड़ हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत शेर है। मैसेज हम तक पहुँच चुके हैं बहुत सारे हमारे लिसनर्स के। मैसेज हमारे पास आया है मोहम्मद अनीस मोहाल का, और बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मैसेज कर दिया है। रफीक भाई पवार का भी मैसेज हम तक पहुंचा है, और अश्विनी चुग ने हमें मैसेज किया है, गीत की फरमाइश की है। प्रकाश वर्मा ने हमें मैसेज किया है, दिलावर खान के कई मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। साथ ही अनिल मोहन ने हमें मैसेज किया है, और आपने लिखा है कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी बड़ा अजीब है, कई बार हम अपने जज्बात को बयां करने में थोड़ा सा मन में संकोच करते हैं, और जब अपनी बात को कहने का हौसला करते हैं तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। आप मुल्तानी ढांडा से हमें मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। बहुत खूबसूरत और गहरी बात आपने कही है, इसलिए जो वक्त है उसे गनीमत जानिए और सही सही उसका इस्तेमाल कीजिए। सिद्धार्थ गोंडानी जी ने हमें मैसेज किया है, और इसके साथ साथ मैसेज हमारे पास आया है भारती नागनपुरे जी का, और आप हमें खंडवा से मैसेज कर रहे हैं। मुकेश भट्टा जी का भी मैसेज हमारे पास पटियाला से पहुंच चुका है। संजय साहू पुटिया कला से हमें मैसेज कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने हमें मैसेज किया है, और आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मजहर का भी हम तक पहुंचा है मैसेज, और फारूक अली ख़ान ने हमें मैसेज किया है, और आपने कहा है कि आज आपके यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है। तो भाई पता नहीं, कुदरत ज़रा मेहरबान है हम सभी लोगों पर, मौसम खूबसूरत कर रही है और गर्मी से हमें बचा रही है। मैसेज हमारे पास पहुँचा है राजेश वर्मा का, और अब्दुल गफ्फार का भी हमारे पास मैसेज पहुँच चुका है। सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गीत।

और इस बीच हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस पहुंच चुके हैं जिन्हें शामिल करना ही है। हाजी मजहर जी ने हमें मैसेज किया है और आपने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। इसके साथ साथ मैसेज हमारे पास आया है मल्होत्रा टिडी मोहाली से, हमें मैसेज कर रहे हैं और आपने गीत की फरमाइश की है। रजी शर्मा का हम तक मैसेज पहुंच चुका है। आर कुमार ने मैसेज किया है खेड़ा पंजाब से, और सुभाष गोदारा जी ने हमें मैसेज किया है पंजाब से ही, और फाजिलका से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। मैसेज हमारे पास पहुंचा है रवि कुमार, राहुल रवि का, और किशन सपकल जी का हमारे पास मैसेज पहुंच चुका है। हरजिंदर शिंदा जी ने मैसेज कर दिया है हमें, और इसके साथ साथ जो मैसेज हमारे पास पहुंचा है वो पहुंचा है कहाँ से, बोधराज खोरवाल जी का हमारे पास मैसेज आ चुका है। इंद्रभान सिंह ने हमें मैसेज किया है और आपने गीत की फरमाइश की है। राशिद हुसैन ने हमें मैसेज किया है और आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सहदेव दामोदर जी ने भी हमें मैसेज किया है, और नंद किशोर खाटे जी का मैसेज हम तक पहुंच चुका है।

0: हाँ, कभी कभी दिल की बेकरारियाँ भी पसंद आती हैं और दिल चाहता है कि दिल यूं ही बेकरार रहे, कोई तसल्ली ना दे, क्योंकि उस बेकरारी में भी चैन आने लगता है। और वो जो हालात होते हैं ना, वो बहुत अलग होते हैं। उस वक्त बस ये ख्वाहिश होती है कि कोई बात का जवाब ना दे, लेकिन बात ज़रूर सुने और बहुत गौर से सुने, बिल्कुल कान लगाकर। और वो कान न सिर्फ आपके होठों पर हों, आपके दिल पर भी हों। वो आपके होठों से निकली बात भी सुने और आपके दिल में जो बात है उसे भी सुन ले।
1: हाँ।

दौरान एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश हुई है, और ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है। ये फरमाइश हमारे पास पहुंची है इंद्रभान सिंह जी की, और आपने एक गीत की फरमाइश की है। मुझे लगता है वक्त ना गंवाते हुए ये गीत ज़रूर सुनना चाहिए। इस गीत को गाया है उमा देवी जी ने। बहुत सारे हमारे लिसनर्स ऐसे होंगे जो इस नाम से वाकिफ होंगे।

0: इसमें गौर करने की बात यह है कि जो इंतजार का रंग है आंखों में, वो किस रंग का होगा? वो काला होगा, लाल होगा, या फिर आंखें पीली हो चुकी होंगी राह तकते तकते, या फिर धुंधला गई होंगी। खैर, अब हम मैसेजेस और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास पहुंचे हैं। मैसेज हमारे पास आया है दिग्दर्शन गौड़ जी का, और सुखविंदर सिंह जौड़ा जी हमें कृष्णा पार्क दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ कमल बालूजा ने हमें मैसेज किया है, और मैसेज हमारे पास आया है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह का। कमल ने हमें मैसेज किया है, और राजेश कुमार जजौरिया जी का हमारे पास मैसेज आ गया है मलौट से। और मैसेज नबी हसन का हमारे पास आया है, रजक मोहम्मद ने हमें एक गीत की फरमाइश भेजी है। पुंजाजी नवानकर जी ने हमें मैसेज किया है। अक्रम हुसैन प्रिंस का भी हमारे पास सीतामढ़ी से मैसेज आया है। अहमद फूल वाले ने कहा है कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं आप सभी, और फिर हमें बताते भी हैं कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। भागुराम यादव ने हमें मैसेज किया है, और इसके साथ हमारे पास मैसेज आया है। मैसेज जो है, अब हम हर बार बार बार यही कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ एक ही बार आप हमें मैसेज किया करें, लेकिन चलें, उषा मोहन जी हमें मैसेज कर चुकी हैं, और इसके साथ नासिर शेख का भी मैसेज आया है। और भाई देखिए, इस हुजूम में जो कई लोगों के नाम एक साथ आ रहे हैं, उसमें कोई नाम रह जाए तो पहले ही मैं माफ़ी चाहूँगी। और अगला मैसेज है हमारे पास, कहाँ से आया है ये मैसेज हमारे पास? मैसेज और भी बहुत सारे हैं। हमारे पास अरुण कुमार पांडे जी ने मैसेज किया है। अब देखिए, इतने सारे नाम है ना, तो उस नामों की उस भीड़ में उन नामों को तलाशना ज़रा मुश्किल हो जाता है जिनका अभी तक नाम नहीं लिया गया है। तो सहदीव दामोदर जी का नाम मुझे नज़र आ गया है, शायद आपका नाम नहीं लिया है। नासिर शेख ने हमें अभी अभी मैसेज कर दिया है। तो सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत से गीत, फिल्म है बंदनी से, और इसे गाया है एस डी बर्मन साहब ने। ये गीत जरा इस वक्त अलग है, लेकिन हाँ, बहुत जमाने बाद आपने सुना होगा, ये मुझे यकीन है।
1: पूरे माझी

वक्त की नैया में जो सवार माझी हैं, ये दो छोटे और बड़े और बीच में एक लंबी सी सेकंड की सुई, ये हमें अपनी पतवार से पहुंचा चुके हैं 12 के पार होने ही वाले हैं हम, क्योंकि वक्त जो है वो कह रहा है कि अब आप कह दीजिए अलविदा। तो खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी। अपना ख्याल बहुत बहुत ज़्यादा रखिए, अपने अपनों का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखिए, और खुश रहने की भरपूर कोशिश कीजिए, कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन आकाशवाणी जरूर सुनते रहिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar on a 5-day visit to India on Saturday. Our correspondent reports that Myanmar lies at the confluence of India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies. The official visit of President U Min Aung Hlaing to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. Prime Minister Narendra Modi lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier, the Union Minister attended a mega event in Agartala marking the 6th anniversary of the PM Swanidhi scheme, where loan checks and QR-coded credit cards were distributed to street vendors to promote digital transactions and economic self-reliance. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has set an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The polling took place on the 17th of this month. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles will co-chair the second India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi today. The Ministry of Defence said that during the dialogue, discussions will focus on strengthening defence and security cooperation, enhancing military interoperability and industry collaboration, including co-development and co-production opportunities. In cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, successfully retained the IPL title, defeating Gujarat Titans by 5 wickets in the final at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight. Put into bat first, Gujarat Titans posted 155 for 8 in the stipulated 20 overs with the help of Washington Sundar's unbeaten 50 off 37 balls. For Bengaluru, Rasik Salam Dar picked up 3 wickets while Bhuvaneshwar Kumar and Josh Hazlewood claimed 2 wickets each. In reply, Royal Challengers Bengaluru comfortably chased down the target, scoring 161 for 5 in 18 overs, powered by Virat Kohli's unbeaten 75 off 42 balls. For Gujarat Titans, Rashid Khan scalped 2 wickets. With this victory, Royal Challengers Bengaluru successfully defended their IPL crown, clinching their second successive title. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का याया लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 12:10 और पूरे 15 सेकेंड हो चुके हैं और आइए सुनते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुरों का सफरनामा।

श्रोताओं, सुरों का सफरनामा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम आपको मिलवाते हैं उन कलाकारों से जिन्होंने अपनी कला से संगीत जगत को नई ऊंचाइयां दी। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे गीतकार की जिनके लिखे गीतों ने प्यार, जज्बात और रिश्तों को शब्दों की खूबसूरत चादर में पिरोया। हम बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार फैज अनवर की।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और कलाकार हैं फैज़ अनवर। फैज़ अनवर का नाम हिंदी फिल्म संगीत में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरती पर जन्मे फैज़ अनवर बचपन से ही शायरी और साहित्य की ओर आकर्षित थे। उर्दू और हिंदी भाषा पर उनकी पकड़ ने उन्हें लेखन की दुनिया में मजबूत पहचान दिलाई, लेकिन मुंबई की फिल्मी दुनिया में जगह बनाना आसान नहीं था। हजारों सपनों की नगरी मुंबई में उन्होंने भी संघर्ष के कई दौर देखे।

जी हाँ, हटा सावन की घटा, और इसी तरह से वो घटाएं भी हट गईं जो उनके करियर में बाधा बन रही थी। फैज अनवर जी के कई सालों तक निर्माता निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर लगाए, गीत सुनाए, इंतजार किया, रिजेक्शंस फेस की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि शब्दों में अगर सच्चाई हो तो एक दिन दुनिया उन्हें जरूर सुनेगी, और यही विश्वास उन्हें सफलता की ओर ले गया। यही विश्वास उन्हें उन सफल फिल्मों को उनके झोली में डाली जो आज भी पॉपुलर हैं, उनके गाने हमारी जुबां पर हैं।

जी हाँ, उनके गाने भी दबंगों की तरह आगे बढ़ते थे और लोगों के दिलों पर छा जाते थे। श्रोता, हम बात कर रहे हैं फैज़ अनवर साहब की, कार्यक्रम है सुरों का सफरनामा। फैज़ अनवर ने अनेक सफल फिल्मों के गीत लिखे। उनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो आज भी हम उनके गाने सुनते हैं। कुछ गाने मैं सुनवा रहा हूँ, आगे भी बहुत सारे गाने सुनवाएंगे उनकी फिल्मों के। उनकी गीत जो आज भी श्रोताओं की जुबान पर हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने कठिन शब्दों के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया, और यही उनकी असल पहचान बनी।

जी हाँ श्रोताओं, दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि दिल ऐसी चीजों की गवाही नहीं देता जो सच न हो, लेकिन जब सच होता है तो दिल उसके साथ जाता है, उसके पास जाता है, बार बार जाता है, हजार बार जाता है। और कुछ इसी तरह के गीत थे फैज अनवर साहब के। उनके गीत गीत नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आज भी रेडियो संगीत कार्यक्रमों और श्रोताओं की प्लेलिस्ट में उनके गीत खास जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि फैज अनवर की लेखनी की सबसे बड़ी खूबी थी, या यूं कहें खूबी है, उनकी सादगी। वो प्रेम, विरह, उम्मीद और रिश्तों को ऐसे शब्द देते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। उनकी गीतों में शायरी की मिठास और आम इंसान की भावनाएं दोनों मौजूद रहती हैं। संगीतकारों और गायकों के साथ उनकी बेहतरीन समझ ने कई यादगार गीतों को जन्म दिया है। उनकी रचनाओं में उर्दू की नजाकत और हिंदी की सहजता का सुंदर मेल देखने को मिलता है।

यहाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और ये है आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। श्रोताओं, जब बात फैज अनवर साहब की होती है, उनके गीतों की होती है, उनकी फिल्मों की होती है और उनकी उन जज्बातों की होती है जिनकी झलक उनके गीतों में मिलती है, तो एक अलग से लोकप्रिय गीतों की लिस्ट हमारे सामने आती है। फैज अनवर अपने लंबे करियर

लोकप्रिय गीत दिए। भले ही वो हमेशा सुर्खियों में ना रहे हों, लेकिन संगीत प्रेमी और फिल्म उद्योग में उनकी पहचान एक संवेदनशील और सफल गीतकार के रूप में रही। उनके कई गीत रेडियो चार्ट्स और म्यूजिक काउंटडाउन में लंबे समय से लोकप्रिय रहे, बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट किया और उनकी झलक आज इस कार्यक्रम में भी आप देख सकते हैं। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उनके गीत आज भी कई पीढ़ियों की ओर से पसंद किए जाते हैं।

जी हाँ, बात पल, दिन और महीने, कोई भी समय गुजर जाए, लेकिन फैज साहब के गीत जो थे वो आज भी हम सबकी जुबान पर हैं। फैज अनवर उन गीतकारों में शामिल हैं जिन्होंने रोमांटिक गीतों को नई पहचान दी। उनके गीतों ने 1990 और 2000 के दशक के संगीत को खास बनाया। आज भी जब प्रेम गीतों की बात होती है तो फैज अनवर के लिखे कई गीत अनायास याद आ जाते हैं। उनकी लेखनी ने साबित किया कि सरल शब्द ही

जी हाँ, श्रोताओं, फैज़ अनवर की गाने सुनकर हम सभी का दीवानों जैसा हाल है। तो श्रोताओं, ये था गीतकार फैज़ अनवर के जीवन, संघर्ष और सफलता की कहानी पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम सुर का सफर। उम्मीद है प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते या अगली किसी और दिन किसी और महान कलाकार की जीवन यात्रा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक छोड़ जाते हैं, बहुत ही खूब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित

0: नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UPT 4, शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार और तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar on a 5-day visit to India on Saturday. Our correspondent reports that Myanmar lies at the confluence of India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies. The official visit of Myanmar president to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. Prime Minister Narendra Modi lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social issues, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं।

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा,
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी, ओह टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है?

0: फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही वो
1: रहने दो काका, रहने दो,
2: मैं बोलता हूँ। फूलवती, काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

हा दैया, दाय उठाए लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चलैया, जगके मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

लगता है कि यहाँ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों

0: से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar, on a 5-day visit to India on Saturday. Our correspondent reports that Myanmar lies at the confluence of India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies. The official visit of Myanmar President to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian institutes of technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The polling took place on 17th of this month. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has instructed district administrations, the Relief Commissioner's Office and concerned departments to maintain continuous monitoring and ensure immediate action in the event of any disaster following incidents of storms, rainfall and severe weather in several districts. The Chief Minister has directed that in districts where there has been a loss of human life or livestock due to strong winds, rain,

0: Hi, Judy. Aren't you trying this?
1: It's very nice, have more. Hi, Sherman.
2: Hi.
1: आप खड़े तो नहीं खा रहे?
3: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
1: डाइटिंग? लगता तो नहीं।

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

बचपन भूता हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी।

0: किसी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, और मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीधे में भर लूंगा।
2: ये नदियां

जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। वे निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत

0: भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि उनकी सेना ने दक्षिणी लबनान में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ब्यूफोर्ड किले पर कब्जा कर लिया है। इसराइल की सेना ने कहा कि ब्यूफोर्ड रिज और वादी अल सलूकी क्षेत्रों में प्रवेश के बाद इस स्थल पर कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और हिजबुल्ला की क्षमताओं को कमजोर करना है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लबनान के जहरानी नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को खाली करने को कहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar on a 5-day visit to India on Saturday. A correspondent reports that Myanmar lies at the confluence of India's Neighborhood First, Act East and Mahasagar policies. The official visit of Myanmar President to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles will co-chair the second India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi today. The Ministry of Defence said that during the dialogue, discussions will focus on strengthening defence and security cooperation, enhancing military interoperability and industry collaboration, including co-development and co-production opportunities. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has instructed district administrations, the Relief Commissioner's Office and concerned departments to maintain continuous monitoring and ensure immediate action in the event of any disaster following incidents of storms, rainfall and severe weather in several districts. The Chief Minister has directed that in districts where there has been a loss of human life or livestock due to strong winds, rain, hailstorms or other natural calamities, the affected families should be provided with the prescribed relief assistance without delay. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen District in Madhya Pradesh today. The month-long campaign will continue till 30th of June. The focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villagers. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance has finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections.

0: जी, आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 3:10 और 10 सेकंड। मैं हूं अब आपके साथ चेतन कुमार शर्मा, और कार्यक्रम है अब गीत गजल। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर गजल। कलाकार हैं विनोद सहगल। गुलूकार यानी कि जो गजल रचना है वो है दलीप ताहिर साहब की। तो ये सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।
1: यंगर जनरेशन के कुछ नाम मेरे जहन में उभरते हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। वो हैं विनोद सहगल, घनश्याम वासवानी और

0: जी हाँ दोस्तों, विनोद सहगल के स्वर में बहुत ही खूबसूरत गजल आपने अभी सुनी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गजल, जिसके बोल हैं कभी नहीं पढ़ सकता। गायक कलाकार हैं पंकज उधास। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: पहली बार एक गजल पेश कर रहा हूं जो उर्दू बहर या मीटर के बजाय हिंदी छंदों के वजन पर है। उम्मीद है ये तजुर्बा आपको पसंद आएगा। मुलाहिजा फरमाएं।

एआईआर लाइव न्यूज 24x7 पर आप बने हुए हैं चेतन के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं शोभना रॉय।

एआईआर लाइव न्यूज 24x7 पर बने हुए हैं आप चेतन के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं मिताली और भूपेंद्र सिंह।

0: उम्र आप जान में बेला सुलाखे के इसी गीत के साथ अब ये गजल गीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4 बजने को हैं, अब समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा

0: सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 155 रन का लक्ष्य दिया 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung. Of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary.
2: जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
3: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण के समर्पित।
1: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं सीरा गांधी S. गोविंदराजन का गायन, राग है कल्याणी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सीरा गांधी एस गोविंद राजन का गायन, राग था कल्याणी। वंदे मातरम।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको कार्यक्रम विवरण के बारे में जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रस्तुतकर्ता होंगे योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। 5:20 पर देशभक्ति संगीत आप सुन पाएंगे। 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे अमरापाली का गायन राग ललित में।

संगीतिका कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10, जिसमें आप सुनेंगे परिणीता नरोला के भजन। 7:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 8:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव के जी महाराज के गायन, राग होगा गुजरी तोड़ी।

9:30 पर पंजाबी कार्यक्रम होगा मिट्टी दी महक, और दिन में 10:30 से लेकर 11 बजे तक आप सुनेंगे भारत में ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण के 90 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत व्रत रूपक श्रृंखला प्रसारण की प्रतिध्वनिया का पहला भाग। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11।

बजकर 10 मिनट, 11 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत चंद्रनाथ भट्टाचार्य का सितार वादन।

0: दोपहर 12:10 पर कार्यक्रम होगा महिला कार्यक्रम घर आंगन। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को हैं कुछ ही पलों में, अब पहले हिंदी और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा, संपर्क व्यवस्था और द्विपक्षीय सहयोग सहित आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल ने भी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति के रूप में श्री लाइन की यह पहली यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति मुंबई भी जाएंगे, जहां वे उद्योग तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी। श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को 5 कैबिनेट मंत्रियों की टीम के साथ कार्यभार संभाला था। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी। ये संख्या 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए निर्धारित संवैधानिक सीमा के भीतर होगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 5:10 और 15 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय है तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रस्तुत करता है योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं। अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं।

अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम। आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा।

0: इसमें दीर्घ श्वास अपेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा। जब श्वास छोड़ते हैं, धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा। और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है। दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय था तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रस्तुतकर्ता थे सुनील गौतम हापुड़िया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं अब देशभक्ति गीत।